हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थी आम्रपाली, आपने प्रस्तुत किया राग ललित। आपके साथ तबले पर संगीत किया मदनलाल ने और हारमोनियम पर साथ दिया करीम नियाजी ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार

0: मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जाँच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinzo Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह की ठीक 6:40 होने को है। आइए सुनते हैं चिंतन। इसमें आज आप सुनेंगे तुलसी के राम।
1: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता तुलसी के राम, वाचन स्वर और आलेख महेश वर्मा का।
2: तुलसी किसी परिचय के मोहताज नहीं, वे कालजयी व्यक्तित्व के रूप में अमर हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ने समझने वाला बहुत बड़ा वर्ग वो है जो भक्ति रस में आखंड निमग्न होकर उनकी चौपाइयों को हृदय की गहराइयों से आत्मसात करने को तत्पर रहता है। सदियों से रामकथा वाचन की लोकश्रुत शैली द्वारा रामकथा को लोक प्रसिद्धि के नए आयाम प्रदान किए हैं हमारे तुलसीदास जी ने। भक्त कवि तुलसी ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और समस्त जग में सीताराम के दर्शन किए, उन्हीं की लीला का गुणगान किया है। रामकथा को सरल ढंग से कहने की उनकी अनूठी कला ने वाल्मीकि रामायण से भी अधिक ख्याति अर्जित की है। तुलसीदास के रामचरितमानस में राम का चरित्र और उनके आदर्शों का वर्णन विस्तार से किया गया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पहलू में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन किया है। तो आइए राम के आदर्श और उनके चरित्र को रामचरितमानस के कुछ उद्धरणों से समझते हैं। पहला है त्याग और बलिदान। राम का वनवास उनके त्याग और बलिदान की मिसाल है। पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने राज्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर वनवास स्वीकार किया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहों पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल की ये प्रथा सदा से चली आई है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, करुणा और दया। राम का चरित्र करुणा और दया से परिपूर्ण है। उन्होंने हमेशा अपने शत्रुओं के प्रति भी करुणा और दया का व्यवहार किया है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अर्थात राम का चित कोमल है और वो अत्यंत दीनों पर दया करने वाले हैं, वो बिना ही कारण कृपालु हैं। तीसरा लक्षण जो राम को मनुष्य के सर्वोच्च लक्षणों में ले जाता है वो है मित्रता और स्नेह। राम का स्नेह और मित्रता के प्रति आदर भी

0: उनके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। उन्होंने सुग्रीव, विभीषण और हनुमान के प्रति जो स्नेह और मित्रता दिखाई वो अद्वितीय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेउ जो जान निहारा, अर्थात राम को केवल प्रेम ही प्यारा है और हर कोई जान ले जो जानने का इच्छुक हो। उसके अतिरिक्त राम आदर्श और न्यायप्रिय राजा के रूप में भी थे। राजा राम, जिनके राज्य को राम राज्य के रूप में जाना जाता है, वो आदर्श शासक के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि माना और न्याय और सत्य का पालन करते हुए शासन किया। राम राज्य का वर्णन इस प्रकार है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज्य में ना कोई शारीरिक दैविक या भौतिक कष्ट था, सब सुख शांति थे। तो इन उदाहरण से स्पष्ट है कि राम ने अपने शासन में हर किसी को न्याय प्रदान किया। राम को मंगल भवन अमंगलहारी कहा गया है, उनका गुणगान पाप का नाशक है। विषम परिस्थितियों में कुंठाओं तनावपूर्ण माहौल में सार्थक जीवन कैसे जिया जाए, रामचरितमानस इसका प्रेरक उदाहरण है। प्रकृति और जीवन की समरसता को स्थापित करने का आधार है राम। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम के चरित्र को, विभिन्न पहलुओं को इतने सुंदर और सरल तरीके से प्रस्तुत किया है कि वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राम कथा को संपूर्ण समाज के लिए ग्राह बनाकर तुलसीदास अमर हो गए और आज 500 वर्ष बाद भी घर घर में रामचरितमानस या राम की कथा कही जाती है। तुलसी के राम और उनके आदर्श हमें नैतिक और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। सत्य, धर्म, करुणा, स्नेह और न्याय जैसे आदर्शों पर चलकर हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जय श्री राम।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे तुलसी के राम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DNM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 6:45 होने को है। ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को रामचरितमानस सुनवाने का। इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 24।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि

0: इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप सुन रहे थे कलाकार संजुक्ता मुखर्जी द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे सरोद पर दानिश असलम, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद और तबले पर पशुपति नाथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:31 और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से। और साथ ही साथ आगाज करते हैं अपने इस कार्यक्रम का एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ। उसके बाद करेंगे थोड़ी सी बातें, सुनेंगे खूबसूरत गीत।

दोस्तों, आप उठ गए हैं, चाय वाय पी ली है ना? अब जरा एक छोटा सा काम कीजिए आप। एक तो छोटे काम जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको कर रहे हैं। एक तो ये कि आपको हमें सुनना है इस कार्यक्रम के साथ, खूबसूरत गीत आपको सुनने हैं और हमारी बातों को भी सुनना है। क्योंकि आज ना मैं आपको एक छोटा सा काम देने जा रही हूँ वो ये कि अभी ना आप जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, ज़रा अपनी जेब में यानी पॉकेट में ज़रा हाथ डालिए और चेक कीजिए कि आज आपकी पॉकेट में क्या है। फिलहाल सुबह सुबह का वक्त है, कुछ खास तो नहीं निकलेगा, बट हाँ कुछ तो निकलेगा। तो बस डालिए हाथ अपने पॉकेट्स में और देखिए कि आखिर क्या निकलता है आपकी पॉकेट में। क्या ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा अपनी पॉकेट में रखते हैं? फोन, चाबी, कुछ सिक्के, या कोई पुरानी रिसीट, या फिर एक पेन, या फिर ईयरफोन, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको खुद नहीं पता होगा कि आखिर वो आपकी जेब में आई कहाँ से। क्योंकि हमारी जेब जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक जेब नहीं होती, एक पॉकेट नहीं होती है, वो होती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक छोटा सा स्टोरेज रूम। स्टोरेज रूम, जिसे हम स्टोर भी कह सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि दोस्तों, हर इंसान की जेब की कहानी ना कुछ अलग होती है।

तो जनाब बताइए, क्या डाला आपने अपनी पॉकेट में हाथ, जेब में हाथ? नहीं, डाला डाला होगा, वैसे तो डाला ही होगा, क्योंकि हमने कहा है और हम जानते हैं कि आप हमारी बात मानते हैं। चलिए, कुछ लोग पता है जेब में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखते हैं। मतलब अगर आप किसी की, जैसे अभी मैंने ऑल ऑफ अ सडन आपको बोल दिया कि आप अपनी पॉकेट में हाथ डालिए और क्या निकलता है वो भी ज़रा देखिए, गौर फरमाइए, तो बस ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी पॉकेट्स में ना सिर्फ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लाइक फ़ोन, वॉलेट, कीज़, बस ये दो चार इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़।

चीजें जो होती है ना, जिनके बगैर आप अपने घर से कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, बस ये चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज ना मैं इसमें एक और चीज जो है ना वो एड ऑन करना चाहती हूँ, दैट इज हैंकी, रुमाल। जी हाँ, रुमाल कई लोगों की आदत होती है, हमेशा अपने साथ रुमाल को कैरी करते हैं, अपने पॉकेट में, अपने बैग, व्हाटएवर, जो आप भी, जो भी चीज़ आप अपने कैरी करते हैं, जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उस वक्त रुमाल भी आप कैरी करते हैं। सब कुछ परफेक्टली कई बार ना ऑर्गेनाइज्ड होता है किसी किसी की पॉकेट्स में, और कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी जेब में पूरी की पूरी दुनिया घूम रही होती है जैसे कि एक पुरानी रिसीट, कोई खैर खबर नहीं, पता नहीं कहाँ से आई, कब की थी, वो स्टिल आपके पॉकेट में है। दो सिक्के जो कभी बाहर निकले ही नहीं, जिन्होंने कभी दुनिया बाहर की देखी ही नहीं वो भी आपके पॉकेट में होंगे। एक रबर बैंड, जी हाँ, एक रबर बैंड, न जाने कब इस रबर बैंड की आपको ज़रूरत पड़ जाए और आपको इधर उधर से मांगना ना पड़े उस रबर बैंड को, या फिर एक सेफ्टी पिन, आपको किसी से मांगना ना पड़े, कुछ फट गया, कुछ जोड़ना है या किसी चीज़ को टाई करना है, तो ये चीज़ जो है ना आपके पॉकेट में अगर मिल गई आपको तो आप उनका यूज़ कर लेंगे। एक पैन जिसका ढक्कन किसी और पैन का है, और कहते हैं ना कि पैन कुछ और है, किसी दुकान का छोटा सा कोई पेपर, और फिर पता नहीं कब से पड़ा हुआ एक छोटा सा चॉकलेट या फिर टॉफ़ी का रैपर। एक चीज़ और होती है कई बार, बस की टिकट्स भी आपके ना पॉकेट में मिल जाती है। आज मॉर्निंग में ना मुझे भी अपने एक पॉकेट से ना एक जो है ना टिकट मिली, वो ना जाने पता नहीं कब से पड़ी हुई थी, और वो धुल धुल के ऐसी हो गई कि बस पूछिए मत। तो ज़रा देखिए आपके पॉकेट में क्या है, जैसे मेरी पॉकेट से बहुत पुरानी बस की टिकट मिली है, ऐसे आपके पॉकेट से क्या मिला है।

वक्त हो चुका है 7:42 और पूरे 20 सेकंड्स। आप सुन रहे हैं गीत भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना।

दोस्तों, यहाँ गीतों के साथ साथ बात चल रही है कि आखिर आपकी पॉकेट में अक्सर क्या मिलता है। जब आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो क्या निकल कर बाहर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि जब हम अपनी जेब में वही चीज़ें रखते हैं अक्सर जिनकी हमें ज़रूरत महसूस होती है, जैसे कि पेन, नोटबुक, जी हाँ नोटबुक छोटी सी होती है, वो भी रख सकते हैं, कॉइन्स रखते हैं, हेडफोन्स रखते हैं, ईयरफोन्स जिनको आजकल कहते हैं, और किसी की जेब में हाथ। जी हाँ, हाथ भी आपकी जेब में अक्सर रहता है, क्योंकि फोन हाथ में है, वॉलेट बैग में है और जेब खाली है, फिर भी हाथ जेब में जाएगा क्यों? बस कहते हैं ना कि आदत है किसी भी चीज़ को लेके अपनी पॉकेट में डालने, और उसके बाद अगर कुछ नहीं भी मिला तो भाई ये हाथ किस दिन काम आएंगे।

भाई हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी पॉकेट में हाथ डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। क्या कभी आपकी जेब से कोई एक ऐसा पेपर बाहर निकल कर आया है जो कभी कभी एक पूरी कहानी बन जाता है? जी हाँ, मान लीजिए कि आपको अपनी जेब में एक पुरानी रिसीट मिलती है। आप देखते हैं, अरे ये तो 3 महीने पुरानी है और इसे मैं पूरे घर में ढूंढता फिर रहा था या घर में ढूंढती फिर रही थी और ये मिले कहाँ पे जनाब, हमें हमारी पॉकेट से। और फिर दिमाग में सवाल आता है, मैंने इसे फेंका क्यों नहीं, ढूंढ तो मैं रही।

ही थी इसे, लेकिन फेंकने के लिए नहीं नहीं जनाब, उसके पीछे की कहानी के लिए। आखिर ये रिसीट जो थी वो 3 महीने पुरानी है, तो आखिर इसको मैंने संभाल के रखा क्यों था? ज़रूर इसका आगे चल के कुछ काम आने ही वाला था। और शायद हम चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं रखते हैं दोस्तों कि उनकी ज़रूरत होती है, कभी-कभी हम उन्हें इसलिए भी रखते हैं क्योंकि वो हमारे दिन का एक छोटा सा हिस्सा बन चुकी होती है। जैसे कि आपको आपके पॉकेट में मिली 3 महीने 4 महीने पुरानी वो रिसीट, उसके पीछे की कहानी आपको झट से याद आ गई होगी। पता है कई बार क्या होता है ना, चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं कि यार 3 महीने पहले अच्छा ये हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो जो ऑल ऑफ अ सडन वो रिसीट या कोई वो कागज़ 3 महीने 4 महीने पुराना आपके हाथ लगता है तो आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि यार हाँ, ये तो उस चीज़ की रिसीट है, उस चीज़ का कागज़ है जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि आखिर उसका वो पेपर, उसकी वो रिसीट गई कहाँ, और ये मिली हमारे हमारे हमें हमें हमारे जेब में। तो बस ये कहानी जो है ना उससे जुड़ती है और आप जान जाते हैं कि आखिर ये रिसीट आपकी जेब में 4 महीने पहले से अब तक क्या कर रही है।

वक्त हो चुका है 7:50 और पूरे के पूरे 15 सेकेंड्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब जो है ना, आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन करती है। जी हाँ, आपके पर्सनालिटी के बारे में भी बताती है। तो वो आपके बारे में क्या बताती है, ये भी हम ज़रा आपको बता दें कि अगर जेब में आपके हमेशा एक पेन रहता है तो आप शायद ऐसे इंसान हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं कि भाई कहीं पे भी साइन करना है, कहीं पे भी जाना, तो पेन तो ज़रूर ही होना चाहिए। अगर हमेशा ईयरफोन्स मिलते हैं तो शायद आपकी अपनी एक अलग दुनिया है, आप बस उस दुनिया में ही रहना चाहते हैं। अगर जेब में कुछ कॉइन्स मिलते हैं, शायद आप छोटे छोटे पैसे भी संभाल कर रखते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है कि आप छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। और अगर आपकी जेब में कुछ नहीं भी मिलता है तो आप शायद सब कुछ मेरी मम्मी के बैग में है, सब कुछ मेरे हस्बैंड के बैग में है, सब कुछ मेरी वाइफ के बैग में, इस टाइप के इंसान है। भाई मेरे पास कुछ ना भी हो ना, उनके पास ज़रूर मिल जाएगा। आप कुछ इस टाइप के इंसान होंगे। कभी आपने अपने बच्चों की पॉकेट्स को चेक किया है? अरे भाई, वो तो अलग ही यूनिवर्स होता है। जी हाँ, उनमें क्या मिलता है? उनमें मिलते हैं कंचे, छोटे छोटे पत्थर, चौक के टुकड़े, किसी दोस्त की पेंसिल, टूटी फूटी पुरानी सी लेकिन आपके बच्चे को पसंद है, वो उसके पॉकेट से ज़रूर मिलेगी। किसी दोस्त की कोई स्टिकर उसको पसंद आ गया, कोई भी दोस्त का नहीं, किसी भी तरीके का स्टिकर। और कभी ऐसी चीज़ें जिसे देख कर घर वाले पूछें, अरे भाई ये क्या है, और जवाब बस ऐसे ही है ये तो। बचपन में जेब में मिली हुई चीज़ें कितनी छोटी होती थी लेकिन उनकी एक्साइटमेंट कितनी बड़ी होती थी। ये चीज़ आपको अपने बच्चे की पॉकेट से मिली चीज़ों से एक्सपीरियंस होती है।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पॉकेट से मिलने वाली चीज़ों के बारे में। सही बात है दोस्तों, शायद जेब हमें एक छोटी सी बात सिखाती है। हम दिन भर कितनी सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चलते हैं, कुछ ज़रूरी होती है तो कुछ बेकार, कुछ अचानक काम आ जाती हैं और कुछ सिर्फ इसलिए रहती हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह हम भी अपने साथ कुछ लेकर चलते हैं, जैसे कि कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ बातें, कुछ उम्मीदें, कुछ आदतें, कुछ यादें और कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि उनसे कोई कहानी जुड़ी होती है।

दोस्तों, अपनी जेब में रखी छोटी छोटी चीजों को कभी कभी गौर से भी देखा कीजिए, क्योंकि चीजें छोटी हो सकती हैं, लेकिन कहानियां कभी छोटी नहीं होती। इसी आशा के साथ कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा और आगे भी इसी तरीके के और भी कार्यक्रमों के साथ हाजिर होती रहूंगी मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त, जो कि फिलहाल चाहती है इस कार्यक्रम से इजाज़त आप सभी से, और चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे इन कार्यक्रमों को सुनते रहें, अपना प्यार हम तक इसी तरीके से जो है ना पहुँचाते रहें, प्यार बरसाते रहें। इसी वादे के साथ कि जल्दी दोबारा मिलूंगी, आप अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात स्वच्छता रखें। टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह की ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
5: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे। वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है। सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में

0: टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स थर्ड हाई लेवल मीटिंग विद सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्जेस टू ब्रेक साइलोस एंड अडॉप्ट लॉन्ग टर्म विजन फॉर कंट्रीज फ्यूचर। Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence while ensuring human intervention and for exploring innovative ways of combining the capabilities of AI with human expertise. Prime Minister concluded by reiterating the need for a whole-of-government approach, greater coordination, innovative thinking and collective ownership to address complex challenges and shape India's future with a long-term perspective. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into 2 parts for the sake of appeasement. He said that on the 150th anniversary of Vande Mataram, the central government corrected this historic mistake and gave the full song legal recognition. Mr. Shah

0: GJ523b is about 150 million years old. It is more than 2.5 times wider and the radius roughly 2.55 times that of Earth. But it has an extraordinary mass, about 23 times the mass of Earth, while remaining predominantly rocky. The planet has been informally dubbed as Mega Earth, a rare category of exceptionally massive and dense rocky worlds. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Pramod. Amit Shah slams Congress Working Committee's decision on two stanza Vande Mataram, reports Indian Express. Shah targets Congress on Vande Mataram, headlines the Pioneer. Almost all newspapers carry the story of former MP Sajjan Kumar passing away at a city hospital. The Hindustan Times says 42 years after anti-Sikh riots, Sajjan Kumar dies serving life term. And finally, a story in the Tribune says that Gandhi's 688 handwritten notes to freedom fighter Anand Dhingorani has fetched a record 16.2 crores in action. And with that, it's back to you, Pramod.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to say...
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निज़ाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसा फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने ईरान की हुकूमत के साथ हिजबुल्ला के राब्तों का हवाला देते हुए मस्कूरा तंजीम पर नई पाबंदियां आयद की हैं। और हॉकी में आज एम्स्टलफेन में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अपनी रिहायशगाह पर मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के मुस्तकबिल के इकदाम के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। इनमें बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, उमूर खारजा और गवर्नेंस शामिल हैं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने सेक्रेटरियों से जोर देकर कहा कि वो इस बारे में तवील मुद्दती नुक्ता नजर के साथ गौर खोज करें कि मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: डेटा के मौसर इस्तेमाल और बेहतर हमांगी पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि डेटा एक कौमी असासा और मुस्तकबिल का वसीला है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि रुकावटें सिर्फ एक तंजीमी मसला नहीं है बल्कि ये सोच का भी मसला है। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो अपने पन के जज्बे के साथ काम करें। अफसरान के दरमियान गैर रस्मी बातचीत और टीम स्प्रिट की तामीर की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने पॉलिसी साजी में ताज़ा तरीन ख्यालात लाने के लिए सरकारी शोबों, यूनिवर्सिटियों और नौजवानों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा रबतों पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क की दिफाई सनअत को मजीद मजबूत बनाने और इसे आलमी सतह पर मजीद मुसाबिकती बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। COVID-19 वबा और मगरबी एशिया के बहरान के तजुर्बात की मिसालें देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की हमांगी के तरीक़ेकार को हुकूमत के कामकाज के कल्चर का एक कुदरती हिस्सा बनना चाहिए। जनाब मोदी ने इंसानी मुदाखलत को यकीनी बनाते हुए मसनूई जहानत के मौसर इस्तेमाल और इंसानी महारत के साथ AI की सलाहियतों को जोड़ने के नए तरीके तलाश करने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेचीदा चैलेंजों से निपटने और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र के साथ भारत के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुकम्मल हुकूमत के नुक्ते नज़र, बेहतर हमाहंगी, जदीद सोच और इज्तिमाई मिल्कियत की ज़रूरत का इआदा करते हुए अपनी बात ख़त्म की। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरियों ने शोबा जाति तरजीहात, उभरते हुए चैलेंजों और अमल दरामद के मसाइल पर अपने तजुर्बात शेयर किए। काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों और महकमों के सेक्रेटरीज और वज़ीर आज़म के दफ्तर के सीनियर हुकाम ने इस मीटिंग में शिरकत की। सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि यह फैसला पार्लियामेंट की जानिब से मुरतब किए गए कानून की खुली खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और ये मुल्क मुखालिफ है। जनाब अमित शाह ने दावा किया कि 1937 में कांग्रेस ने खुशनूदी हासिल करने की खातिर वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर मरकजी सरकार ने इस तारीखी गलती की इसलाह करते हुए पूरे कौमी गीत को कानूनी एतबार से तस्लीम शुदा हैसियत दी। जनाब अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी फिर से वोट बैंक सियासत के लिए खुशनूदी हासिल करने के रास्ते पर चल रही है।
4: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के रुकने पार्लियामेंट राजू बिस्ता और सियाहत के वजीर शंकर घोष और दीगर ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
5: जनाब अमित शाह आज सिलीगुड़ी में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो सशस्त्र सीमा बल के हेडक्वार्टर पर कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, दो मीटिंगों में भी शरीक होंगे। दोपहर में वजीर दाखिला कवाखाली ग्राउंड पर भारतीय न्याय संहिता पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी और दीगर रियासती वुजरा उनके हमराह होंगे। इस नुमाइश में नए फौजदारी कानून के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और ये इस महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगी। शाम में जनाब अमित शाह पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात करेंगे। पहाड़ी इलाकों और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर कल दो जायजा मीटिंगें भी होंगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
2: भारत आज पुणे में मवासलात के वुजरा की 12वीं ब्रिक्स मीटिंग की मेजबानी करेगा। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इसमें ब्रिक्स रुकन ममालिक के मवासलात के वुजरा और सीनियर नुमाइंदे शिरकत करेंगे और इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी, डिजिटल तब्दीली, इख्तरा और पायदार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग का मौजू है एक पायदार मुस्तकबिल के लिए इख्तरा, इश्तराक और तब्दीली। वहीं ब्रिक्स की सदारत में, भारत की ब्रिक्स की सदारत में 2026 के तहत आज जयपुर में सियाहत के वुजरा की ब्रिक्स मीटिंग का आगाज होगा। ब्रिक्स रुकन ममालिक से सियाहत के वुजरा और सीनियर अहदेदारान इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मीटिंग में जिन अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा उनमें पायदार और जिम्मेदार सियाहत, हुनरमंदी के फरोग, बिला रुकावट सफर और सियाहत में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निज़ाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फ़ायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। NTA का आंसर की चैलेंज एक ऐसा ऑनलाइन अमल है जहां JEE मेन और नीट या UGC नेट जैसे इम्तिहान में बैठने वाले उम्मीदवार अबूरी आंसर की में गलतियों पर एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर NTA ने कहा कि अगर एक उम्मीदवार भी किसी सवाल को चैलेंज करता है तो मुतालिका माहिरीन उस चैलेंज को कबूल करते हैं और नजरसानी शुदा आंसर की का इतलाक इम्तिहान देने वाले हर उम्मीदवार पर होता है। उसने कहा कि गैर संजीदा चैलेंजों की हौसला शिकनी की खातिर जवाब को चैलेंज करने के लिए फीस ली जाती है और चैलेंज के दुरुस्त पाए जाने पर यह फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने कहा कि एक सवाल पर वसूल किए गए 200 रुपए की फीस मुतालिका चैलेंज के दुरुस्त ठहराए

0: आने पर उस उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है। एजेंसी ने कहा कि हकीकी उम्मीदवारों से मुनाफा हासिल करने के लिए फीस नहीं ली जाती, बल्कि फिजूल के चैलेंजों की हौसला शिकनी के लिए ये फीस रखी गई है। उसने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार की तरफ से दाखिल किए गए सही चैलेंज से दीगर लाखों उम्मीदवारों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने हिजबुल्ला ग्रुप पर नई पाबंदियां आयद की हैं और उसे ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार दिया है। अमरीका के महकमा खजाना ने हिजबुल्ला को नकद रकम मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार एक नेटवर्क से मुबैना तौर पर वाबस्ता 10 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान भी किया है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रकम की मुंतकली के लिए मस्कूरा नेटवर्क ने लेबनान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कमर्शियल एयरलाइन परवाजों में सफर करने वाले कुरियर्स का इस्तेमाल किया ताकि गैर मुल्की करेंसी हासिल करने और पाबंदियों से बचने के लिए हिजबुल्ला को बाजाब्ता माली निजाम के बाहर एक रास्ता फराहम किया जा सके। हिजबुल्ला को ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार देने का मकसद इस बात को उजागर करना है कि मस्कूरा ग्रुप ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की ईमा पर काम करता है और वो कोई अलहदा तंजीम नहीं है। हिजबुल्ला और ईरान के पासदारान इनकलाब दोनों को अमरीका आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। हिजबुल्ला लबनान की एक सियासी पार्टी होने के साथ साथ मुसल्ला ग्रुप भी है। सोमालिया के कज़ाकों ने गुज़श्ता 4 दिन में 2 बहरी जहाज़ों को अगवा किया है। इन वाक़यात से इस तशवीश में इजाफा हो गया है कि बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में सोमालिया और यमन के नज़दीक समंदर में कज़ाकी के वाक़यात में फिर से तेज़ी आ रही है। सोमालिया के पंटलैंड साहिल के नज़दीक इस हफ्ते कज़ाकों ने कैमरून के परचम बंदार जिस कार्गो बहरी जहाज को अगवा किया है उसमें सवार अमले के 10 अहलकारों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। इस बहरी जहाज में तुर्की के हथियार थे जिन्हें मवासलाती और सटलाई साजो सामान के साथ मोगदीशु में फौजी तरबियत के एक मरकज ले जाया जा रहा था। अमले के अहलकारों में 6 भारतीय शहरी, तुर्की का 1 शहरी, जॉर्जिया का 1 और सर्बिया के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक के साथ छींटें पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में मौसमियात के महकमे ने आज आमतौर पर मतला अबरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। केरलम के कई साहिली इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड और कासरगोड के साहिल के नज़दीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर खत्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भारत जापान दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, बहरी सलामती के माहदे पर दस्तखत। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला मुल्क मुखालिफ और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। अखबारात ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हुकूमत लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच कायम करेगी। झारखंड में कामयाब

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 16 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित निर्माल्या डे द्वारा द्रुपद धमर में गायन। राग रहेगा राग तोड़ी। आपके साथ संगत करेंगे पखावज पर पंडित दालचंद शर्मा।

आपके साथ संगत कर रहे थे पखावज पर पंडित डालचंद शर्मा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर।

0: सुबह के ठीक 9:15 होने को हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारक और उनका योगदान। वार्ताकार रीमा यादव।
1: जब हम आजादी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है गांधी जी का। आजादी की लड़ाई में और उसके बाद भी उनके प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारकों ने अपने कार्यों और विचारों द्वारा भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया। बापू कहते थे, अगर एक महिला जाग गई तो पूरा समाज जाग जाएगा, और ये महिलाएं सच में जागी। प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारकों में पहला नाम आता है कस्तूरबा गांधी, हमारी बा का। सोचिए, एक पत्नी जो पति के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत तक, जेल से आश्रम तक, हर कदम पर साथ चली। बा ने भाषण नहीं दिए, उन्होंने झाड़ू लगाई, बीमारों की सेवा की, आश्रम की रसोई संभाली और हजारों महिलाओं को चरखा चलाना सिखाया। बा ने हमें सिखाया कि गांधीवादी का मतलब है सादगी, सेवा और त्याग। वे गांधीवादी दर्शन की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। वे महिला शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को ग्रामीण विकास का मुख्य आधार मानती थी। बा चली गई, पर उनकी सीख आज भी हर घर की दीवार पर लिखी है। साफ रहो, सच बोलो। दूसरा मुख्य नाम है भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी का। वे कवियत्री थीं, नाजुक थीं, पर जब बापू ने आवाज दी तो वो शेरनी बन गई। 1930 में धरसाना में नमक कानून तोड़ने के लिए जब पुलिस लाठियां बरसा रही थी तो सबसे आगे कौन खड़ी थी? सरोजनी नायडू। उन्होंने कहा था, अगर हमें आजादी चाहिए तो पहले हमें अपने घर की जंजीरें तोड़नी होंगी। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए और पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने गांधीवादी अहिंसा को महिलाओं की आत्मिक शक्ति से जोड़ा और माना कि महिलाएं स्वभाव से ही अहिंसक और नैतिक रूप से मजबूत होती हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और भारतीय हस्तशिल्प की पुनरुत्थान की प्रणेता। 1930 के नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के समय उन्होंने गांधी जी को इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल करने के लिए मनाया था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं की मुक्ति अधूरी है, इसीलिए उन्होंने खादी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। उनका एक ही मंत्र था कि गांव बचेगा तो देश बचेगा। मीराबेन मेडलिन स्लेट, ब्रिटिश एडमिरल की बेटी, जिन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर भारत को अपना घर बना लिया। गांधी जी ने इन्हें मीराबेन नाम दिया था। इन्होंने गांधी जी के संदेशों को वैश्विक स्तर पर फैलाने का काम किया। वे पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्रबल समर्थक थीं। डॉक्टर सुशीला नायर, गांधी जी की निजी चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग

0: लिया और जेल भी गईं। आजादी के बाद वे भारत की स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। उन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता और कुष्ठ रोग उन्मूलन को गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा माना। उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने गांधीवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया। वे आजीवन गांधीवादी दर्शन की शिक्षिका और विचारक रहीं और उन्होंने युवा पीढ़ी में गांधीवादी मूल्यों को रोपने का काम किया। राजकुमारी अमृत कौर। कपूरथला के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली अमृत कौर महात्मा गांधी की सचिव थी। वे स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी और एम्स की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर बाल विवाह, पर्दा प्रथा और देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। सुचेता कृपलानी। प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत विभाजन के समय उन्होंने गांधी जी के साथ दंगा प्रभावित क्षेत्रों जैसे नोआखाली में शांति और पुनर्वास का काम किया। उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत को राजनीति और प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया। साल था 1942। सारे बड़े नेता जेल में थे। मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान खाली था। तभी 33 साल की एक महिला भीड़ के बीच से निकलती हैं और तिरंगा फहरा देती हैं। वे थीं अरुणा आसफली। सरकार ने इनाम रखा पर वो भूमिगत रहीं। अखबार छापा, युवाओं को जोड़ा। अरुणा जी ने दिखाया कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं, सबसे बड़ा साहस है। अन्य उल्लेखनीय नाम। मतंगिनी हाजरा, जिन्हें बंगाल में गांधी बूढ़ी कहा जाता था, जिन्होंने तिरंगा थामे हुए गोलियां खाई थी। जानकी देवी बजाज, जिन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर अपने सारे कीमती गहने और विदेशी कपड़े त्याग दिए और खादी का प्रचार किया। तो इन सब में समान क्या था? मुख्य रूप से तीन बातें। पहली, सत्य और अहिंसा परंतु डर के बिना। दूसरी, सेवा मंच से नहीं जमीन पर। तीसरी, आत्मनिर्भरता। चरखा चलाओ, खुद कमाओ, खुद पढ़ो। उपभोग कम करो, पर्यावरण बचाओ, हिंसा का जवाब प्रेम से दो। ये सब बापू और इन महिलाओं ने 100 साल पहले ही कह दिया था। इतिहास हमें अक्सर बताता है कि देश किसने बनाया, पर सच ये है कि देश किन विचारों से बना, ये ज्यादा जरूरी है। और उन विचारों को सींचने का काम इन महिला गांधीवादियों ने किया। अगर आज हम सच में विकसित भारत चाहते हैं, तो हमें बाकी सेवा, सरोजनी का साहस, अरुणा की जिद और कमला देवी का स्वावलंबन अपनाना होगा।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारक और उनका योगदान। वार्ताकार रीमा

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज 10:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ईमेल पर आधारित आपकी पसंद का कार्यक्रम आपकी पसंद। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके, और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू-1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministers and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to the media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into two parts for the sake of appeasement. He said that on the 150th anniversary of Vande Mataram, the central government corrected this historic mistake and gave the full song legal recognition. Mr. Shah alleged that under the leadership of Rahul Gandhi, the Congress is once again following the path of appeasement for vote bank politics.
4: I appeal to my fellow citizens to reflect upon the consequences of the past decision to permit the division of Vande Mataram into two parts. We have unfortunately witnessed the regrettable consequences of that decision. I therefore urge all citizens to stand united against any such course of action and to reject the politics of appeasement pursued by the Congress party.
3: India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia. It will bring together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The BRICS Tourism Ministers meeting will begin in Jaipur today under India's BRICS Chairship 2026. Tourism ministers and senior officials from BRICS member countries will participate in the two-day meeting, which will focus on strengthening cooperation in the tourism sector. Key areas of discussion will include sustainable and responsible tourism, skill development, seamless travel, and the use of technology and artificial intelligence in tourism. National Testing Agency NTA has said that its Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students and rejected concerns about it being expensive. An NTA Answer Key Challenge is an online process where candidates who take an exam like JEE Main, NEET or UGC NET can object to errors in the provisional answer key. In a social media post, NTA said, if even a single candidate challenges a question and the subject experts accept the challenge, the revised answer key applies to every candidate who wrote the exam. The Trump administration has imposed fresh sanctions on Hezbollah and redesignated the group as an Iranian proxy. The U.S. Treasury Department announced sanctions on 10 individuals alleged to be part of a network responsible for transferring cash to Hezbollah. According to the Treasury Department, the network used couriers traveling on commercial airline flights between Lebanon, Turkey, UAE and Iran to move large amounts of money across jurisdictions, providing an avenue outside the formal financial system for Hezbollah to obtain foreign currency and evade sanctions. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over Madhya Pradesh for today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Uttarakhand, western Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of northeast India for the day. In Delhi, IMD has forecast a generally cloudy sky with a spell of light rainfall today. In hockey, Indian women's team will take on the Netherlands in the first match of the second pool phase of FIH World Cup at Amstel Wien today. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Earlier, India advanced to the second round after playing out a goalless draw against England in the final Pool D match yesterday. And that is the end of this news bulletin.
0: श्रोताओं, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। और सबसे पहले आपको बता दें अपना ईमेल आईडी, जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश, अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है iprediodelhi@gmail.com, iprediodelhi@gmail.com। और आज के इस शो में मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। दोस्तों, जिस तरीके से आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो कार्यक्रम का जो मूड है वो तो बन ही चुका है। और कहते हैं ना कि गमों की धूप से घबरा कर मुस्कुराना छोड़ दें, ये जिंदगी है जनाब, इसे हंसकर बिताएंगे। तो जिंदगी को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके अंदाज में जिंदगी के क्या मायने हैं, आप इसके साथ इस पर भी कुछ संदेश लिखिए। और हमारे पास जो पहला संदेश आया है, एयरपोर्ट रोड वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी और स्वाति का, ये कहते हैं कि कोई भी प्यारा सा गीत सुनवा दीजिए। बिल्कुल, हम आपको प्यारा सा गीत सुनवाएंगे आपसे थोड़ी ही देर में। और हमारे अगले श्रोता चंडीगढ़ से लिखते हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी, नमस्कार सिद्धार्थ जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। इंद्रप्रस्थ के लिए मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं, जी क्या बात है। हम भी ये कहते हैं कि आपकी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो हम आपकी पसंद का गीत बहुत जल्दी सुनवाते हैं। इसके साथ ही हमसे जुड़ चुके हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, और ये कहते हैं कि इन्हें कार्यक्रम बहुत पसंद है, कोई भी गीत सुनवाएं। तो बिल्कुल, आपको हम गीत सुनवाते हैं अब से कुछ ही देर में। और इसके अलावा लिखते हैं, हमारी पसंद को किसी भी गीत में शामिल करें, मैं इंतज़ार में हूँ, धन्यवाद। जी हाँ, इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया। ये कहना है सीतामढ़ी बिहार से नूर महल, मुसरत जहाँ, तलत जहाँ, फरहत, रिफत और साजिया नाजिया, बिल्कुल आप पूरा परिवार बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने आपसे बात की थी ज़िंदगी की कि जो पल मिला है उसे मुस्कुरा कर जी लेंगे, जो पल मिला है उसे मुस्कुरा कर जी लेंगे, कल की किसी खबर आज को ही खुशियों से सी लेंगे।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, अनजान लिंक्स पर क्लिक मत करिए। इस संदेश के बाद जो आपने अभी गीत सुना, इसके पहले वो था फिल्म सत्ते पे सत्ता से, जो कि हॉलीवुड फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से प्रेरित हिंदी रूपांतरण फिल्म थी। और इसमें जो सात भाइयों का किरदार था, क्या कहने हैं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त धूम मचाई थी। और लगातार आपके संदेश हमारे पास आ रहे हैं, और हमारा जो अगला संदेश है ये है शम्सुल कमर राही, शाहीन, अदनान, फैज़ान, अनु, उस्मानी, कलीम का। और ये लिखते हैं आदाब सिद्धार्थ जी, कोई भी गीत सुनवाएं। जी हाँ बिल्कुल, हम कोई भी गीत आपकी पसंद का सुनवाएंगे। और आपको एक अगला संदेश है, लिखते हैं प्रसारक जी, प्यार भरा आदाब नमस्कार, और हमें किसी भी गीत में शामिल करें। अनवर साबरी, शन्नो और मुजक्किर, ये अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। इसके अलावा लिखते हैं, हमारा अगला संदेश सतीश अनेजा जी का है। ये लिखते हैं कि नमस्कार सिद्धार्थ भाई जी, अपने किरदार को इतना खूबसूरत संजो कर रखें कि हर कोई आपसे मिलने की चाहत रखे। आपका चेहरा जहन में आते ही दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी सार्थक है और आप परमात्मा की विशेष कृपा के हकदार हैं। ये है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। इतना खूबसूरत मैसेज है, इतना प्यारा संदेश आपने लिखा है कि बस दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। और क्यों ना हो, क्योंकि जब हमारे साथ आप जैसे श्रोता जुड़ते हैं तो उस कार्यक्रम में चार चांद तो लगना ही होता है। और आपको ये भी बता दें कि इस समय दिल्ली का मौसम काफ़ी खुशनुमा है, और मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आज ये उन्होंने अनुमान जताया है कि आंशिक रूप से बादल

0: छाए रहेंगे और साथ ही हल्की बारिश भी होगी। तो सावन का महीना चल रहा है, हल्की हल्की फुहारें भी पड़ेंगी और आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आज जब हमारे बादल छाए हैं दिल्ली में और साथ में हल्की बारिश का अनुमान है, तो निश्चित तौर पर आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये समय तो बाहर निकलने का है।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

जी हाँ श्रोताओं, ये मौसम का जादू है। मौसम बाहर जब अच्छा होता है तो ये अंदर के मौसम को भी बदल देता है। हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर चलने लगते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो खुशनुमा वातावरण हो जाता है उसका असर हमारे मन पर भी बहुत पड़ता है। और ऐसा ही कुछ लिखा है हमारे जो अगले श्रोता हैं, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, ये हमें सुन रहे हैं और लिखते हैं कि आरजे सिद्धार्थ को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, और कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आसपास का मौसम कैसा है ये भी तो आप हमें बताइए, क्योंकि जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में इस समय जोरदार बारिश की संभावना है। तो बारिश जब होगी मौसम निश्चित तौर पर हसीन हो जाएगा, और जिस तरह का मौसम चल रहा है। और हमारा अगला जो संदेश आया है ये लिखते हैं कि सलाम नमस्ते, प्लीज़ अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए। नगर निगम वार्ड नंबर 28 से नास मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम बेगम, वसीम, रुबीना, नदीम, शमी, ममता, पूनम और मोहम्मद आसिफ, ये हमें लिखते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला मैसेज है ये है, लिखते हैं, डियर प्रोग्राम एंकर, ग्रीटिंग फ्रॉम आवर साइड, प्लीज इंक्लूड अवर रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग गिवन इन द सब्जेक्ट, और यू कैन इंक्लूड दिस मेल इन एनी सुटेबल सॉन्ग। जी हाँ, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप हमारे साथ कालका से जुड़ गए हैं। तो कालका में मौसम कैसा है डॉक्टर साहब, क्योंकि कालका तो बहुत, वहाँ का मौसम मुझे लगता है वहाँ भी बारिश काफ़ी हो रही होगी। और अगला मैसेज हमें उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी, कमला, गीतिका और भानु हमें मैसेज करते हैं, और ये लिखते हैं कि बारिश का मौसम तो है ही, और बारिश के मौसम में अगर कुछ शानदार गीत अगर बारिश से जुड़े हुए अगर हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो मज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मौसम बदला तो फिर याद तुम्हारी आई, मौसम बदला तो फिर याद तुम्हारी आई, बारिश की हर बूंद में तेरी कमी नजर आई।

जी हाँ, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, और कहते हैं कि बारिश की बूंदों ने आज फिर छेड़ा है दिल को। न जाने क्यों तुम्हारी याद आ गई है, या यूं कहें कि बारिश तो हर साल आती है, मगर हर बरस कुछ पुरानी यादें भी साथ लाती है। तो जब भी बारिश होती है तो यादों का दौर यूं ही चलता है, और कुछ अनजानी बातें, अनजाने चेहरे और कुछ अपने चेहरे भी हमारे जहन में उतर आते हैं। और ऐसा ही कुछ कहना है हमारे अगले जो यहाँ पर हमें जो संदेशा भेजा है, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ये लिखते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा हमें संदेश भेज रहे हैं, और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। लिखते हैं अगले श्रोता आरजे सिद्धार्थ जी नमस्कार, बातों में मिसरी की मिठास और लहजे में इतना प्यार, आपका हर एक शो लेकर आता है खुशियों की बौछार, क्या बात है। आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ के रेडियो पर आप सादगी की मिसाल हैं, सच कहूँ तो आपकी सादगी और अंदाज दोनों कमाल है, क्या बात है। आपने इतनी अच्छी बात कही है कि हमारा दिल आपने जीत लिया है। ये संदेश हमारे पास आया है पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमें लिखने वाले हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। तो पवार बंधु, ये बताइए कि आपके राजस्थान में इस समय मौसम कैसा है, वहाँ भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, तो ऐसे में आपके आस पास का जो मौसम है वो किस तरीके का है। और इसके साथ ही हमारे पास संदेश आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया का, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और हम ये कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा है आपने कि जो बारिश में हर एक नज़र हमारे मेल पर भी डालने कब से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया और हमने आप के नाम को शामिल कर लिया। और कैसे ना करें, क्योंकि आप हैं तो ही हम हैं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि अगर हमारे आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोता ना होंगे तो हम ये जो गीत है वो किसकी पसंद का सुनवाएंगे। और इस बीच बेंगलुरु से भी हमारे पास मैसेज आया है, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष का, जब इतनी दूर से कोई मैसेज आता है तो हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ओहो, हमारा अगला मैसेज जो है भिलाई से आया है। देखिए, बैंगलोर से सीधे हम चलते हैं भिलाई, जहाँ पे आर नगर कोहका से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी हमें लिखते हैं कि सिद्धार्थ जी नमस्कार, जय जोहार। हमारे यहाँ मौसम हल्की बारिश है, मौसम खुल जाते हैं फिर हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है, तो लुका छुपी बादलों की आपके यहाँ पर चल रही है। लिखते हैं कल हमारे यहाँ भिलाई में अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन हुआ, 19-20 तारीख को व्यस्त कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, हमारे पसंद का गीत सुनवा दीजिए। जी हाँ, हम आपकी पसंद का गीत कैसे ना सुनवाएं। और आप जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी आपके प्रति जिम्मेदारी बन जाती है। तो क्या कहें, कहना तो यही चाहते हैं कि दिल तो ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।

जी हाँ, हम यही कहेंगे कि वो भी क्या दिन थे जब फुर्सत हुआ करती थी, वो भी क्या दिन थे जब फुर्सत हुआ करती थी, हर शाम किसी अपने से मुलाकात हुआ करती थी।

जी हाँ, कहते हैं कि फुर्सत के वो दिन भी क्या खूब हुआ करते थे, बिना किसी वजह के भी हम खुश हुआ करते थे।

जी हाँ, कहाँ गए वो दिन जब शामें लंबी हुआ करती थीं, बातें छोटी छोटी मगर यादें बड़ी हुआ करती थीं। जी हाँ बिल्कुल, जो यादों का ये सिलसिला है ये यूं ही जारी है और आपके लगातार मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हमारा अगला ईमेल आया है, लिखते हैं कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी, आपको और पूरे आकाशवाणी परिवार को सप्रेम नमस्कार। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया रेणु, दिव्यांश, आराधना, रोनिका यादव, चंदेश गोहर, सुनील पाठक। और ये लिखते हैं कि किसी भी फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे गीत। और लिखते हैं कि अगले श्रोता रिस्पेक्टेड आर जे, तेन कितना चाहने दिया। सुरेश नारंग जी हमें लिखते हैं, हमारे रेगुलर श्रोता हैं। और इसके बाद हमारे पास अगला संदेश आया है, लिखते हैं आदरणीय सिद्धार्थ जी, सप्रेम नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल करें। और ये क्लब है हिंदुस्तान रेडियो में, तो जब आप इस तरह के आप क्लब बनाते हैं ना और सामूहिक रूप से हमें सुनते हैं, हमारे कार्यक्रमों पे चर्चा करते हैं, तो सच मानिए हमें भी बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल के बेहद बेहद करीब हैं, वो न सिर्फ रेडियो सुन रहे हैं लेकिन एक संघ बनाकर बाकी जो मित्र हैं उनको भी सुनवा रहे हैं। और ये है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, तो आप भी आज मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो टीकमगढ़ में बारिश का क्या हाल है ये भी आप हमें बताइएगा। और इसके अलावा हमारे पास सुरेश नारंग जी का मैसेज आया है, रिस्पेक्टेड आरजी सिद्धार्थ जी, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश जी लिखते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दें, बिल्कुल हम आपको अगला गीत सुनवाएंगे। और लिखते हैं रिस्पेक्टेड होस्ट जी, नमस्कार, एनी सॉन्ग प्लीज, थैंक्स, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। और आप जो मैसेज कर रहे हैं उससे तो हमें, लेकिन आपने इस मैसेज के साथ जो इतनी सुंदर जो आकृति बनाई है, जो फूल भेजे हैं हमें, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और जो कलर कॉम्बिनेशन आपने यूज़ किया है, सच में आपने दिल ही जीत लिया है। आदर्श नगर मॉलआउट पंजाब से राज शर्मा, योगेश निवान और सौरव, शैना, मीना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा सा मैसेज आपने भेजा है कि सच में एकदम दिल जीत लेते हैं आप। अगले श्रोता लिखते हैं, प्रेमपूर्वक नमस्कार, मुक्काम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर, राजे जाधव, देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे और जागुताई कुमार, संचित, प्रथमेश, सर्वद, कल्पना, सानवी और प्रणाली और पूरा जो जाधव परिवार है वो मिलकर इस कार्यक्रम को सुन रहा है। जी हाँ, और इसके अलावा कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड, एकता कॉलोनी रोहतक से आप हमें सुन रहे हैं और हमको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि आदरणीय सिद्धार्थ जी, क्या हमारा नंबर भी आएगा? काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रोग्राम, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, हमें भी ज़रूर ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो लीजिए, इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई। और कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ भी बड़ी अजीब होती हैं, दिल सीने से निकल कर आँखों में धड़कता है। तो भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा जी ने हमें संदेश भेजा है और इसके साथ संदेश चलते रहेंगे। लेकिन जो मौसम है आपके आसपास का, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आज दिल्ली के आसपास बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और देश के कई सारे राज्यों में आज बारिश हो रही है और कहाँ जहाँ नहीं है वहाँ होने वाली है, तो आप इंतज़ार करिए थोड़ी ही देर में, क्योंकि जब महीना हो सावन का और ऐसे में झूलों की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है।

जी हाँ, सावन और उस पर सावन के झूले, क्या बात है। क्योंकि कहते हैं कि सावन की फुहार, पेड़ों की डाल और झूले की बहार, याद आते हैं वो दिन जब खुशियाँ थी बेशुमार।

जी हाँ, वो सावन के झूले, वो बारिश की फुहार, वो बेफिक्र सी हंसी और अपनों का प्यार, क्या बात है। ये मौसम ही कुछ ऐसा होता है। और ख़ास तौर से ये बातें कहते हैं कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। जी हाँ, ये लिखते हैं कि नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल करें। मौसम हमारे यहाँ भी खूबसूरत हो रहा है, बिल्कुल यहाँ भी मौसम काफ़ी खूबसूरत है। और इसके बाद हमारे जो अगले लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड होस्ट जी नमस्कार, किसी भी रोमांटिक गीत में शामिल करें। तो रोमांटिक गीत, जी हाँ, सावन के झूले पड़े बैकग्राउंड में आप सुन ही रहे हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु और रिधान खुराना हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी श्रोताओं के बहुत प्यारे प्यारे से संदेश आ रहे हैं। आप बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। ओह, आप बेहद करीब से ही मैसेज आया, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमें लिख रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो हमारे बेहद करीब हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी ऑफिस की दूरी बहुत पास से हम भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ही हैं। और इसके अलावा हमारे पास अगला जो संदेश आया है वो उषा मोहन जी का है। ये और इसके अलावा जो संदेश है वो रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह। और ये कहते हैं कि इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, कस्बा बराड़ा, ज़िला अंबाला, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे पास अगला संदेश है, भाई सिद्धार्थ जी, हेलो, हम भी हैं, अभी तक नो रिप्लाई। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिहारी कॉलोनी शारदा दिल्ली से तुलसी जी, वीना जी, हम आपका पहले ही मैसेज शामिल कर चुके हैं। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। और अगले श्रोता लिखते हैं, सर जी आदाब, जिंदगी भर आपको क्या, जिंदगी पर आपको 3 मेल मैसेज किए, आपने शामिल नहीं किए, जैसी आपकी मर्जी, ऐसी हमारी जरूरत कहाँ कि आप कहें और हम ना माने, ऐसे तो हालात नहीं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, आपका मैसेज हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हम आपके मैसेज को ज़रूर शामिल करेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखना होता है, क्योंकि हमारे पास मैसेजेस की बारिश हो जाती है। तो हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि

जी हाँ, पवन चली तो साथ में खुशबू भी ले गई, जाने किसकी याद थी जो दिल तक चली गई। और हम तो आपसे यही कहेंगे कि हवा के झोंकों में कुछ पैगाम होते हैं जो कह नहीं पाते, वो अक्सर आम होते हैं। जी हाँ, हमारे अगले श्रोता लिखते हैं आत्मीय सिद्धार्थ जी, सादर प्रणाम। खुश रहना सीख लो, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जब आप खुश होते हैं ना तो आप

दूसरों के होठों पर भी मुस्कान बिखेर देते हैं, क्योंकि आपके पास जो चीज़ होती है ना, वही तो आप आगे दोगे। आप खुश रहोगे तो दूसरों में खुशियाँ बांटोगे। और ये लिखते हैं कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर, कृपया आप ये गीत सुनवाएं। बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, आप हमारे हमारा नाम ज़रूर शामिल करेंगे, हमने आपका नाम शामिल किया। और ये संदेश है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से हमारे पास ये संदेश आया है। और सोनीपत पे एक ऐसा मौसम है, आपने बताया नहीं। और अगला मैसेज संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और कमल साहनी और जी आया है जालंधर से हमारे पास मैसेज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मकर साहब, और आपने कई सारे मेल किए हैं, तो आप एक मेल भी करेंगे तो भी हम आपका मैसेज शामिल कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और रघुनाथपुर ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशियाँ में लिख रहे हैं, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत जानकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और सुदर्शन मुखी जी, आपने बड़े सारे मेल हमें भेजे हैं और लिखा है कि जी बिल्कुल आपका हमने मैसेज शामिल कर लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि सिद्धार्थ जी नमस्कार, हमारा भी मेल शामिल कर लीजिए, हम भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और हम आपको गीत सुना रहे हैं, हमें जी भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा मौसम है जहाँ से आप लिख रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि आपने ये संदेशा कहाँ से भेजा है, लेकिन हाँ जहाँ से भी भेजा है हमारे दिल के बेहद बेहद करीब है। और साथ ही हमें राजीव शर्मा का एक मेल आया है, लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर जी नमस्कार, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ हमारे मैसेज को शामिल करें, थैंक यू सो मच। तो आपके मैसेज को तो हम शामिल कर ही रहे हैं, क्योंकि हम आपके मैसेज को शामिल ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास जी, ओहो हमारे पास आपने बड़ा ही पर्सनल से मैसेज कर दिया है, अनिल मोहन जी, बिल्कुल आपने कहा है कि बहुत करीब आपका ऑफिस है और आप लिखते हैं कि आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बिल्कुल मुलाकात होगी अनिल जी, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आपने अपने फीडबैक आप हमें शेयर कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बहुत हौसला अफजाई की बात होती है। और आगे बढ़ने से पहले इस मौसम की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है जैसा होता है हमारे अंदर का मौसम भी वैसा हो जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

जी हाँ, हम भी आपसे कहेंगे कि चल कहीं दूर निकल जाएं, जब मौसम अच्छा है तो किस बात की चिंता है, क्योंकि सुहाना मौसम, ठंडी हवा और खामोशी भरी शाम, ऐसे ही पलों में दिल करता है किसी से करें कुछ बात, तो बात करने से बात बनती है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होने वाला है, लेकिन इसकी जो आपको हमने गीत सुनवाए, आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। सिद्धार्थ को नमस्कार।

0: आपसे लेंगे इजाजत, क्योंकि वक्त हो चला है समाचारों का, तो अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा किया। श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अवसंरचना तथा संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों तथा विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई।
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन न मिलने पर बढ़ते से दबाव का संकेत बताया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज ऊंची लहरों से समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने चेतावनी दी है कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलप्पुड़ा, एर्नाकुलम, मालप्पुरम, कोषिकोड, कन्नूर और कासरगोड के तटों पर आज सुबह 11:30 बजे तक 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में हो रही BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के तीसरे वरीयता प्राप्त लियांग वई खेंग और वांग चांग से होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित कार्यक्रम सबरस। आइए सबसे पहले सुनते हैं गुरुदास मान की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरसिया का आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज का गाया राग गुजी तोड़ी।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज का गाया राग गुजरी तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन

परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी तो कभी बारिश की ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास। मौसम सिर्फ बाहर का नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है, इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए। जी हाँ, और इसी के साथ हम भी आपका स्वागत करते हैं, यानी कि आप सबका घर आंगन के प्यारे से इस शो में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, तब सबसे पहले ये खूबसूरत सा गीत आपकी नजर।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत, फिल्म थी आशा। और आज आप सभी जानते हैं कि हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और आज के दिन ख़ास तौर पर ये विशेष कार्यक्रम के साथ साथ आज का दिन जो है वो भी बहुत ख़ास है, क्योंकि आज बहुत सारे दिन हैं ख़ास, लेकिन सबसे पहले ख़ास बात हम करेंगे कि आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस। जब हम बात करते हैं उन अनमोल लोगों की जिनके अनुभव हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, तो हमारे हैं वो वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें याद दिलाता है कि हम उन केवल वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि अनुभवों, संघर्षों और सीख की एक भरी खूबसूरत यात्रा है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ने परिवार को संभालने और बच्चों को संस्कार देने और समाज को बेहतर बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज ज़रूरत है कि हम उन्हें केवल सम्मान ही ना दें, बल्कि उनका साथ भी निभाएं, उनके साथ कुछ समय बैठकर बातें करें, पुरानी यादें सुनें, उनकी पसंद नापसंद जानें और सबसे ज़रूरी बात उन्हें महसूस कराएं कि वे आज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कई बार बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों या सुविधाओं की नहीं, बल्कि अपनों के समय, प्यार की होती है। आपका कुछ मिनट उनके साथ बैठना उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आइए एक छोटा संकल्प लें। हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी बात ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस घर में बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ अनुभव की रोशनी और संस्कारों की खुशबू हमेशा बनी रहती है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और अपने बुज़ुर्गों को सम्मान दें, उनका हाथ थामें और कहें आप हमारे परिवार की ताकत हैं और आज भी और हमेशा रहेंगे।

और दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि आज बहुत सारे दिवस हैं, तो पहले बात करते हैं आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जो हमें आतंकवाद के उन पीड़ितों की याद दिलाता है जिन्होंने हिंसा और आतंक के कारण अपने जीवन, अपने प्रियजनों को और अपने सपनों को खो दिया। इस दिन हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं में अपनी जान गंवाई, और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जो आज के इसके शारीरिक और मानसिक प्रभावों से जूझ रहे हैं। हमें अपने समाज में शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही आज विश्व कवि दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें कविता की उस खूबसूरत दुनिया से जोड़ता है जहाँ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि

भावनाएं, सपने और संवेदनाएं बन जाती हैं। कविता कभी खुशी की आवाज बनती है तो कभी दर्द को शब्द देती है, कभी प्रेम का इजहार करती है तो कभी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, और कभी समाज को एक नई सोच देती है। कविता की सबसे खास बात यही होती है कि ये कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है, और वही दो पंक्तियां हमारे दिल की पूरी कहानी भी बयां कर देती है। लीजिए सुनिए हेमलता की आवाज में खूबसूरत सा गीत फिल्म है अखियों के झरोखों से।

और अब बात करते हैं कुछ विश्व उद्यमिता दिवस की। उद्यमिता सिर्फ अपना कारोबार शुरू करने का नाम नहीं है, बल्कि एक विचार को हकीकत में बदलने, जोखिम उठाने और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करने का साहस है। घर से शुरू किया गया छोटा सा काम भी मेहनत, ईमानदारी और सही सोच के साथ एक बड़े उद्यम का रूप ले सकता है। हम अपने भीतर के उस विचार और हुनर को पहचानें जिसे हम अब तक टालते आए हैं। छोटा कदम उठाइए, सीखते रहिए और अपने सपनों को अवसर में बदलिए। और आज बात करते हैं लेखिका स्मृति चुगताई की जयंती की। आज हम हिंदी उर्दू साहित्य की ऐसी बेबाक और सशक्त लेखिका स्मृति चुगताई को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से समाज की उन सच्चाइयों को सामने रखा जिन पर अक्सर बात करने से लोग कतराते थे। उन्होंने आम जिंदगी और खासकर महिलाओं के अनुभवों को साहित्य के केंद्र में लाकर एक नई पहचान दी। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज को आईना दिखाने के बदलाव की शुरुआत करने का माध्यम भी हो सकता था।

एक कदम बुजुर्गों की ओर। जी हाँ, बुजुर्गों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं वो हमारे बुजुर्ग होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। जो ढाल बन के खड़े होते हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब रिश्ते नाते होते हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब खुश होते हैं वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे जीवन में उन अनमोल लोगों की, जिनकी अनुभव और आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है, वो हमारे लिए हमारे बुजुर्ग ही तो हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर अपने बुजुर्गों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, जिन्हें कभी हमारी छोटी सी मुस्कान और खुशी देती थी, क्या आज हमारी कुछ मिनटों की बातचीत उन्हें खुशी नहीं दे सकती? क्योंकि बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल नहीं, बल्कि सम्मान, अपनापन और साथ की भी ज़रूरत होती है। उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके पुराने किस्से पूछिए और उनके अनुभवों से सीखिए। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ इंसान की ज़रूरतें कम नहीं होती, बल्कि प्यार और अपनापन पाने की चाह और भी बढ़ जाती है। तो आइए आज हम संकल्प लेके अपने बुजुर्गों को परिवार का बोझ नहीं, बल्कि परिवार की ताकत समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका हाथ थामेंगे, उनके अनुभवों को अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म थी हमारी तुम्हारी। दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।
1: अच्छा।

आज और अब बात करते हैं परिवार विघटन और हमारे बुजुर्गों की। आज परिवारों में रिश्ते तो हैं, लेकिन कई बार साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है। व्यस्त जिंदगी, आपसी मतभेद और बदलती सोच के कारण संयुक्त परिवार छोटे छोटे परिवारों में बंट रहे हैं। इस बदलाव का सबसे गहरा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है। जिन माता पिता ने आपकी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी, वही उम्र के उस पड़ाव पर अक्सर अकेले रह जाते हैं, जब उन्हें सबसे ज़्यादा अपनेपन और साथ की ज़रूरत होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है और रिश्तों को जोड़कर रखने की क्षमता भी है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन में भागदौड़, हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी ज़रूरतों को समझें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की शुरुआत अपने घर से करें और अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान प्यार दें जिसके वे सच में हकदार हैं।

और अब बात करते हैं मौसम बदलने में बुज़ुर्गों के खान पान का भी रखें ध्यान। जी हाँ, बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब मौसम बदलता है, क्योंकि मौसम बदलते ही हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। और ख़ासकर घर में बुज़ुर्गों के बदलते मौसम के साथ साथ खान पान का विशेष ध्यान रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें। प्यास कम लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। मौसम के अनुसार सूप, छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी भी लिया जा सकता है। और खाने में ताज़ा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन बेहतर रहता है। दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दलिया और खिचड़ी जैसे पौष्टिक विकल्प भोजन में शामिल करें। बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार और अत्यधिक मीठा भोजन कम करें। अगर बुज़ुर्गों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या किसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी की दवा उनकी चल रही है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान पान में बदलाव करें। बहुत ठंडा या बहुत गर्म भोजन लेने से भी बचें। और हाँ, भोजन का समय नियमित रखें। लंबे समय तक खाली पेट रहने की बजाय थोड़ी मात्रा में लेकिन थोड़ा थोड़ा भोजन करना बेहतर है। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को ज़्यादा नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण की ज़रूरत होती है। इसीलिए अपने घर के बुज़ुर्गों की थाली में स्वाद के साथ साथ सेहत का भी रखें ख्याल। तो स्वस्थ बुज़ुर्ग और खुशहाल परिवार।

दोस्तों, हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो हमें सिखाया प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। और इसी खूबसूरत वादे के साथ कि आप बुजुर्गों का रखेंगे खूब सारा ध्यान और सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मिलूंगी घर आंगन के अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपये का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technologies ICTs on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. Union Minister Sindhia said in a post that the MOU would deepen bilateral collaboration on universal connectivity, cybersecurity, digital public infrastructure, emerging technologies, capacity building and exchange of best practices. He called the agreement a strong step forward in bolstering India-Brazil collaboration for a secure and inclusive digital future. The MOU was signed on the sidelines of the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune by Union Minister of Communications Jyotiraditya Scindia and Mr. Frederico de Siqueira Filho, Minister of Communications, Brazil. The 12th BRICS Communications Ministers meeting chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia is underway in Pune. It brings together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform for a Resilient Future. The event provides a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building, and inclusive digital connectivity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has underlined India's commitment to deepening economic partnership with Singapore and expanding business partnerships across Asia with greater emphasis on business-to-business collaboration, addressing the non-profit business school INSEAD alumni and students, Singaporean entrepreneurs and Indian businesses. At the India-Singapore Business Forum, the minister highlighted India's strong growth trajectory, investment opportunities, and the government's efforts under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to enhance the ease of doing business. The Union Minister further joined Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and Minister of State for Commerce and Industry, Jitin Prasada, in engaging with their Singaporean counterparts at the 4th India-Singapore Ministerial Roundtable. Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi highlighted that the country has solarized over 27 lakh pumps through Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uthan Mahabhyan PM Kusum so far, and the program has also added 15.8 gigawatt of renewable energy capacities, helping save around 806 million litres of diesel every year. Mr. Joshi chaired a meeting with the officials from the ministry yesterday to discuss the roadmap for the next phase of the PM Kusum scheme. In a social media post, Mr. Joshi said during the meeting they discussed promoting agrivoltaics in the next phase of the scheme. The minister added that they also deliberated on the trajectory for manufacturing polysilicon in the country and measures to build a robust, fully integrated domestic solar manufacturing ecosystem. The Supreme Court today modified its May 2025 verdict, reducing the earlier mandatory three-year legal practice requirement for law graduates seeking to appear in entry-level judicial service examinations to 1 year. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices A.G. Massey and K. Vinod Chandran said in a split decision of 2-1 while dismissing the review petition. The bench said candidates appearing for judicial service examinations notified between 25th May 2025 and 31st March 2027 would remain eligible regardless of prior experience. U.S. President Donald Trump has said the United States is essentially controlling strategic waterways linked to Iran and will soon take full control, while reiterating that Tehran will never be allowed to acquire a nuclear weapon. Speaking in an interview, Trump defended U.S. military action against Iran and acknowledged that Americans could face higher petrol and energy costs as a result of the conflict. Benchmark domestic equity indices were trading flat in the afternoon session today. The Sensex had dropped to 77,538, while the Nifty was down at 24,231 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, सदाबहार नगमों की महक और ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के वो शानदार किरदार जब भी रेडियो पर गूंजते हैं तो दिल पुरानी यादों में भर जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस मास्टरपीस के इस सुहाने सफर पर निकले हैं वो है साल 1958 में पर्दे पर आई सस्पेंस ड्रामा और जज्बातों से भरी क्लासिकल फिल्म काला पानी। देवानंद साहब की सदाबहार स्टाइल, मधुबाला जी की मुस्कान और नलिनी जयवंत जी का दमदार अभिनय और सचिन देव बर्मन यानी कि SD बर्मन साहब का अमर संगीत। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक खामोश और दर्दनाक सच से। नौजवान करण, इनको जब पता चलता है कि इनके पिता को बचपन से मृत माना जा रहा है तो वो पिछले 15 साल से कालापानी यानी कि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये बात इस बच्चे के मन को झकझोर देती है, वो भी ऐसे कत्ल के जुर्म में जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। करण की रूह कांप जाती है, वो कसम खाता है कि वो अपने बेगुनाह बाप के माथे से कातिल का दाग मिटा कर रहेगा। फिर शुरुआत होती है सबूतों की तलाश। इस तलाश में करण अपना शहर छोड़कर हैदराबाद पहुंचता है। यहां उसकी मुलाकात होती है एक निडर और चुलबुली पत्रकार आशा से। करण आशा के घर में किरादार बनकर रहने लगता है। जहां एक तरफ करण अपनी गुप्त मुहिम में लगा रहता है, वहीं आशा की नटखट शरारतें और करण का अंदाज़े बयां दोनों के बीच प्यार की एक मीठी सी चिंगारी सुलगा देता है। और इस मीठी नोकझोंक के बीच फिजाओं में तैरने लगता है ये दिलकश नगमा।

0: देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
1: अच्छा जी मैं हारी, चलो

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

करण जब कत्ल की पुरानी फाइलों को खंगालता है तो उसे पता चलता है कि 15 साल पहले एक वेश्या की गवाही को बदलकर उसके पिता को फंसाया गया था, और उस सच की चाबी आज भी उसी तवायफ किशोरी के पास है जो एक खत के रूप में मौजूद है। किशोरी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। करण अपना नाम और पहचान बदलकर किशोरी के कोठे पर कदम रखता है। वो एक रईस और आशिक मिजाज इंसान का नाटक करता है ताकि किशोरी का भरोसा जीत सके। किशोरी के महफिल में जब घुंघरू छनकते हैं तो एक अजब सी समा का एहसास होता है।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भी अपनी प्रतिक्रिया में भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। हमारे श्रोताओं, आपको बताइए, हम बात कर रहे हैं फिल्म कालापानी की, और इस कार्यक्रम में

आप सुन रहे हैं खूबसूरत नगमे और इस फिल्म की खूबसूरत कहानी भी। कहानी के इस मोड़ पर नलिनी जयवंत जी का वो अधिकारी भरा अंदाज और आशा भोसले की वो मखमली आवाज, लेकिन कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। करण तो किशोरी के सामने सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था ताकि वो सबूत हासिल कर सके, लेकिन किशोरी सचमुच करण को अपना सब कुछ मान बैठती है। दूसरी तरफ करण अपनी प्रेमिका आशा से भी अपनी नज़रें नहीं मिला पाता। करण खुद अंदर ही अंदर घुट रहा है कि वो अपने बाप की बेगुनाही साबित करने के लिए एक औरत के जज्बातों के साथ खेल रहा है। उसी कश्मकश, बेखुदी और दर्द में डूबा हुआ करण जब अपनी बेबसी बयां करता है तो मोम की तरह पिघल जाता है हर सुनने वाले का दिल।

मोहम्मद रफ़ी साहब की गाई ये गज़ल मजरू सुल्तानपुरी के लफ्ज़ और दादा बर्मन की धुन, सच मानिए श्रोताओं, ये सिर्फ गाना नहीं रूह की पुकार है। अब आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोड़। किशोरी को जब पता चलता है कि करण उससे प्यार नहीं करता बल्कि वो तो सिर्फ उस खत के लिए आया था, तो उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। लेकिन जब उसे करण के पिता की बेगुनाही और करण की

0: ये मजबूरी का पता चलता है तो एक औरत के निस्वार्थ प्यार को जगने में समय नहीं लगता।
1: दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुंचे, ओ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुंचे।

0: आप पहुंचे।
1: श्रोताओं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। किशोरी अपनी जान जोखिम में डालकर वो असली खत करण के हाथों में सौंप देती है। उधर असली कातिल और शहर के ताकतवर लोग करण को मिटाने की साजिशें रचते हैं, लेकिन आशा और किशोरी के साथ इससे करण अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। अदालत में जब 15 साल पुराना राज खुलता है तो अंधकार छंट जाता है। करण अपने पिता को कालापानी के उस अंधेरे से निकालकर बाइज्जत बरी कराता है। अपनों के लिए किया गया संघर्ष और सच्चे प्यार की ये जीत हमें ये बताती है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सच का सूरज एक दिन ज़रूर उगता है। और इस अमर दास्तान के अंत में गूंजती है किशोरी के उस अधूरे प्यार की ये कसक।

अभी आपने काला फिल्म काला पानी फिल्म का ये खूबसूरत नगमा सुना। श्रोताओं, ये अब देख लेते हैं कि किन श्रोताओं ने हमें मेल पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ये मेल तो हमें बहुत सारे आए हैं, कुछ ख़ास मेल हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहला मेल हम ले रहे हैं, ये मेल हमें भेजा है स्वर्ण सिंह ने, गांव लोगट ठाकुरावाला से। इनके साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। अगला ईमेल हमें भेजा है संदीप मकड़ साहब ने। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। उषा मोहन, फारूक अली खान, राजकुमार डुड्डी, सुधाकर जाधव, अनिल मोहन, हीरामणि वर्मा, धर्मेंद्र चीपा, नितेश, सुदर्शन शाह, अनिल मोहन, रोहित विष्ट और संदीप मक्कर। तो आप सभी श्रोता जो हमें इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम इतनी शिद्दत से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी इस कार्यक्रम में हमें ईमेल के थ्रू भेजते हैं। आइए चलते चलते आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और नगमा।

0: श्रोताओं, ये थी 1958 की ब्लॉकबस्टर क्लासिकल फिल्म काला पानी। इसकी बेहद दिलचस्प, रहस्यमयी और जज्बाती दास्तां। उम्मीद है एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आपको मज़ा आया होगा। अगले हफ्ते हम यूं कहें कि कल फिर हाजिर होंगे किसी और फिल्म और अनोखी कहानी और सदाबहार नगमों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक मीटिंग दौरान भारत ते ब्राजील ने दूर संचार ते सूचना ते संचार टेक्नोलॉजियां विच सहयोग नूं होर डूंघा करन लई सहमति पत्र ते दस्तखत कीते। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर नाल आर्थिक भाईवाली नूं डूंघा करन लई भारत दी वचनबद्धता ते जोर दित्ता है। सुप्रीम कोर्ट वल्लों एंट्री लेवल न्यायिक प्रीख्या लई 3 साल दी लाजमी कानूनी प्रैक्टिस नूं घटा के 1 साल कीता गया। दिल्ली पुलिस दे साइबर सैल ने एक अंतरराज्जी डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क दा पर्दाफाश करदियां पंजाब ते राजस्थान तो 4 मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता है। टेरिटोरियल आर्मी ने राष्ट्रीय पद्धर दा हैकेथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 शुरू कीता। दूर संचार विभाग ने अज किया कि भारत अते ब्राजील ने ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक मीटिंग दे मौके ते दूर संचार ते सूचना ते संचार टेक्नोलॉजी आईसीटी विच सहयोग नूं डूंघा करन लई एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच दूर संचार विभाग ने किया कि समझौता डिजिटल नवीनता नूं अगे वधाएगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करेगा अते उभर रहीयां टेक्नोलॉजियां विच सहयोग नूं उत्साहित करेगा। पुणे विच 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियां दी मीटिंग

0: ना समेत सारे किसानों तक पहुंचे। अजे ही एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है सितंबर 2018 में शुरू की गई सी। इसका उद्देश्य खपतकारा लिए कीमत स्थिरता नु यकीनी बनाना जदों की किसानों नु उन्हां दी मेहनत का ढुकवा मुल मिलना यकीनी बनाना है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय ने कहा कि इस योजना लई बजट वंड पिछले कई सालों विच काफी वधी है। 2024-25 विच इस योजना तहत असल खर्च करीब 5,400 करोड़ रूपये से दो जो 2026-27 विच वध के 7,000 करोड़ रूपये तो वध हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू ते श्रीनगर विचकार उधमपुर राही तीजी वंदे भारत रेलगड्डी शुरू करने लिए तैयार है। यह नवी सेवा मुसाफिरों नूं इक होर यात्रा विकल्प प्रदान करेगी अते जम्मू कश्मीर के दोवां शहरां विचकार रेल समर्था वधाउण विच सहायता करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र नाल एक्स ते पोस्ट सांझी कीती। पत्र विच श्री वैष्णव ने कहा कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर राही जम्मू तवी ते श्रीनगर विचकार तीजी वंदे भारत एक्सप्रेस लई प्रवानगी दे दित्ती गई है। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम से 20,000 रूपये के नकद इनाम की पेशकश करने और उपभोक्तावां नूं उन्हां दी निजी जानकारी सांझी करने लई ठगण वाले ऑनलाइन चल रहे धोखाधड़ी वाले सर्वेखण का खंडन किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह सर्वेखण जाली है ते एक फिशिंग कोशिश है। पीआईबी ने अगे कहा कि इंडिया पोस्ट ने अजिहे किसी भी सर्वेखण क्विज मुकाबले जां नकदी देने की ना तो हमायत की है ते ना ही अधिकारित किया है। टेरिटोरियल आर्मी ने एक राष्ट्रीय पद्धर का हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 शुरू किया जिसका उद्देश्य रक्षा साइबर सुरक्षा ते सूचना सुरक्षा विच उभर रही चुनौतियां दा हल कढ़ण लई नवीनताकारी हल विकसित करना है। साइबर पीस ते सहयोग नाल शुरू किया गया यह हैकाथॉन अकादमिक सनत खोज संस्थावां सरकारी संगठनां अते हथियारबंद बलां तों तकनीकी प्रतिभा नूं इकट्ठा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह पहल कदमी उभर रहे खेतरां ते केंद्रित होगी जिस विच आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस साइबर सुरक्षा अते डिजिटल जागरूकता शामिल मिलने के राष्ट्रीय सुरक्षा लिए समावेशी हलां दे विकास नूं उत्साहित करेगी। मुकाबले लिए रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त तक खुली है। ऑनलाइन दौर पहली तो 10 सितंबर तक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिस तो बाद 6 से 8 अक्टूबर तक नवी दिल्ली विच ग्रैंड फिनाले होगा। हॉकी विच भारत की औरतों की टीम आज एम्स्टलवीन विच एफआईएच विश्व कप के दूजे पूल पड़ा दे पहले मैच विच नीदरलैंड्स खिलाफ खेडेगी। ए मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। आखिर च खास खबरां ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक मीटिंग दौरान भारत ते ब्राजील ने दूरसंचार अते सूचना ते संचार टेक्नोलॉजियां विच सहयोग नूं होर डूंगा करन लई सहमति पत्र ते दस्तखत कीते। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर नाल आर्थिक भाईवाली नूं डूंगा करन लई भारत दी वचनबद्धता ते जोर दित्ता है। सुप्रीम कोर्ट वल्लों एंट्री लेवल न्यायिक प्रीख्या लई 3 साल दी लाजमी कानूनी प्रैक्टिस नूं घटा के 1 साल कीता गया। दिल्ली पुलिस दे साइबर सैल ने एक अंतरराजी डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश करदिआं पंजाब ते राजस्थान तो 4 मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता है। इस दे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। पुणे में ब्रिक्स आईसीटी मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तिरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तावुन की खातिर मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तिहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके 3 साल से 1 साल कर दिया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इकतसादी शराकतदारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमरीका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि यह कदम अमरीका की दाखिली इकतसादी मुश्किलात से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और FIH आलमी कप में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। टेली मुवासलात के महकमे ने बताया है कि भारत और ब्राजील ने टेली मुवासलात और इतलाती मुवासलाती टेक्नोलॉजी ICT से मुतालिक तावुन को मजीद बढ़ाने की खातिर आज पुणे में ब्रिक्स मुमालिक की इतलाती मुवासलाती टेक्नोलॉजी आईसीटी ट्रैक मीटिंग से अलहदा एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में टेलीमुवासलात के महकमे ने कहा कि इस मुआहिदे से

0: डिजिटल इख्तिरा को फ़रोग मिलेगा, डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में तआवुन को फ़रोग मिलेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पुणे में मुनाकिदा ब्रिक्स ममालिक के मुवासलात के वज़रा की मीटिंग से अलहदा मुवासलात के मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राज़ील के मुवासलात के वज़ीर फ्रेडरिको डी सिकेरा फिल्हो ने इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोस्ट में कहा कि इस मुफाहमतनामे से यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, सलाहियत साजी और बेहतरीन तौर तरीक़ों के तबादले से मुतालिक दो तरफ़ा तआवुन में मज़ीद इजाफा होगा। इस शराकत दारी का मकसद दोनों मुल्कों में शमूलियाती, महफूज और मजबूत डिजिटल इको निज़ाम को फ़रोग देना है। कौमुदी पारिक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारत की ब्रिक्स 2026 की सदारत के तहत जयपुर में आज दोपहर ब्रिक्स सियाहती वुजरा की मीटिंग शुरू होगी। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के सियाहती वुजरा और सीनियर अफसरान इस दो रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में तआवुन बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मीटिंग में पायदार और जिम्मेदार सियाहत, महारत पैदा करने और सफ़र को आसान बनाने, नीज सियाहत में मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस वजारती मीटिंग से तवक्को है कि ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तआवुन को तकवीत मिलेगी और सयाहों की आमद रफ्त में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के अपने फैसले को आज तब्दील किया है। इसके तहत इब्तदाई सतह के कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने के लिए कानून के तलबा को 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस करना ज़रूरी था, जिसको अब 1 साल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एजी मसीह और के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने 1-2 से ये फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवार जो 25 मई 2025 और 31 मार्च 2027 के दरमियान नोटिफाई किए गए हैं, इम्तिहान देने के मजाज होंगे। ताहम इन इम्तिहानात के जरिए मुंतखब किए गए उम्मीदवारों को पहले ट्रेनी जुडिशल अफसर के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा और उन्हें जुडिशल अकेडमी में 1 साल की तरबियत हासिल करना होगी, जिसके बाद मजीद 1 साल के लिए उन्हें क्लर्क के तौर पर काम करना होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पूरे एशिया और सिंगापुर के साथ इकतसादी साझेदारी को सनत से सनत के दरमियान मजबूत तालमेल पैदा करते हुए भारत के अज़्म को उजागर किया है। भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम में सिंगापुर के एंटरप्रेन्योर्स और भारतीय ताजिरों और तिजारती स्कूल इनसीड के फारिगीन से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने भारत के तरक्की के सफ़र, सरमायाकारी मवाक़े और तिजारत के लिए पैदा की गई आसानियों को बढ़ाने की खातिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के तहत हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। जनाब गोयल ने सिंगापुर के खारिजी उमूर और तिजारत और सनत के वज़ीर मुमलिकत गान सीओ हुआंग और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से मुलाकात भी की। बरामद को फ़रोग देने की खातिर APEDA कम कीमत रोड शो के मौके पर यह मुलाकात मुनक़द की गई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नई और काबिल तश्दीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजारत के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने पीएम कुसुम के अगले मरहले के रोड मैप के बारे में बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने बताया कि कल इस मीटिंग के दौरान उन्होंने मजकूरा स्कीम के अगले मरहले में ज़रई शमसी तवानाई को मजीद फरोग देने के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में पीएम कुसुम के जरिए अब तक 27 लाख से ज़्यादा पंपों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 15.8 गीगावाट काबिल तश्दीद तवानाई की सलाहियत में इजाफा भी हुआ है, जिससे हर साल तकरीबन 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत करने में मदद मिल रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि उन्होंने मुल्क में पॉली सिलिकॉन की तैयारी और शमसी साजो सामान के अंदरून मुल्क तैयारी का मजबूत और पूरी तरह मरबूत इकोसिस्टम तैयार करने के इकदाम के बारे में भी तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने छोटे और हाशिए पर रह रहे किसानों समेत सभी किसानों तक कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP के फ़ायदे पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा बड़ा कदम है। ये स्कीम लोगों के दरमियान कीमतें मुस्तहकम करते हुए किसानों को दी जाने वाली कीमतों को यकीनी बनाने के लिए सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। किसानों की बहबूद और ज़िरात के मरकजी वजीर ने बताया कि इस स्कीम के तहत पिछले कुछ बरसों में बजट में मुख्तस की जाने वाली रकम में इजाफा किया गया है। 2024

0: 2025 में इस स्कीम के तहत हकीकी खर्च तकरीबन 5,400 करोड़ रुपए था, जिसमें इजाफा करते हुए 2026-27 में इसे 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर दिया गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान उधमपुर होते हुए एक तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है। इस नई रेल खिदमत से मुसाफिरों को काफ़ी राहत मिलेगी और जम्मू और कश्मीर के दो शहरों के दरमियान रेलगाड़ी की खिदमत में इजाफा होगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव का एक खत शेयर किया है। इस खत में जनाब वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर होते हुए जम्मू तवी और श्रीनगर के दरमियान एक तीसरी वंदे भारत के लिए मंजूरी दे दी गई है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराकची ने ईरान के खिलाफ इकतसादी धमकियों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि इस तरह की नाकाम पॉलिसियों से ईरान के लोगों में मजीद नफरत पैदा होगी और ये पॉलिसियां मजीद नाकाम होंगी। इराकची का बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त इकतसादी इकदाम की धमकी के बाद सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास इराकची ने कहा कि इन धमकियों का मकसद अमरीका के अवाम की मुल्क के अंदरूनी माली मसाइल से तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा कि अमरीका की इक्तसादी दहशतगर्दी से आलमी मईशत और दुनिया भर के ममालिक की अपनी खुद मुख्तारी को ख़तरा लाहिक है। इससे कबल अमरीका के वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कल कहा कि ईरान दुनिया की तारीख में सबसे बड़े इकतसादी तौर पर अलग थलग किए जाने का सामना करेगा। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने उन ममालिक और कंपनियों को इजाफी बंदिशों की धमकी दी थी जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका के इत्तेहादी अपने मौकिफ के ताल्लुक से फैसला करें। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी जांच के बाद आज सुबह फिर से रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान को आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नेदरलैंड्स का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पुणे में ब्रिक्स ICT मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राज़ील ने डिजिटल इख्तिरा को फ़रोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तआवुन की खातिर मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके 3 साल से 1 साल कर दी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इकतसादी शराकत दारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमरीका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि ये कदम अमरीका की दाखिली इकतसादी मुश्किलात से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और FIH आलमी कप में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला नेदरलैंड्स की टीम से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. United States wants to impose toughest sanctions on Iran. Tehran says move seeks to divert attention from US domestic financial problems. And Indian duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advance to women's doubles semi-finals of BWF World Championships.
2: Union
1: Union Home Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stones for several projects worth around

0: को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है

0: घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से SSP के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति AG मसे और K. विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
5: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।

0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
1: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
3: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में

0: तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
1: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार। आज एक कलाकार प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसका अंदाज ही अलग है। नवाबी भी है। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की। एक्टर, प्रोड्यूसर और स्टाइल आइकन जिन्होंने ओमकारा में लंगड़ा त्यागी बन के सबको हिला दिया, लवाजकल में दिल जीता और तांडव में पॉलिटिक्स का रंग दिखाया। तो अगले 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ सैफ अली खान के किस्से, उनकी फिल्मों और उनकी कलाकारी के नाम।

आज हम बात कर रहे हैं एक कलाकार, मैं कलाकार सैफ अली खान की। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ था। इनके पिता मंशूर अली खान पटौंदी एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और माँ शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। इनके पूर्वज पटौंदी रियासत के नवाब थे तथा इनके पूर्वज भोपाल के नवाब भी कहे जाते हैं। इनका बचपन से ही भोपाल से महत्वपूर्ण संबंध रहा है। इन्होंने अपना जो स्कूल लाइफ थी वो लॉरेंस स्कूल सनावर और लॉकस पार्क स्कूल हेटर्डफोर्ड सिरे इंग्लैंड में पूरा किया, जिसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सैफ अली खान विंचेस्टर कॉलेज इंडिपेंडेंस स्कूल फॉर बॉयज़ इन यूनाइटेड किंगडम चले गए। अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने 2 महीनों तक दिल्ली स्थित एक एडवर्टाइजिंग फर्म के लिए काम किया। उसके बाद उनके पारिवारिक मित्र के कहने पर उन्होंने कपड़ों के ब्रांड ग्वालियर स्वीटिंग्स के लिए कुछ विज्ञापनों में भी काम किया, पर किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और उन्हें मुंबई आना पड़ा। इनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत कैसी हुई और भी बातें जानेंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

सैफ अली खान ने अपने अभिनय की शुरुआत परंपरा फिल्म जो कि 1993 में आई थी, इसके बाद मल्टी स्टारर ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कच्चे धागे और हम साथ साथ में सफलता मिली। 2000 के दशक में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी दिल चाहता है जो 2001 में आई थी, कल हो ना हो जो कि 2003 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की और कई पुरस्कार भी जीते, और रोमांच हम तुम, परिणीता, सलाम नमस्ते और तारा रम पम पम में एक एकल पुरुष कलाकार के रूप में सफलता हासिल की। सैफ अली खान को एक हसीना थी में एक चालाक व्यवसायी, अंग्रेजी फिल्म बीइंग साइरस में एक प्रशिक्षक और ओमकारा में इयागो के किरदार के लिए काफ़ी सराहना मिली थी। उन्हें एक्शन थ्रिलर रेस और रेस टू जो कि 2013 में आई थी और रोमांटिक कॉमेडी लव आजकल और कॉकटेल में भी व्यावसायिक सफलता मिली। कई अन्य असफल फिल्मों के बीच खान को नेटफ्लिक्स की पहली भारतीय मूल श्रृंखला सेकंड गेम्स में मुख्य भूमिका निभाने के लिए सराहा गया और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्शन फिल्म तानाजी और देवरा जो कि पार्ट 1 थी।

सैफ अली खान को क्राइम ड्रामा से लेकर एक्शन थ्रिलर और कॉमेडी रोमांस तक विभिन्न फिल्म शैलियों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। फिल्मी करियर के अलावा खान एक नियमित टेलीविजन प्रस्तोता और मंच कलाकार भी हैं। विभिन्न ब्रांडों और उत्पादकों का विज्ञापन करते हैं और इल्यूमिनाती फिल्म्स और ब्लैक नाइट फिल्म्स नामक प्रोडक्शन कंपनियों के मालिक भी हैं। सैफ अली खान ने कई पुरस्कार भी जीते, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं, और उन्हें 2010 में पद्मश्री चौथा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ।

और इसी गीत के साथ ही सैफ अली खान पर आधारित एक कलाकार प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। सैफ ने हर रोल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उम्मीद है आपको उनके बारे में ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। मैं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा मिलूंगी आपसे अगले एक कलाकार में किसी और नए सितारे के साथ। तब तक के लिए फिल्मी गीतों का मज़ा लीजिए और याद रखिए, असली कलाकार कभी पुराना नहीं होता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त निधि वर्मा को इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडियस, फिल्मी सॉन्ग ऑफ गोल्डन एरा।

0: घर के सामने।
1: लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तेरे घर के सामने फ़िल्म का ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने। अब आइए सुनवाते हैं आपको बेहद ही खूबसूरत सा गीत परख फिल्म से, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

मेरा साया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीत को संगीत दिया था मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शोर फिल्म से, लता मंगेशकर, मुकेश कुमार और साथियों की आवाज़ में।

लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज़ में शोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने।

गुलजार के लिखे इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत दिया था एस आर डी वर्मन ने और फिल्म का नाम था आंधी। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म कटी पतंग से।

कटी पतंग फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मैटिनी मेलोडियस अब यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

आमीन। अभी आप मीरा बासु की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मिर्ज़ा गालिब का। सामीन, इस्मत चुगताई 21 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में पैदा हुई। उनकी परवरिश भाइयों के साथ हुई, लिहाजा गिल्ली डंडा खेलना, घुड़सवारी करना

दरख्तों पर चढ़ना वगैरह उन्हें अच्छा लगता था। वो बचपन से ही बेबाक थीं। इब्तदाई तालीम के बाद अलीगढ़ से एफ़ए का इम्तिहान पास किया और लखनऊ के आईआईटी कॉलेज में दाखिले लिया। बाद अज़ां अलीगढ़ से बीटी पास किया। इस्मत चुगताई ने 12 बरस की उम्र से कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थीं। उनकी पहली कहानी फसाद के उनवान से सन 1939 में रिसाला साकी में शाया हुई थी। उनकी कहानियों के दो मजमूए कलियां और चोटें सन 1941 और 42 में शाया हुए। उनकी तख्लीकात हकीकत निगारी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके यहाँ रिवायत से बगावत और इन्हराफ है। बकौल पीर अकरम, कब हमारे हाथ आईं खुशियों की तितलियाँ, उम्र गुजरी बस यूं ही रंगों के पैकर देखते, जिंदगी की गहमा गहमी ने ये फुर्सत ही न दी, हम हथेली पर लिखा अपना मुकद्दर देखते। आइए सामीन, हरी हरन की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है विजय सिन्हा का।

सामिन, अभी आप हरिहरन की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था विजय सिन्हा का। सामिन, इस्मत चुगताई तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थी। वो मुतवस्सित तबके की औरतों के मसाइल को अपनी तहरीरों में लाईं। वो समाज के ऐबों को जाहिर करके उनका इलाज करना चाहती हैं। वो लिखती हैं कि ज़ख़म में मवाद भर जाए तो उस पर पट्टियाँ बांधने से बेहतर है कि नश्तर लो और जर्राही शुरू कर दो। उनका अफसाना लिहाफ पर फुहाशी का इल्ज़ाम भी लगा और ये अफसाना उनकी पहचान बन गया। बकौल ख्वाजा मीर दर्द, तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। आइए सामेन, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है राहत इंदौरी का।

सामीन, अभी आप अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था राहत इंदौरी का। सामीन, इस्मत चुगताई की शादी फिल्म प्रोड्यूसर शाहिद लतीफ़ से हुई थी। उन्होंने फिल्मों के लिए कहानियाँ और मकालमे भी लिखे। वो अपने मकालमों में तंज़ो ज़राफ़त से काम लेती हैं और किरदारों से अक्सर तीखी ज़बान इस्तेमाल कराती हैं। यही ज़बान उनके फ़न को चार चांद लगाती है। कई अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। ज़िद्दी, मासूमा, टेढ़ी लकीर, दिल की दुनिया, एक कतरा खून वगैरह नावल हैं। उन्हें अदबी खिदमात के सिले में कई एजाजात मिले। सन 1975 में पद्मश्री का एजाज मिला। सन 1990 में इकबाल सम्मान से नवाजा गया। गालिब अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए। 24 अक्टूबर सन 1991 को वो इस दारे फानी से कूच कर गईं। वजाहत अली संदेलवी का शेर है, अमन हो, इंसाफ हो और हो मोहब्बत की फ़िज़ा, एक दुनिया हम बनाएं एक नए उनवान से, आब गुल से दीदाए बेदार पैदा कर दिया, हम भी छूटे ज़िंदगी के एक बड़े एहसान से। आइए सामीन, जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है राजेश रेड्डी का।

सामिन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशार गज़ल।

इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे उर्दू मजलिस कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने इसके लिए देश में अनुकूल इकोसिस्टम की जरूरत पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जिसका वर्तमान अनुमान लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर है, उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकता वैश्विक स्वास्थ्य सेवा बाजारों के लिए प्रौद्योगिकियों को डिजाइन, विकसित, निर्मित और निर्यात करना होना चाहिए। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की भी बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के

0: दसों का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस संबंध में अपने पिछले साल के फैसले में संशोधन किया है। न्यायालय की पीठ ने पुनर्समीक्षा खारिज करते हुए बहुमत से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के लियांग और वांग की जोड़ी से होगा। मैच शाम 4:30 से खेला जाएगा। इससे पहले त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने 4वीं वरीयता प्राप्त चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between the space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Mr. Modi also congratulated the leaders of the space sector for showing courage and taking the lead in a new area. Union Home Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stones for several projects worth around 189 crore rupees at the headquarters of the Sashastra Seema Bal SSB in Siliguri, West Bengal today. Mr. Shah stated that since the BJP government came to power at the centre, the welfare of personnel responsible for border security has been given utmost priority. He highlighted that the SSB is performing the challenging task of guarding open borders with countries like Nepal and Bhutan, calling it one of the toughest duties. Mr. Shah is addressing a gathering after inaugurating an exhibition on Bharatiya Nyay Samhita in Siliguri. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The ministry informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance, and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. He also emphasized public awareness and preventive health practices, including respiratory hygiene and hand hygiene, and advised individuals with persistent or severe respiratory symptoms, breathing difficulty, or other warning signs to seek medical advice promptly. The government today signed a $230 million loan with Asian Development Bank or ADB to modernize and expand Chennai's water supply and sanitation infrastructure. The Ministry of Finance said that the Chennai Climate Resilient Water Security and Sewerage Project will improve access to safe and reliable water supply and better sanitation services across Chennai. Legendary actress Saukar Janki passed away in Chennai. The 94-year-old actor Sankaramanchi Janki, widely known as Saukar Janki, breathed her last due to age-related illnesses at a private hospital today. Saukar Janki was well known in South Indian films with an outstanding number of nearly 400 films. a recipient of Padma Shri, Filmfare Lifetime Achievement Award, two Nandi Awards and a Kalaimamani Award, she started her career in films in 1950. Union Minister J.P. Nadda today hit out at the Congress leader and leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, over his sit-in protest outside the Sansad Marg police station in New Delhi. Talking to media, Mr. Nadda said that this protest is neither for the interest of the students nor for the sake of justice. He alleged that this is a symbol of the Congress party's political desperation and Mr. Gandhi's hunger for media attention. India's Kajal Dhochak has won her second consecutive Under-20 World Wrestling Championship title. She clinched the women's 76-kilogram gold medal with a commanding 7-0 victory over China's Xing Rosun in the final. In the 72-kilogram category, Tanu Sharma, and in the 62-kilogram category, Savita, won silver medals after losing their respective final bouts. India's Mansi Lathar is in contention for gold in the 68-kilogram category. In badminton, India's Trisha Jolly and Gayatri Gopichand have stormed into the women's double semi-finals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian duo displayed remarkable grit, coming from a game down to overcome fourth seeds Xia Yifan and Shang Shuxian of China. With this triumph, Trisha and Gayatri have assured India of a coveted medal at the prestigious championship. And in hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
3: Yagashwani Dilika in the Prastha Channel. लीजिए प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सबसे पहले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है गुंजन पुत्री संदीप। गुंजन एक लड़की हैं, इनकी उम्र है 9 साल, रंग गोरा, शरीर पतला है, कद है 3.5 फुट। गुंजन 17 अप्रैल 2026 से सेक्टर 65 गुरुग्राम से लापता है। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है ईशिका पुत्री संदीप। ईशिका लड़की हैं, इनकी उम्र है 4 साल, शरीर मजबूत, रंग गोरा है, कद है 2.5 फुट। ये 17 अप्रैल 2026 से सेक्टर 65 गुरुग्राम से लापता हैं। लक्ष्मी पुत्री विजेंद्र सिंह। लक्ष्मी भी लड़की हैं। लक्ष्मी की उम्र है 20 साल, इनकी आंख कान नाक औसत है, कद है 5 फुट, रंग सांवला। ये 4 अप्रैल 2026 से सरस्वती कुंज गली नंबर 2 पुलिस स्टेशन बिसरख गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है विद्या पुत्री चंद्र। ये लड़की हैं, उम्र है 20 साल, शरीर हल्का है। विद्या का कद है 5 फुट 1 इंच। ये 1 मार्च 2026 से सी ब्लॉक सेक्टर 3 बिसरख गौतम बुद्ध नगर से लापता है। निशा कुमारी महिला है, उम्र है 20 साल, शरीर पतला, कद है 5 फुट 4 इंच। निशा 17 अप्रैल 2026 से सुतियाना इकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर से लापता है। प्रांशु कुमार ये पुरुष हैं, उम्र है 48 साल। प्रांशु का कद है 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा है, आंख का नाक औसत। प्रांशु 31 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर से लापता है। अंजलि कुमारी पुत्री सुरेंद्र। अंजलि लड़की हैं, इनकी उम्र है 19 साल, कद 5 फुट 1 इंच, रंगे हुआ, शरीर गहरा है। ये ग्राम अकालपुर थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। और अंतिम गुमशुदा व्यक्ति का नाम है तमन्ना। तमन्ना लड़की हैं, उम्र है 22 साल, कद 5 फुट 2 इंच, शरीर पतला है, इनकी आँख का नाक औसत है। ये 21 अप्रैल 2026 से

रबुपुरा गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में कोई भी सूचना आपके पास है या कोई भी जानकारी आपको मिले तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर टोल फ्री नंबर 112 यानी 112 पर फ़ोन कर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। अभी आप गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुन रहे थे। श्रोताओं, आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद शाम 4:15 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर लोकरंजनी। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। संस्कृत वार्ता आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। ग्राम संसार कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। इसमें आप सुनेंगे चर्चा, आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण, श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बातचीत होगी मॉनसून में डेंगू की रोकथाम, लक्षण, उपचार और बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोशन कुमार, CGHS नई दिल्ली। इस कार्यक्रम में हम आपको लोकगीत भी सुनवाएंगे। अभी हमारे श्रोता कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम युवाणी।

0: कुछ कहानियाँ हमें हंसाती हैं, कुछ आँखों में नमी छोड़ जाती हैं, कुछ किरदार पर्दे से उतर कर दिल में बस जाते हैं, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है वक्त कुछ पल के लिए पीछे लौट आया हो।
1: शायद यही तो खूबसूरती है एंटरटेनमेंट की। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, एक अच्छी फिल्म, एक शानदार वेब सीरीज या कोई पसंदीदा गीत हमें कुछ देर के लिए अपनी दुनिया से बाहर निकाल कर एक नई दुनिया में ले ही जाता है। कभी हम किसी कहानी के साथ हंसते हैं, कभी उसके किरदारों के साथ इमोशनल होते हैं, और कभी कोई गीत अचानक किसी पुरानी याद को फिर से जिंदा कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी।
0: मैं हूं सिद्धांत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम युववाणी, और आज का हमारा फ्राइडे स्पेशल है पूरी तरह एंटरटेनमेंट के नाम। आज बात होगी फिल्मों की, ओटीटी की, नई रिलीजेस की, नए गानों की, और उन कहानियों की जो हमारी स्क्रीन से निकलकर कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं।
1: क्योंकि एक वक्त था जब फ्राइडे का मतलब होता था नई फिल्म का इंतजार, थिएटर जाने का प्लान, टिकट बुक करना और बड़े पर्दे पर अपनी फेवरेट कहानी को देखने का एक्साइटमेंट।
0: लेकिन आज एंटरटेनमेंट की दुनिया हमारी जेब में ही है। बस स्मार्टफोन उठाइए, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म खोलिए, और फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक दुनिया भर का कंटेंट आपके सामने।
1: तो सवाल ये है कि क्या ओटीटी ने हमारे एंटरटेनमेंट को सिर्फ आसान बनाया है या फिर सिनेमा देखने का हमारा पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया है दोस्तों?
0: क्या थिएटर का वो बड़ा पर्दा, ऑडियंस के साथ बैठकर फिल्म देखने का एक्साइटमेंट, और किसी बड़े सीन पर पूरे हॉल की रिएक्शन आज भी उतनी ही खास है? और अगर एक तरफ नई फिल्म है और दूसरी तरफ कोई नई वेब सीरीज, तो हमारी वॉच लिस्ट में आखिर जगह पहली जगह किसे मिलेगी?
1: इन्हीं सवालों पर बात करेंगे आज के पहले सेगमेंट आज की बात में। इसके बाद होगा हमारा दूसरा सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक, देन अराउंड द वर्ल्ड, और उसके बाद टुडे इन हिस्ट्री, और आखिर में होगा क्विक बस, जहां मिलेगा एंटरटेनमेंट की दुनिया का लेटेस्ट अपडेट।
0: तो अगले कुछ समय के लिए अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ को थोड़ा सा पॉज कीजिए, क्योंकि आज का सफर होगा कहानियों का, सितारों का, संगीत का, और उन मोमेंट्स का जो हमें कुछ

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म ये जवानी है दीवानी का बेहद खूबसूरत गीत इलाही। और अब बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट आज की बात की ओर।
1: आज की बात एक ऐसे बदलाव पर जिसने पिछले कुछ सालों में हमारे एंटरटेनमेंट को देखने का पूरा अंदाज ही बदल दिया है, और वो है सिद्धांत।
0: OTT, बिल्कुल राखी। एक समय था जब कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो हमारे लिए उसका मतलब होता था थिएटर जाके प्लान बनाना, दोस्तों के साथ जाना, टिकट बुक करना और फिर बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार करना।
1: लेकिन दोस्तों, आज सिचुएशन काफी बदल चुकी है। अब एंटरटेनमेंट के लिए हमें हमेशा थिएटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि घर बैठे स्मार्टफोन, लैपटॉप या टेलीविजन पर फिल्मों और सीरीज की पूरी दुनिया हमारे सामने ही होती है।
0: और OTT ने सिर्फ बॉलीवुड तक हमारी पहुंच नहीं बढ़ाई, आज हम घर बैठे साउथ इंडियन सिनेमा, के ड्रामा, स्पेनिश सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और दुनिया के अलग अलग हिस्सों का कंटेंट देख सकते हैं।
1: यानी दोस्तों, पहले जहां हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया कुछ फिल्मों और टेलीविजन चैनल्स तक सीमित थी, आज हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं।
0: लेकिन यही एक मज़ेदार प्रॉब्लम भी शुरू होती है, इतने ऑप्शंस हैं कि समझ ही नहीं आता आखिर देखे क्या।

0: बिल्कुल, कभी कभी तो फिल्म या सीरीज देखने से ज्यादा वक्त सिर्फ ये डिसाइड करने में चला जाता है दोस्तों कि शुरू क्या करें।
1: और फिर आधे घंटे ब्राउजिंग करने के बाद वही अपनी पुरानी फेवरेट फिल्म लगा लेते हैं।
0: क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कितनी बार भी क्यों ना देख ले दोस्तों, उनका चार्म कभी खत्म नहीं होता।
1: लेकिन OTT ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब ऑडियंस के पास चॉइस है। पहले हमें वही देखना पड़ता था जो टेलीविजन पर उस समय आ रहा है या जो थिएटर्स में अवेलेबल है, लेकिन OTT पर हम अपनी पसंद, अपने समय और अपने मूड के हिसाब से कंटेंट चुन सकते हैं।
0: और यही कन्वीनियंस शायद OTT की सबसे बड़ी ताकत है। आप रात में देखना चाहते हैं, वीकेंड पर देखना चाहते हैं, या ट्रेवल करते हुए, कंटेंट आपके साथ साथ चलता है।
1: लेकिन क्या कन्वीनियंस के बदलने से हमारे सिनेमा का मैजिक खो दिया हमने? क्योंकि थिएटर में फिल्म देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, बड़े पर्दे पर पहली बार कोई कैरेक्टर दिखाई देना, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पूरा हॉल शांत हो जाना, कॉमेडी सीन पर सबका साथ में हंसना और किसी बड़े डायलॉग पर तालियां बजाना, ये एक्सपीरियंस घर के अकेले स्क्रीन पर देखने से बिल्कुल अलग है।
0: सही कहा सिद्धांत तुमने। OTT हमें कंफर्ट देता है, लेकिन थिएटर हमें कलेक्टिव एक्सपीरियंस देता है।
1: और शायद इसी वजह से OTT और सिनेमा के एक दूसरे के कॉम्पिटिटर मानना पूरी तरह से सही नहीं होगा। OTT की अपनी दुनिया है, कन्वीनियंस, वेराइटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस, और सिनेमा की अपनी अलग दुनिया है, बिग स्क्रीन, साउंड, एटमॉस्फेयर और ऑडियंस के साथ शेयर्ड एक्सपीरियंस।
0: लेकिन OTT के आने से फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। अब सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों को ही ऑडियंस तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता।
1: बिल्कुल राखी, कई छोटी और अलग तरह की कहानियों को OTT ने ऑडियंस दी है। ऐसे सब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स भी सामने आए हैं जिन्हें शायद ट्रेडिशनल सिनेमा में उतनी बड़ी जगह नहीं मिलती।
0: यानी अब सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही नहीं बदल रही, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी बदल रही है।
1: और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। आज ऑडियंस के पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि क्रिएटर्स के सामने चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। ऐसी कहानी बनाना जो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई ना दे बल्कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी करे।
0: तो क्या दोस्तों आने वाले समय में OTT थिएटर्स की जगह ले लेगा, आपको ऐसा लगता है? तुम क्या कहते हो सिद्धांत?
1: मुझे नहीं लगता राखी, क्योंकि जिस तरह किताब और ऑडियो बुक दोनों ही की अपनी जगह है, उसी तरह OTT और सिनेमा का भी अपना ही अलग एक्सपीरियंस है।
0: तो शायद सवाल ये नहीं है कि OTT जीतेगा या सिनेमा, बल्कि सवाल ये है कि ऑडियंस को कौन सी कहानी कहाँ देखना ज्यादा पसंद है।
1: और अंत में बात फिर वही आती है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अच्छा एंटरटेनमेंट वही है जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी हमारे साथ थोड़ी देर बना रहे।
0: और इसी सोच के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक की ओर। लेकिन दोस्तों उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: तो आइए सुनते हैं फिल्म रॉकस्टार का जोश से भर देने वाला गीत सड्डा हक।

0: बहुत ही प्यारा गीत था ना सिद्धांत।
1: सही कहा राखी, उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी ये गीत बेहद पसंद आया होगा।
0: तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक की ओर, जिसमें बात होगी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप की, जिसे प्रस्तुत करेंगी यूथ राइटर निमिता साही।
2: मैं हूँ निमिता, आप सबकी जैसी ही एक युवा जो आज भी ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जैसे दो भारी भरकम शब्दों को समझने की कोशिश कर रही है। मैं आप सबको एक सिनेरियो के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। एक सेकंड के लिए ये इमेजिन करो कि आपके फोन वाइब्रेट करता है, मैसेज है, कहाँ हो, आप लिखते हो फ्रेंड्स के साथ और रिप्लाई आता है, कौन से फ्रेंड्स, फोटो भेजो। अब बताओ ये केयर लगता है या थोड़ा सा कंट्रोल? ऑनेस्टली मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि दोनों ही प्यार जैसे लगते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, कैसे पता चले कि कोई चीज प्यार है या पोजेशन। एंड आई प्रोमिस देयर विल बी नो लेक्चर्स, बस एक सोच जो होपफुली एपिसोड खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाएगी। पहले बात करते हैं ट्रस्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा यही वर्ड कंफ्यूज करता है। हम सोचते हैं ट्रस्ट का मतलब है पार्टनर के पासवर्ड पता हो, लाइव लोकेशन पता हो, हर फ्रेंड का बैकग्राउंड चेक हो। लेकिन फनी बात यह है कि जितने ज्यादा प्रूफ मांगोगे ट्रस्ट उतना कम होता जाएगा। अजीब है ना, रियल ट्रस्ट एक्चुअली कुछ और है। ये है मुझे पता है कि तुम सही हो, चाहे मैं देखूं या ना देखूं, बिना प्रूफ के, बिना चेक करे। और हाँ, इनसिक्योर फील होना इज वेरी नॉर्मल, सबको होता है। लेकिन डिफरेंस तब आता है जब हम अपनी इनसिक्योरिटी का बोझ दूसरे इंसान पर डाल देते हैं। तुम ये मत करो, उससे बात मत करो, मुझे प्रूफ दो। वो ट्रस्ट नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के रूल्स बना देना है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई इनसिक्योरिटी फील हो, शायद सवाल ये पूछने वाला होगा, ये फीलिंग मेरी है या मैं इसे अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहा हूँ। एक चीज जो लोग बहुत कम पूछते हैं खुद से वो ये है, मेरे पार्टनर को मुझसे प्यार तो है पर क्या वो मेरी रिस्पेक्ट भी करता है? अलग सवाल है ना, और ज्यादा जरूरी भी। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ पोलाइट बात करना नहीं है दोस्तों, ये है किसी की ओपिनियन सुनना जब वो डिफरेंट हो, किसी का नो एक्सेप्ट करना, किसी के करियर, दोस्त, टाइम, सबको स्पेस देना विदाउट मेकिंग इट अ कॉम्पिटिशन। एक लाइन जो हम सुनते रहते हैं, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो तो ये चीज ऑटोमेटिकली करेगा, ये सुनने में जितना रोमांटिक लग रहा है एक्चुअली में उतना ही ज्यादा घातक प्रेशर है सामने वाले पे, क्योंकि आप सामने वाले को चॉइस नहीं दे रहे हो, आप उसकी चॉइस छीन रहे हो। एंड एक बात, डिसएग्रीमेंट का मतलब रिलेशनशिप फेल होना नहीं है। दो लोग अलग सोच रख सकते हैं, अलग फील कर सकते हैं, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि फाइट में कौन जीता, सवाल ये होना चाहिए कि फाइट के बाद भी क्या हम एक दूसरे के डिग्निटी को बरकरार रख पाए। क्योंकि जब रिस्पेक्ट निकल जाती है एक रिलेशनशिप से तो प्यार भी पोजेशन लगने लगता है। इसी के साथ एक रियल चीज पे आते हैं, टू बी ऑनेस्ट ये मुझे भी फील होता है, और वो है जेलसी। सबको होती है, टोटली नॉर्मल है, जेंजीज ने तो इसके लिए नया वर्ड भी ढूंढ लिया है। पार्टनर किसी की रील पे कमेंट करता है, किसी कलीग की तारीफ करता है और अंदर से एक अलार्म बज जाता है, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, फील करना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम उस फीलिंग को इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना देते हैं। फर्क समझना बहुत जरूरी है, मुझे थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, ये आपकी फीलिंग है, पर तुम उससे बात नहीं करोगे क्योंकि मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, ये तो आप सामने वाले को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हो ना। पहले वाला आपके पार्टनर से

0: कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक कर सकता है और दूसरे वाला सामने वाले की फ्रीडम को एंड। और शायद ट्रस्ट का सबसे असली टेस्ट, सबसे रियल टेस्ट यही है जब आप उसे कंट्रोल करने का ऑप्शन रखते हुए भी ना करो, उसे बात करना, कम्युनिकेट करना चूज करो। अब आते हैं जरूरी बात पर। कभी हम इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं रिलेशनशिप में कि हम उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, पर कुछ चीजें प्यार के नाम पे जस्टिफाई कभी नहीं हो सकती। बार बार डिसरिस्पेक्ट करना, लोगों के सामने इंसल्ट करना, साइलेंट ट्रीटमेंट से पनिश करना, हर बात पे सामने वाले को गिल्ट ट्रिप करना, एंड बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्या होती हैं ये सब बोलना। एक सिंपल तरीका याद रखना जरूरी है, फाइट्स नॉर्मल है, आर्ग्यूमेंट्स नॉर्मल है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन भी नॉर्मल है, बट वॉट इज नॉट नॉर्मल इज डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज एंड डर। अगर कभी चूज करना पड़े रिश्ता बचाना है या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो माई फ्रेंड्स दिस शुड नेवर बी अ चॉइस, गो फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि हेल्दी प्यार आपसे आपको खो देने की डिमांड कभी भी नहीं करता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि निमिता आपने ये सब तो बता दिया कि क्या क्या आई ओपनर्स है एक रिलेशनशिप के, बट एक्चुअली में हेल्दी रिलेशनशिप होता कैसा है? शायद ये हर सेकेंड साथ रहने के बारे में नहीं है। मे बी दिस इज मोर अबाउट हैविंग योर ओन पर्सनल स्पेस, योर ओन ड्रीम्स, फ्रेंड्स, एक लाइफ जिसे आप चेरिश कर सके आउटसाइड ऑफ रिलेशनशिप। एवरी डे यू वेक अप एंड चूज ईच अदर। ये कह पाना है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मैं तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तुम्हारी बात सुननी है, सिर्फ अपनी बात सुनानी नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप का गोल दो लोग मिलकर एक इंसान बन जाना नहीं है। गोल ये है कि क्या दो इंसान एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं साथ मिलकर। तो चाहे आप किसी को डेट कर रहे हो, किसी रिश्ते में हो, या बस समझने की कोशिश कर रहे हो कि प्यार होता कैसे है, दिस वन लाइन माई फ्रेंड्स प्लीज रिमेम्बर दिस, ट्रस्ट रिश्ते की सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट उसे डिग्निटी देता है, और थोड़ा सा स्पेस उसे सांस लेने की जगह। और अगर एक लाइन में कहना हो तो शायद यही है, मैं तुम्हें अपना बनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रह के भी तुम रहो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना ये, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। रिलेशनशिप्स में खुद को खोना नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। एंड इसीलिए आई लीव यू विद माई लास्ट मैसेज कि प्यार करते रहो, बातें करते रहो, और सबसे ज़रूरी खुद को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी दूसरों को देते हो।
1: दोस्तों लंबी बातों के बाद अब चलते हैं चटपटे गानों की ओर।
2: तो आइए सुनते हैं शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सदाबहार गीत, जो आज भी राज और सिमरन की कहानी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। सुनते हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम।

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म DDLJ का सदाबहार गीत तुझे देखा तो ये जाना सनम। और अब समय है हमारे अगले सेगमेंट अराउंड द वर्ल्ड का, जहां आज एंटरटेनमेंट की दुनिया के उस बदलाव की बात करेंगे जिसने देशों की सीमाओं को लगभग खत्म कर दिया है।
1: बिल्कुल राखी, आज अगर कोई कहानी सियोल में बनती है तो ज़रूरी नहीं कि उसे देखने वाले सिर्फ साउथ कोरिया में हों। वही कहानी कुछ ही समय में इंडिया, अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी भी हिस्से की ऑडियंस तक पहुंच सकती है।
0: और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद कोरियन एंटरटेनमेंट है।
1: बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों में कोरियन सिनेमा और के ड्रामास ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पैरासाइट जैसी फिल्म ने तो इंटरनेशनल अवार्ड्स में इतिहास रचा। वहीं स्क्विड गेम जैसी सीरीज ने दिखाया कि लैंग्वेज अब ग्लोबल एंटरटेनमेंट के रास्ते में उतनी बड़ी बाधा नहीं।
0: यानी आज ऑडियंस सिर्फ अपने देश की फिल्मों और सीरीज तक सीमित नहीं है।
1: बिल्कुल राखी, और OTT प्लेटफॉर्म्स ने तो इस बदलाव को बहुत तेज कर दिया है। पहले अगर किसी दूसरे देश की फिल्म या सीरीज देखनी होती थी तो उसे ढूंढने में ही अपने आप मुश्किल होता था। आज सबटाइटल्स और डबिंग के साथ दुनिया भर का कंटेंट हमारे सामने मौजूद है।
0: और यही वजह है कि आज कोई इंडियन व्यूअर कोरियन ड्रामा देख रहा है, कोई कोरियन व्यूअर इंडियन फिल्म देख रहा है, और कोई यूरोपियन ऑडियंस स्पैनिश या टर्किश सीरीज को बिंज कर रहा है।
1: सही कहा, एंटरटेनमेंट अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये कल्चर्स को कनेक्ट करने का माध्यम भी बन गया है। आप किसी दूसरे देश की कहानी देखते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि लैंग्वेज और कल्चर अलग होने के बावजूद इमोशंस कितने सिमिलर हैं। लव, फ्रेंडशिप, फैमिली, एम्बिशन, हार्ट ब्रेक, ये फीलिंग्स तो पूरी दुनिया में एक जैसी ही है।
0: और दोस्तों, इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग कल्चर में एक और बड़ा बदलाव आया है और वो है बिंज वॉचिंग।
1: हाँ राखी, पहले हम एक एपिसोड का इंतज़ार करते थे और फिर अगले एपिसोड के लिए पूरा हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता था। अब कई बार पूरी सीरीज एक साथ सामने होती है और फिर हम खुद से कहते हैं बस एक एपिसोड और।
0: और वो एक एपिसोड का पूरी रात में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता दोस्तों।
1: बिल्कुल, और अगली सुबह अलार्म बजते ही लगता है शायद हमें सीरीज नहीं अपनी नींद के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करनी चाहिए थी।
0: लेकिन मजाक से अलग देखें तो स्ट्रीमिंग कल्चर ने हमारी व्यूइंग हैबिट्स सच में बदल दी है।
1: हाँ राखी, अब कंटेंट का कोई फिक्स टाइम नहीं है, अब हम अपनी सुविधा के हिसाब से देखते हैं। इसी वजह से क्रिएटर्स के लिए भी कंपटीशन बढ़ गया है।
0: अब सिर्फ अच्छी कहानी बनाना काफी नहीं है, उसे ऐसी प्रेजेंटेशन भी चाहिए जो अलग अलग देशों की ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। और दोस्तों, इंडियन एंटरटेनमेंट भी इस ग्लोबल रेस में पीछे नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं, आज इंडियन फिल्म्स और सीरीज को दुनिया भर में ऑडियंस मिल रही है। साउथ इंडियन सिनेमा की कई फिल्मों ने तो इंटरनेशनल ऑडियंस में भी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की है। और सिर्फ फिल्मों की बात नहीं, इंडियन म्यूजिक भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर नए लिसनर्स तक पहुंच रहा है।
0: यानी आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऑडियंस ग्लोबल है और कंपटीशन भी ग्लोबल है।
1: और शायद यही इस पूरे बदलाव की सबसे इंटरेस्टिंग बात है।
0: अब कोई कहानी सिर्फ इसलिए नहीं चलती कि वो किसी बड़े देश या बड़े इंडस्ट्री से आई है। अगर कहानी अच्छी है, कैरेक्टर्स कनेक्ट करते हैं और प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है तो ऑडियंस उसे कहीं से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं।
1: तो राखी, क्या आने वाले समय में हम एंटरटेनमेंट को बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोरियन सिनेमा जैसी अलग अलग कैटेगरीज में देखना बंद कर देंगे?
0: शायद पूरी तरह नहीं सिद्धांत, लेकिन बाउंड्रीज जरूर और छोटी होती जाएंगी, क्योंकि आज एक व्यूअर के लिए बॉलीवुड की फिल्म, कोरियन सीरीज और स्पैनिश थ्रिलर्स तीनों एक ही वॉच लिस्ट में हो सकते हैं।
1: और शायद यही स्ट्रीमिंग की सबसे बड़ी ताकत है। इसने हमें सिर्फ ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया बल्कि दुनिया को देखने का एक नया तरीका भी दिया।
0: बिल्कुल, पहले हम दुनिया को मैप पर देखते थे, आज हम उसे स्टोरीज के थ्रू देखते हैं।
1: और शायद यही वजह है कि एंटरटेनमेंट की लैंग्वेज अब सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या कोरियन नहीं रही।
0: उसकी सबसे बड़ी लैंग्वेज है इमोशन।
1: और इसी थॉट के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां एंटरटेनमेंट से थोड़ा पीछे हटकर इतिहास के पन्नों में झांकेंगे।
0: तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में उलझने से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: तो आइए सुनते हैं फिल्म जन्नत का बेहद रोमांटिक गीत जरा सी।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना एक खूबसूरत गीत, और अब समय है हमारे अगले सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री का।
1: हर तारीख अपने साथ कुछ कहानियाँ लेकर आती हैं। कुछ कहानियाँ इतिहास की किताबों में दर्ज होती है और कुछ सिनेमा और एंटरटेनमेंट की दुनिया में। तो आज 21 अगस्त के दिन से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र।
0: दोस्तों, शुरुआत करते हैं सिनेमा से। 21 अगस्त 1987 को इंडियन सिनेमा के एक बेहद लोकप्रिय अभिनेता मोहनलाल की फिल्म थुवन थुम्बिकल रिलीज हुई थी, जिसे आज भी मलयालम सिनेमा की यादगार फिल्मों में गिना जाता है।
1: राखी, इंडियन सिनेमा की तो बात कर ली, अब थोड़ा इंटरनेशनल सिनेमा की तरफ चलते हैं। 21 अगस्त सन 1981 को अमेरिकन एक्टर और फिल्म मेकर स्टीव मार्टिन की कॉमेडी फिल्म पेनीज फ्रॉम हेवन रिलीज हुई थी। यानी आज की तारीख एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है।

0: दोस्तों, 21 अगस्त सिर्फ सिनेमा से ही नहीं जुड़ा है, इतिहास में इस तारीख पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं।
1: मिसाल के तौर पर 21 अगस्त सन 1911 को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक मोनालिसा लूवर म्यूजियम में से चोरी हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। करीब 2 साल बाद पेंटिंग वापस मिली।
0: बिल्कुल सिद्धांत। और अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1969 को भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के पहले डायरेक्टर गौतम साराभाई से जुड़ी डिज़ाइन और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की विरासत को याद किया जाता है। भारत में डिज़ाइन एजुकेशन को मजबूत करने में साराभाई परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
1: और 21 अगस्त का एक और खास पहलू है। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि हिस्ट्री सिर्फ एक बड़े युद्धों और राजनीतिक घटनाओं का नाम नहीं है।
0: बिल्कुल, कभी कोई फिल्म, कोई कलाकार, कोई पेंटिंग या कोई कल्चरल मूवमेंट भी अपने समय की पहचान बन जाता है, और यही एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री का कनेक्शन है। आज का पॉपुलर कल्चर कल का इतिहास बन सकता है।
1: राखी, कभी कभी हम किसी पुराने गीत या फिल्म को सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए याद करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही चीज़ अपने दौर की कहानी सुनाने लगती है।
0: और शायद सिनेमा की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो अपने समय के फैशन, लैंग्वेज, म्यूजिक, सोसाइटी और लोगों की सोच को भी अपने अंदर दर्ज कर लेती है।
1: तो आज 21 अगस्त के सेगमेंट से अगर एक बात याद रखनी हो
0: तो वो ये है कि हर तारीख अपने पीछे सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि कहानियां छोड़ जाती हैं।
1: और अब इतिहास के पन्नों से निकलकर वापस लौटते हैं एंटरटेनमेंट की आज की दुनिया में,
0: क्योंकि अब बारी है हमारे सबसे तेज और एंटरटेनिंग सेगमेंट की।
1: जी हाँ, क्विक बस, जहाँ मिलेगी OTT मूवीज, सॉन्ग और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स।
0: तो दोस्तों तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: गीत से पहले आपने सुना टुडे इन हिस्ट्री, और अब वक्त है हमारे आखिरी और सबसे तेज सेगमेंट का, और वो है क्विक बज,
1: यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया की वो खबरें जिन्हें आपका जानना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना लंबी कहानी के। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते की आपकी वॉच लिस्ट में क्या क्या नया जुड़ सकता है।
0: सबसे पहले बात करते हैं 21 अगस्त की OTT रिलीजेस की। इस हफ्ते स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई इंटरेस्टिंग टाइटल्स आए हैं, और अगर आप फ्राइडे नाइट के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ऑप्शंस की बिल्कुल कमी नहीं है।
1: और इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा में है विजय थालापति की जननायगन, जो इस आज ही के दिन OTT पर स्ट्रीम होने वाली है। और ये रिलीज़ विजय के फैंस के लिए एक इमोशनल वॉच भी हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये इनके करियर की एक आखिरी फिल्म है।
0: बिल्कुल, और अगर आपका मूड कॉमेडी का है तो वेलकम टू द जंगल भी इस हफ्ते की बड़ी रिलीजेस में शामिल है। अक्षय कुमार और एक बड़े असेंबल कास्ट वाली फिल्म 21 अगस्त को हॉटस्टार पर आ गई है।
1: और इंटरनेशनल कंटेंट पसंद करने वालों के लिए भी इस हफ्ते काफ़ी कुछ है।
0: बिल्कुल, लैंटर्न्स विद सुपर हीरो ड्रामा
1: से लेकर आउटर बैंक सीजन 5 तक OTT पर जॉनर्स की पूरी वैरायटी देखने को मिल रही है।
0: आउटर बैंक्स का ये 5th सीजन है और इसका फाइनल सीजन भी है, इसलिए फैंस के लिए ये काफ़ी खास है।
1: और अगर आपको डॉक्यूमेंट्री या रियल लाइफ स्टोरीज पसंद हो तो आपके लिए भी कई ऑप्शंस हैं।
0: हाँ, नेटफ्लिक्स पर फ्री फॉल, रैकनिंग फॉर बोइंग, और प्राइम वीडियो पर नोवाक जोकोविक, द वुल्फ इन विंटर जैसे टाइटल्स भी इस वीक स्ट्रीमिंग लाइन का हिस्सा हैं।
1: लेकिन क्विक बस सिर्फ OTT तक सीमित नहीं है, सिनेमा हॉल्स में भी इस हफ्ते काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है।
0: बिल्कुल दोस्तों, 7 डॉग्स नाम की एक्शन थ्रिलर आज इंडिया में रिलीज हो रही है, जिसमें सलमान खान और संजय दत्त स्पेशल अपीयरेंसेस में नजर आएंगे।
1: और म्यूजिक लवर्स के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। आज ही सोनू निगम अपने नए वर्ल्ड टूर द रिवॉल्यूशन की शुरुआत अबू धाबी से कर रहे हैं।
0: और अगर आप अपनी फ्राइडे नाइट वॉच लिस्ट बना रहे हैं तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है।
1: अगर मूड कॉमेडी देखने का हो
0: तो देख लीजिए वेलकम टू द जंगल,
1: और चाहिए एक्शन या स्टार पावर
0: तो देखिए जन नायकन या 7 डॉग्स,
1: और अगर मन है इंटरनेशनल बिंज करने का
0: तो आप देख सकते हैं आउटर बैंक सीजन 5,
1: और अगर कुछ थोड़ा सा सीरियस और रियल लाइफ बेस देखना हो
0: तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं आपके लिए। यानी अब सवाल ये नहीं है कि फ्राइडे को क्या देखें,
1: सवाल ये है कि पहले क्या देखें।
0: दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो हमने आपको दे ही दिया, काफी सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, अब आप तय कीजिए कि आपको क्या देखना है।
1: तो ये था हमारा क्विक बस एंटरटेनमेंट की दुनिया के कुछ सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ।
0: और अब हमारे आज के फ्राइडे स्पेशल का सफर धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन युवाणी से विदा लेने से पहले एक और गीत सुन लीजिए जरा।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे फ्राइडे स्पेशल एंटरटेनमेंट का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है।
1: तो आज के इस कार्यक्रम से अगर कोई कहानी, कोई किरदार या कोई गीत आपके साथ थोड़ा सा भी रह गया हो तो हमारी मुलाकात कामयाब रही, क्योंकि अच्छी कहानी खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, वो अपने किसी किरदार, किसी डायलॉग या किसी गीत के रूप में हमारे साथ चलती रहती है।
0: और इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं हूँ राखी
1: और मैं हूँ सिद्धांत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम युववाणी।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाले युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के एक समझौता किया है। ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और अनुकूल डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। देखिए वीनस बहन, हमारे लोक संगीत में जहाँ पौराणिक कथाओं को अलबेरे ढंग से दर्शाया जाता है अपने लोक संगीत के माध्यम से, रागनियों के जरिए, और इन कथाओं को अलग अलग तरीके से हम भजनों में भी सुन सकते हैं। और अगर हम शिव विवाह की बात करें तो वो था ही इतना अनोखा कि उसमें जैसे आम तौर पे तो बाराती सज धज के जाता है, दूल्हा बड़ा सुंदर बन के जाता है, लेकिन शिव जी के विवाह में अलग ही नज़ारा था। और वो जो बहुत लगाकर गए थे, और बारात में भी भूत प्रेत और इस तरीके की चीज़ें थी कि जो पार्वती जी की माँ थी मैना, वो उनका ये रूप देखकर बेहोश हो गई। और इसी से संबंधित एक भजन हम अपने साथियों को सुनवाते हैं जिसमें शिव विवाह का वर्णन किया गया है, और कलाकार हैं सुभाष नाथ और साथी।

अभी आप सुन रहे थे सुभाष नाथ और साथियों से ये शिव भजन, और बड़ा ही अच्छा वर्णन किया उन्होंने अपने इस संगीत के जरिए। और जो वाद्य यंत्र था उनका भी इतना अच्छा प्रयोग था, लग रहा था कि कैसे मदमस्त बारात जो है वो शिव जी की जा रही है, और बिल्कुल अनु

बात हम जैसे श्रावण मास चल रहा है प्रियंका बहन, और हम इस मंथ में ये जो महीना है पूरा श्रावण मास और झूलों की बातें, मेहंदी की मेहंदी रचानी हाथों में, कंगन पहनने, मतलब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं श्रावण मास के साथ में। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और बहुत ही खूबसूरत लोकगीत हम सुनवाने वाले हैं। कलाकार है राज रानी वर्मा। तो सुनते हैं झूलों के ऊपर एक और लोकगीत।

वही श्रोताओ, बहुत ही मज़ा आ गया। राज रानी वर्मा से सुना हमने झूला, चलो और खूब झूले का आनंद लिया होगा आपने भी वहाँ से बैठकर। और कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और लोक संगीत बबीता चौधरी की आवाज़ में, ये मेरे हाथों के कंगन।

0: अभी आप सुन रहे थे बबीता चौधरी की आवाज़ में लोकगीत, और इसके साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक है शिव नंदन लाल।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं,
2: मैं हूं इनकी सहयोगी कविता शर्मा।
1: और कविता जी का भी स्वागत है और सभी श्रोताओं का भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हम हॉकी वर्ल्ड कप की तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ बैडमिंटन की भी बात करेंगे। क्या उलटफेर हुआ है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, साथ ही साथ आज लुसाने डायमंड लीग शुरू होने वाला है। पहले दिन कौन कौन से खेल खेले जाएंगे और जैवलिन थ्रो पर खासा नज़र रहेगी हम सभी की। साथ ही साथ अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की भी बात करेंगे। फुटबॉल में डूरन कप और सुब्रत कप में क्या है खास, और साथ ही साथ DPL भी रहेगा आज का मुख्य केंद्र।
2: जी हाँ बिल्कुल, तो जिस तरीके से दीपिका ने बताया, अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में, जहां पे खेली जा रही है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप।

0: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जहां आज का दिन राहत लेकर आया, वहीं गुरुवार का दिन भारतीय बैडमिंटन के लिए मिलाजुला रहा। भारतीय महिला बैडमिंटन डबल पेयर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में ऐतिहासिक उलटफेर करते हुए भारत के लिए कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। आज खेले गए मुकाबले में गैर वरीयर भारतीय जोड़ी ने चीन की मजबूत जोड़ी जिया यीफान और झांग शू जियान को 1 घंटे 9 मिनट तक चले मुकाबले में 16-21, 21-15, 21-13 से मात दी।
1: A fantastic performance from the two Indians and hugely appreciated by a gloriously partisan crowd.
2: Teresa Jolly in tears. Yeah. She hugs Pulela Gopichand and father and daughter embrace.
1: Oh, they've guaranteed themselves a medal. They've knocked out one of the top pairs in the event.
0: महिला डबल्स में 15 साल बाद भारत के खाते में विश्व चैंपियनशिप मेडल आया है। इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने लंदन में हुई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। भारतीय जोड़ी ने घरेलू दर्शकों के अपार समर्थन के बीच पहला गेम हारने के बाद बेहतर स्मैश और साफ सुथरे नेट प्ले के दम पर मैच का रुख पलट दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा इस जोड़ी ने।
3: पर आई थिंक फर्स्ट गेम के बाद थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया हमने, आई थिंक थोड़े बहुत चेंज किया, और स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था, पर आई थिंक थोड़ा काम रह के हमने निकाल लिया कुछ भी। आई थिंक वी वर जस्ट रोटेटिंग, वी जस्ट वॉन्टेड आवर legs to move and you know just to be calm on court, because that's the most important thing, because they're number 5 or 4 in the world, so they're not going to give easy points, so we just wanted to be patient. It's the most important thing for us.
0: चीन की जिया यीफान महिला डबल्स की दिग्गज खिलाड़ियों में एक हैं। उन्होंने 4 विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके साथ ही उनके नाम ओलंपिक में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल है। हालांकि उन्होंने ये मेडल चेन किंग चेन के साथ जीते थे। पिछले साल के अंत में चेन ने संन्यास ले लिया था। इसके बाद से जिया की नई जोड़ीदार झांग यू शियान बनी। अब ये भारतीय जोड़ी अपने अगले मुकाबले में मेडल का रंग जरूर बदलना चाहेगी। चलिए अब बात करते हैं कल के दिन यानी गुरुवार को हुए मैचेस की, जहां सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के जुनैदी आरिफ और राइकिंग याप से था। पहले गेम में भारतीय जोड़ी को 21-23 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुकाबला भारतीय जोड़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। सात्विक और

0: चिराग ने दबाव में शानदार खेल दिखाया और दूसरे गेम में 21-19 से जीत हासिल करके मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में भी दोनों खिलाड़ियों ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और 21-17 से गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह भारतीय जोड़ी ने 21-23, 21-19, 21-17 के स्कोर से जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगला मुकाबला और भी कड़ा संघर्ष वाला है।
1: जब हम कोर्ट पे जाने वाले थे, पक्का सोचा था कि ऐसा होने वाला है, टफ होगा, इट वोंट बी इजी, थोड़ा कोर्ट कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगा। वी वर रेडी फॉर इट, वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, वी हैव टू प्ले द राइट काइंड ऑफ गेम, बिकॉज इफ यू कीप इट सिंपल इनसाइड द कोर्ट पॉइंट्स आएंगे। वी न्यू लाइक वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, बट देयर हैव बीन सिचुएशंस इन द पास्ट वेयर वी नॉट प्लेड एट आवर बेस्ट, बट वी गॉट बैक एंड आई थिंक वी जस्ट try to tell each other that eventually things will turn into your favor, just keep it simple, keep it inside the court and don't really complicate things.
0: जहां एक तरफ थोड़ी खुशी की खबर आई, वहीं हमारी पीवी सिंधु की चुनौती समाप्त हो गई। महिला एकल में भारत की अनुभवी और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग जी यी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सिंधु ने मुकाबले की शुरुआत में संघर्ष किया और पहला गेम 11-21 से गवा दिया। हालांकि दूसरे गेम में उन्होंने शानदार वापसी की और 21-15 से गेम अपने नाम करके मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन वांग जी यी ने अंत में 21-17 से गेम जीत लिया। इस तरह सिंधु को हार का सामना करना पड़ा और महिला एकल में उनका अभियान समाप्त हो गया।
2: थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से, बहुत अच्छा चल रहा था गेम वन, गेम टू और गेम थ्री भी बहुत इक्वल चल रहा था। इन द ओवरऑल गेम लाइक स्पेशली इन द एंड, बिकॉज आई कांट सी एनी लूप होल्स इन बिटवीन द पॉइंट्स, द लास्ट थ्री पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट, आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंट, दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम टुडेज गेम, एंड व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक्स।
0: जहां महिला एकल में चुनौती समाप्त हुई, वहीं पुरुष एकल में भी आयुष शेट्टी का सफर थम गया। पुरुष एकल में भारतीय युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का अभियान प्री क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। आयुष का मुकाबला इंडोनेशिया के एलवी फरहान से था। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले में प्रयास किया, लेकिन इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने दोनों गेम में बढ़त बनाए रखी। अलवी फरहान ने मुकाबला 21-19, 21-11 से अपने नाम किया। इस हार के साथ आयुष शेट्टी पुरुष एकल प्रतियोगिता से बाहर हो गए, लेकिन आयुष के लिए विश्व चैंपियनशिप का सफर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर गया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक बड़ा उलटफेर करके विश्व नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी युची को हराकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था।
3: He was playing really sharp today. I had my chances in the first game, couldn't convert it. And I think second game he was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not giving much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp getting the lines. That made a lot of difference, I would say. He played much better badminton and he was a better man.
0: मिश्रित युगल में भी ध्रुव तनिषा बाहर हो चुके हैं। मिश्रित युगल में भारत की ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को चीन के गुओ शिनवो और चिंग पोंग हुई की जोड़ी के खिलाफ हार मिली। भारतीय जोड़ी पहला गेम 16-21 से हार गई। दूसरे गेम में चीनी जोड़ी ने अपना दबदबा और मजबूत किया और गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी हार के साथ बाहर हो गए।
4: हमारे हाथ में बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था, उन्होंने पूरा मैच काफी अच्छे से कंट्रोल किया था। यही कहना चाहूंगी, हमारे साइड से बहुत गलतियां हुई है, उनको काफी इजी पॉइंट्स मिल गए थे, हमने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया, उसकी वजह से मैच ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत इजीली मैच जीते हैं।
0: कुल मिलाकर भारत का अब तक का जो परिणाम है वो मिला जुला है। अब देखना होगा कि क्या भारत की झोली में एक और मेडल ऐड हो पाता है या फिर हमें सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ता है।

0: तो दिल्ली में लगातार शोर तो है ही, क्योंकि स्टेडियम में इस वक्त थोड़ी ही देर में जो मुकाबले हैं वो शुरू होने वाले हैं। हालांकि हमारे कुछ मुकाबलों में निराशा हमें हाथ लगी, लेकिन फिलहाल युगल जोड़ियां जो हैं वो अपने अपने मुकाबलों में डटी हुई है मेडल की राह के लिए। अब से कुछ ही देर बाद होगा मुकाबला सात्विक और चिराग शेट्टी का। उसके बाद अगर आपको ये बताएं कि बैडमिंटन में भी इस वक्त जो लटफेर है वो देखने को मिल रहे हैं, थाईलैंड के कुनलावुत नई दिल्ली में जो अभी चैंपियनशिप खेली जा रही है, इसमें पुरुष वर्ग में एकल वर्ग से बाहर हो गए हैं और इनको बाहर किया है फ्रांस के एलेक्स ने। तो ये है लेटेस्ट अपडेट अभी तक BWF की, लगातार आपको अपडेट हम इस पर देते रहेंगे। बने रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम खेल खिलाड़ी के साथ।
1: और अब बात कर लेते हैं लोसाने डायमंड लीग

0: कि स्विट्जरलैंड के लोसाने में आज एथलेटिक्स के सितारों का जमावड़ा है। वेंडा डायमंड लीग 2026 के 12वें संस्करण एथलेटिसिमा लोसाने का मुख्य मुकाबला आज 21 अगस्त को स्टेड ओलंपिक डी ला पोंतेज में हो रहा है। डायमंड लीग का ये चरण खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रसेल्स में 4 और 5 सितंबर को होने वाले डायमंड लीग फाइनल से पहले क्वालिफिकेशन के लिए ये आखिरी दौर के महत्वपूर्ण मौकों में से एक है और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। लुसाने डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा रमेश पथिराज की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। 28 वर्षीय भारतीय एथलीट ने पिछले साल से कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं जीती है, जबकि श्रीलंकाई भाला फेंक की धाविका शानदार फॉर्म में है। पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने के बाद भारतीय भाला फेंक के धुरंधर नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के स्टाडे ओलंपिक डी ला पोंतेज में आयोजित होने वाले लोसाने डायमंड लीग 2026 में शीर्ष स्थान हासिल करने की कोशिश करेंगे। आगामी एथलेटिक्स मीट के लिए नीरज चोपड़ा को लोसाने में चौथी उपस्थिति होगी और 28 वर्षीय एथलीट 2022 में 89.08 मीटर के थ्रो के साथ और 2023 में 87.66 मीटर के प्रयास के साथ डायमंड लीग स्पर्धा जीती थी, जबकि 2024 में भाला फेंकते हुए 89.49 मीटर के साथ उपविजेता रहे थे। लुसाने डायमंड लीग नीरज चोपड़ा को 2026 एथलेटिक सत्र की तीसरी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता भी होगी। चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद उन्होंने जून में दोहा डायमंड लीग में वापसी की थी और उन्होंने वहां 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया था और फिर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से रजत पदक अपने नाम किया था। और डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा भारत की ओर से प्रदर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनका मुकाबला रहेगा रुमेश पथिरागे जो श्रीलंका से हैं, एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा से हैं और आर्टुर फेल्फनर यूक्रेन के, कार्टिस थॉम्सन अमेरिका, जैकब वॉल्डलिच चेकिया के और मार्क मिंचेलो यूएसए के और कॉर्शन वॉलर ट्रिनिडाड और टोबैको के हैं, साथ ही साथ साइमन वियरलैंड स्विट्जरलैंड के हैं। और अगर हम अन्य मुकाबलों की और नज़र डालते हैं तो उनमें है महिला जेवलिन थ्रो के साथ साथ पुरुष ट्रिपल जंप, महिला 400 मीटर हर्डल्स, महिला पोल वॉल्ट, महिला 200 मीटर और उसके तुरंत बाद शुरू हो गए पुरुष जेवलिन थ्रो के मुकाबले, उसके बाद महिला 300 मीटर स्टीपल चेज, पुरुष 800 मीटर, पुरुष लॉन्ग जंप, महिला 100 मीटर हर्डल्स और ये सब मुकाबले जो है आज शाम खेले जाने हैं। तो देखने देर रात तक मुकाबले चलने वाले हैं, ये देखने वाली बात यह है कि किस तरह के प्रदर्शन रहता है और क्या क्या खास मुकाबले ऐसे होते हैं जो हमें रोमांचित करते हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं हॉकी की तरफ।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप में शानदार जुझारूपन दिखाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ गोल रही ड्रॉ खेला और अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में गोल नहीं हुआ लेकिन मुकाबला पूरी तरह सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के गोल से कम नहीं था। एम्सलवीन में खेले गए पूल डी के इस आखिरी मैच में भारत ने इंग्लैंड के लगातार दबाव के बावजूद आखिरी सीटी तक अपना डिफेंस मजबूत रखा। 0-0 के इस नतीजे के साथ भारत 5 अंकों के साथ पूल डी में दूसरे स्थान पर रहा और उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं। मैच से पहले भारत के लिए समीकरण बिल्कुल साफ था। 4 अंकों के साथ मौजूद भारतीय टीम को शीर्ष दो में बने रहने के लिए कम से कम ड्रॉ की जरूरत थी। वहीं 3 अंकों पर मौजूद इंग्लैंड को अगले दौर में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी थी। इससे पहले पूल के मुकाबले में चीन ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराकर 7 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था। भारत और चीन अब अगले दौर में पहुंच चुके हैं जबकि इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका क्लासिफिकेशन मैचेस खेलेंगे। मैच के शुरुआत में भारत ने आक्रामक रुख अपनाया। 4th मिनट में सुनेलिता टोप्पो ने शानदार दौड़ लगाते हुए भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर दिलवाया। नवनीत कौर के सीधे प्रयास को भारतीय खिलाड़ी से टकराने के बाद रोक दिया। इसके 3 मिनट बाद भारत को एक और मौका मिला लेकिन नवनीत का प्रयास गोल से बाहर चला गया। 8वें मिनट में भारत को तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार दीपिका ने फ्लिक लिया लेकिन गेंद निशाने से चूक गई। इंग्लैंड ने 10वें मिनट में

अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, जिसे भारतीय डिफेंस ने आसानी से बचा लिया। शुरुआती क्वार्टर के अंत तक दोनों टीमें गोल नहीं कर पाई और स्कोर शून्य रहा। दूसरे क्वार्टर में मुकाबला और तेज हो गया। सुशीला चानू ने समय पर शानदार टैकल करके इंग्लैंड के हमले को रोका। 21वें मिनट में भारत को टर्नओवर का फायदा उठाने का मौका मिला, लेकिन इशिका को इंग्लैंड की गोलकीपर ने रोक दिया। इसके बाद सलीमा टेटे ने भी गोल करने की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट इंग्लैंड की गोलकीपर ने बचा लिया। इंग्लैंड ने तुरंत जवाबी हमला किया, मगर भारतीय डिफेंस ने उसे भी नाकाम कर दिया। 26वें मिनट में लाल रिम सियामी को स्टिक से रोके जाने के बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका की जैक फ्लिक को इंग्लैंड के गोलकीपर ने रोक दिया। इसके बाद इंग्लैंड को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले। यहां बिचू देवी ने शानदार बचाव करते हुए डार्सी बॉन को गोल करने से रोका। इस खिलाड़ी के एक और प्रयास को भी भारतीय स्टिक ने ब्लॉक कर दिया। 30वें मिनट में इंग्लैंड की टेसा हावर्ड को येलो कार्ड दिखाया गया और हाफ टाइम तक दोनों टीमें शून्य की बराबरी पर थीं। 30वें क्वार्टर की शुरुआत भारत ने खिलाड़ी की बढ़त के साथ की। हावर्ड के निलंबन का फायदा उठाते हुए भारत ने तुरंत पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। नवनीत के प्रयास को ब्लॉक कर दिया गया और इसके बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि सीधे हिट पर गेंद निर्धारित ऊंचाई से ऊपर चली गई, जिसकी वजह से ये मौका भी हाथ से निकल गया। इसके बाद मुकाबले की तस्वीर बदलने लगी। इंग्लैंड ने दबाव बढ़ाना शुरू किया और भारतीय सर्कल में लगातार प्रवेश किए। 38वें मिनट में सविता ने इंग्लैंड के पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार बचाव किया और कुछ ही देर बाद एक और प्रयास को रोककर भारत को राहत मिल गई। 42वें मिनट में इशिका चौधरी को ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भारत को कुछ समय के लिए 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इंग्लैंड ने संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाने की कोशिश तो की और लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी हर बार गेंद के सामने अपनी स्टिक लगाकर खतरे को टालते रहे। तीसरे क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले सलीमा टेटे ने एक और पेनल्टी कॉर्नर पर महत्वपूर्ण ब्लॉक किया। तीसरे क्वार्टर के बाद भी स्कोर जीरो ही था, लेकिन इंग्लैंड का दबाव लगातार बढ़ चुका था। इंग्लैंड को पता था कि उसके लिए ड्रॉ पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मुकाबला खत्म होने से 5 मिनट से भी कम समय पहले इंग्लैंड ने अपने गोलकीपर को मैदान से बाहर कर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी के तौर पर उतार दिया। अब इंग्लैंड पूरी तरह आक्रमण पर था और भारत को सिर्फ अपनी बढ़त नहीं बल्कि अपनी बराबरी बचानी थी। मैच के आखिरी मिनट में रोमांच चरम पर पहुंच गया। इंग्लैंड ने एक और खतरनाक हमला किया, लेकिन बिचू देवी ने बाई और तेजी से डाइव लगाकर शानदार बचाव किया और भारत का क्लीन शीट बरकरार रखा। इसके कुछ ही सेकंड बाद फाइनल हुटर बजा और मुकाबला 0-0 से समाप्त हो गया। भारत ने पूरे मुकाबले में 6 पेनल्टी कॉर्नर और 13 सर्कल एंट्री हासिल की। वहीं इंग्लैंड ने 28 बार भारतीय सर्कल में प्रवेश किया और 12 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। ये आंकड़े बताते हैं कि दूसरे हाफ में भारत पर कितना दबाव था, लेकिन भारतीय टीम ने पूरे संयम और अनुशासन के साथ सामना किया। इस मुकाबले में भारत के लिए गोल भले ही नहीं आया, लेकिन मजबूत डिफेंस, शानदार गोलकीपिंग और दबाव में संयम ने टीम को बेहद अहम अंक दिलवाया। इंग्लैंड के लगातार हमलों और आखिरी मिनट तक चले दबाव के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। इस तरह भारत 5 अंकों के साथ पूल डी में दूसरे स्थान पर रहा और FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अगले दौर में भारतीय महिला टीम में प्रवेश किया। आज अगले दौर में भारत और चीन अपने साथ एक एक अंक लेकर जाएंगे और उनका सामना नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय महिला टीम आज रात को मेजबान नीदरलैंड से भिड़ेगी, जो कि विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर काबिज है। हॉकी में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा, जबकि आज का दूसरा मैच चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब से कुछ ही देर बाद होगा। अब बात करते हैं कल खेले गए सभी मुकाबलों की। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में खेले गए मुकाबलों में पुरुष और महिला वर्ग में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कुछ टीमों ने बड़ी जीत हासिल की तो कुछ मुकाबले बराबरी पर समाप्त हुए। पुरुष वर्ग के पूल ए में अर्जेंटीना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-1 से बड़ी जीत हासिल की। अर्जेंटीना ने शुरुआत से ही आक्रामक हॉकी खेली और न्यूजीलैंड को पूरे मुकाबले में दबाव में रखा। इसी पूल के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स ने जापान को 4-1 से हराया। नीदरलैंड्स ने गेंद पर बेहतर नियंत्रण रखते हुए मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और 3 गोल के अंतर से जीत हासिल कर ली। पूल बी में बेल्जियम और मलेशिया के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने आक्रामक हॉकी खेली, लेकिन अंत में बेल्जियम ने बाजी मार ली। वहीं पूल सी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी टीम बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। इसी पूल में एक अन्य मुकाबले

0: आयरलैंड को 3-1 से हराया। स्पेन ने मुकाबले में बेहतर तालमेल दिखाते हुए महत्वपूर्ण अंक अपने नाम किए। अब बात करते हैं महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में पूल सी के मुकाबले में न्यूजीलैंड और स्पेन आमने सामने रहे। स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 3-0 से शिकस्त दी। स्पेन की टीम ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों मोर्चों पर बेहतर खेल दिखाया, बिना गोल खाए मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूल डी में चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक तरफा मुकाबला देखने को मिला। चीन ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं बेल्जियम ने आयरलैंड को 2-1 से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। अब हॉकी विश्व कप में भारत के लिए आज और कल का दिन कड़ी चुनौती वाला है, जहां पुरुष और महिला दोनों ही टीमें विश्व नंबर एक टीम नीदरलैंड्स के साथ सेमीफाइनल में बने रहने के लिए कड़ी मशक्कत करेंगी। तो बात करते हैं अभी हॉकी वर्ल्ड कप की ही, जिसमें अभी जो मुकाबले खेले जा रहे हैं उसमें कुछ मुकाबलों के नतीजे आ चुके हैं। महिला वर्ग में यदि बात करें तो मुकाबला जापान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जो 1-1 से ड्रॉ रहा। इसके साथ साथ अभी कुछ ही देर पहले मुकाबला हुआ है इंग्लैंड और चिली का, जो कि इंग्लैंड ने जीत लिया 3-1 से। यदि बात करें मेंस की, तो फ्रांस और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 3-1 से जीत लिया है। और आने वाले मैचेस में अब से कुछ ही देर बाद आयरलैंड और मलेशिया आमने सामने होंगे पूल एच के मुकाबले में, जो कि 5:45 पर होगा। पर दीपिका, इन मुकाबलों के साथ साथ दो अहम मुकाबले जो हैं वो होने हैं आज महिलाओं के पूल ई में, क्योंकि पूल ई में होने वाले मुकाबले ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम जाएगी सेमीफाइनल की तरफ। तो पूल ई में जो मुकाबले होंगे स्टेज टू के, वो होंगे नीदरलैंड, जिसमें आज मुकाबले होंगे चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और नीदरलैंड का। तो ये है हॉकी पर अपडेट, लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे।
1: और अब कविता, थोड़ी सी कुश्ती की बात कर लेते हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रासिलोवा में चल रहे अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। महिला कुश्ती में काजल ने 76 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीतकर लगातार 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड अपने नाम किया। वहीं सविता ने 62 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। ब्रासिलोवा में चैंपियनशिप के छठे दिन फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 79 किलोग्राम और 92 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले आकर्षण का केंद्र रहे। 79 किलोग्राम में रूस के इस्माइल खानेव पर भी नजरें रहीं, और जिन्होंने पिछले साल 74 किलोग्राम वर्ग में विश्व खिताब जीता था। इससे पहले महिला वर्ग में भारत की काजल ने 76 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में उनका सामना चीन की जिंगरू सन से हुआ, जहां काजल ने मुकाबले पर शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और 7-0 से शानदार जीत दर्ज की। काजल ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी अंक नहीं गंवाया। उन्होंने जापान की म्यू ताकायामा को पिन किया और सेमीफाइनल में तुर्की की एल्मीरा यासीन को 14-0 से हराया और फाइनल में चीन की सन को 7-0 से मात दी। काजल के लिए यह साल बेहद शानदार रहा। अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप उलान वाटर रैंकिंग सीरीज, अंडर-20 एशियाई चैंपियनशिप बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज और अब अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप, इन सभी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 62 किलोग्राम वर्ग में भारत की सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल में उनका सामना जापान की दो बार की मौजूदा विश्व चैंपियन सकुरा ओनिशी से हुआ। ओनिशी ने 12-2 से जीत दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार अंडर-20 में स्वर्ण पदक हासिल किया। सविता ने पूरे मुकाबले में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन ओनिशी ने के अनुभव और आक्रामक कुश्ती के सामने उन्हें रजत के साथ संतोष करना पड़ा। उधर 55 किलोग्राम वर्ग में अमेरिका की एवरेस्ट लेडेकर ने भी अपना खिताब बरकरार रखा। फाइनल में उन्होंने जापान की नाना कोजुका को फॉल के जरिए हराया और 65 किलोग्राम में रूस की मार्गरेटा ने उज्बेकिस्तान की मुखियो को 12-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और खास बात यह रही कि पिछले संस्करण में रजत जीतने वाली सालनाजेरियन इस बार चैंपियन बनी। अब नजरें पुरुष फ्री स्टाइल मुकाबलों पर है और दुनिया के युवा पहलवान मैट पर उतरेंगे। 79 किलोग्राम में रूस के इस्माइल खानियेव प्रमुख दावेदारों में शामिल है और पिछले साल 74 किलोग्राम में विश्व चैंपियन रहे खानियेव इस बार नए भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं।
0: और इसी के साथ अब हम बात करेंगे फुटबॉल की, क्योंकि फुटबॉल में दो जो इवेंट है, बड़े इवेंट फुटबॉल के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, वो खेले जा रहे हैं। एक है सुब्रतो कप और दूसरा है ड्यूरेंट कप। तो फिलहाल ड्यूरेंट कप पे बात करते हैं। कल खेले गए थे सेमीफाइनल नंबर 2, और जिसमें मोहन बागान और

0: मोहन बगान के साथ जो टीम थी वो थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जिसके बाद जो मुकाबला हुआ बेहद रोमांचक हुआ। मोहन बगान के गोलकीपर विशाल कैथ ने पेनल्टी शूटआउट में दो शानदार बचाव किए, जिसकी बदौलत टीम ने शिलोंग में डूरन कप 2026 के सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। गीले मैदान पर खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें गोल करने के लिए जरूरी धार नहीं दिखा पाई और निर्धारित 90 मिनट के मैच में 0-0 पर बराबर पर छूटी। उसके बाद दूसरे मैच में विशाल कैथ मोहन बागान के लिए पेनल्टी शूटआउट के हीरो साबित हुए। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की आखिरी दो पेनल्टी लेने वाले रॉबिन यादव और पार्थिव गोगोई को शॉर्ट रोक कर अपनी टीम को जीत दिला दी। इस हार के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का 2 साल से चला आ रहा डूरन कप का दबदबा खत्म हो गया। वहीं मोहन बागान ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है और अब रविवार को जो उनका मुकाबला है कोलकाता के जो जानी मानी प्रतिष्ठित टीम है ईस्ट बंगाल उनके साथ होगा। तो इसके साथ साथ अब हम चलते हैं दीपिका के पास, जो हमें बताएंगी सुब्रतो कप के बारे में।
1: जी हाँ, सुब्रतो कप के 65वां जो है संस्करण चल रहा है और डे 4 है, यानी कि चौथे दिन के आज मुकाबले होने हैं। और जूनियर गर्ल्स की अगर बात करें, उन पर नज़र डालें, तो अब से कुछ ही देर में जूनियर गर्ल्स के मुकाबले शुरू होंगे और पहला मुकाबला तेलंगाना और सिक्किम के बीच में होगा, दूसरा मुकाबला वेस्ट बंगाल और NCS के बीच होगा, वहीं तीसरा मुकाबला IPSC और दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। और इसके अलावा ये सभी मुकाबले खेले जा चुके हैं आज सुबह। और
0: जी, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और अपडेट जो है वो देना चाहूंगी सुब्रतो कप में। आज के मुकाबलों के बारे में दीपिका ने बताया, लेकिन जो मुकाबले 23 अगस्त को होने हैं उसमें भी बहुत बड़े जो मैचेस है वो होने वाले हैं। और ये जो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं डूरन कप की, क्योंकि 23 अगस्त को इसका एक बड़ा मुकाबला होगा। सुब्रतो कप पे बालक बालिकाओं के जो मुकाबले हैं वो लगातार खेले जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम अपडेट जो है वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।

और अब बात कर लेते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग की, जिसमें शानदार मुकाबले चल रहे हैं और इन मुकाबलों से हो सकता है एक ऐसा खिलाड़ी उभर कर आए जो आगे जाकर भारत के लिए भी खेले। और सबसे पहले पहले क्यों ना बात कर ले विमेन्स में हो रहे मुकाबलों में, महिलाओं के मुकाबलों की अगर बात करें तो आज एक मुकाबला खेला गया महिलाओं का, और वो दो टीम्स थी, ईस्ट दिल्ली राइडर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का उन्होंने अपना निर्णय लिया और उन्होंने रन बनाए 101, 20 ओवर में 101 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। और जवाब में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने ये मुकाबला जीत लिया और उन्होंने रन बनाए 105 और वो भी मात्र 14.5 ओवरों में और 1 विकेट के नुकसान पर। तो जीत मिली नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को। और अगले फिक्सचर्स की अगर बात करें, यानी कि कल होने वाले मुकाबलों पे अगर हम नज़र डालते हैं, तो साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच में कल मुकाबला खेला जाना है दोपहर में। और अगर पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नज़र डालें तो चार टीम है विमेन्स DPL में, और पहली टीम है नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, जिन्होंने एक मैच खेला है और वो जीत भी लिया है। उसके अलावा साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स एक मैच खेला है और वो जीत भी लिया है, यानी कि दोनों के दो दो पॉइंट्स हैं। और सेंट्रल दिल्ली क्वींस और ईस्ट दिल्ली राइडर्स 0 पॉइंट्स के साथ अभी मुकाबले में हैं। और अब मेंस के मुकाबलों पर नज़र डालते हैं, तो आज कोई मुकाबला मेंस का एक अभी मुकाबला होना है आउटर दिल्ली वॉरियर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच, ये मुकाबला खेला जाना है। 7 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। और स्टैंडिंग्स यानी कि इनके पॉइंट्स टेबल पर अगर नज़र डालें तो सेंट्रल दिल्ली किंग्स जो है वो क्वालिफाई कर गई है और इनके 8 जीत हासिल की है, एक इन्होंने हार मिली है इन्हें, और इनके पॉइंट्स हैं 16। वहीं पुरानी दिल्ली 5 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं और इनके पॉइंट्स हैं 11। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स 5 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, इनके पॉइंट्स भी 11 हैं। और आउटर दिल्ली वॉरियर्स की बात करें तो टोटल 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और इनके पॉइंट्स भी हैं 11। और टोटल कुल टीम्स हैं 8। और अगर पाँचों नंबर की टीम पर अगर नज़र डालें तो वेस्ट दिल्ली लॉयंस

0: तो अब क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि इस वक्त BWF में चिराग और सात्विक की जो जोड़ी है वो फिलहाल अभी एक गेम से पीछे हो गई है, और इसी के साथ कार्यक्रम का समाप्त समय भी हो गया है समाप्त। अपनी सहयोगी दीपिका जायसवाल के साथ मैं कविता शर्मा अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ लेती हूँ आपसे विदा।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
4: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में

पित्रे कुशलागमाय केदारनाथाय नमः शिवाय कन्दर्पविश्वाय कृपापराय कालीश्वराय क्रतुवर्धनाय कुबेरपूज्याय ककुत्स्थिताय केदारनाथाय नमः शिवाय। हिमालये प्रसिद्धोद्रो मन्दाकिन्यास्तु स्रोतसी

0: अधितम अस्ति इति।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य दूरसंचार सूचना संचार तंत्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अकुरुताम्। सामाजिक प्रसार माध्यमे दूरसंचार विभागः अवदत् यत् एषा सन्धिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणञ्च करिष्यतीति। उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि। पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मन्त्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया इत्यनेन ब्राजील देशस्य संप्रेषण मन्त्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इंडिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषिणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतं च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणं अधोरेखितवान्।
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति, अधिकां विफलताम् अपि आनयिष्यन्तीति च। अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिक पदक्षेपोत्थापन रूपेण स्वीकृतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-2000 मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति। झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति। याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहित नियमानाम् अनुरूपः नासीदिति। औषध विभाग सचिव मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरण उद्यम आग्रहत यत् भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति। नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्ति इति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सिंगापुर देशेन सह समग्र एशिया खंडेन सह आर्थिक सहयोगं प्रगाढीकर्तुं व्यवसाय स्तरे परस्पर सहयोगं दृढीकर्तुं च भारत देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये बलं दत्तवान्। तेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अद्य पूर्व मध्यप्रदेशे अत्यधिक वर्षायै नारंगवर्णीयां संचेतनां प्रख्यापितवान्। अन्ते क्रीडावार्तासु भारतस्य काचल ढोचक नाम्नि द्वंद्व युद्ध

0: क्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारम् अन्तः विंशतिवर्षीयाणां महिलानां विश्वद्वन्द्वयुद्धस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। सा निर्णायकद्वन्द्वे चीनदेशीयां जिंगरु सन् नाम्नि क्रीडिकां 7-0 पराजितवती इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्ते।
0: राम राम। तो देखिए वीनस बहन, राम संसार कार्यक्रम में आज हम मनोरंजन भी करवाएंगे और कुछ बहुत ही एक ज़रूरी वार्ता भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आतंकवादियों के पीड़ितों के स्मरण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हिंसा में जान गंवाने वाले जो निर्दोष नागरिक और सुरक्षा कर्मी हैं उनके बलिदान को हम याद करें।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज बहुत ही ऐसा दिन है जो हम सब के लिए बहुत ही यादगार है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 21 अगस्त आज का दिन, यानी कि उस अवसर पर हम सब मिलकर जो हमारे आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मृति और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, उनको मजबूत बनाने और उनकी स्थिति में सुधार लाने में हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, ये हमारा सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए। स्मृति के माध्यम से हम उपचार इस बात पर प्रकाश डालता है कि पीड़ितों की कहानियों को सुरक्षित करना, उनके खोए हुए लोगों को श्रद्धांजलि देना और उनकी गरिमा को किस तरह से हम बनाए रखें। इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आतंकवाद के खिलाफ शपथ लेना भी होता है, और ये भी है कि समाज में शांति, एकता और भाईचारे की भावना को किस तरह से हम बढ़ावा दिया जाए।
0: बिल्कुल, देखिए विनस बहन, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच बनी रहती हैं। और अगर हम अपने कार्यक्रम की बात करें तो हमारे कार्यक्रम से भी जुड़ा है एक ऐसा ही नाम, श्रीपाल सांगवान जी का। ग्रामीण कृषि कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य है और हमारे कार्यक्रम के वरिष्ठ वार्ताकार श्रीपाल सांगवान जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी वार्ताएं और उनके अनुभवों को हम हमेशा सजो कर रखेंगे। और आज हम सुनते हैं उनकी ही एक वार्ता, ग्रामीण विकास और कृषि उत्थान में रेडियो की भूमिका।
2: इसी शुभेच्छात कवि की कविता के ये बोल, क्या भूलू क्या याद करूं, इस वार्ता को लिखते हुए इसी कविता के बोलों की उलझन में फंसा हूं, क्योंकि मेरा जन्म रेडियो के आरंभ से पहले सन 1934 में हुआ था। रेडियो सुनने की अकल मुझे सन 1938 ईस्वी में आई थी। तब रेडियो पर सरदार बलदेव सिंह पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा महात्मा गांधी के नामों की अधिक चर्चा हुआ करती थी। दूसरे महायुद्ध के बारे में तो जनता की प्रबल जिज्ञासा थी। इन बातों का उल्लेख तो जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि कथन की भूमिका बन जाए। हाँ, तो अब बात करते हैं अपने देहाती प्रोग्राम की। गाँव में रेडियो का आगमन न के बराबर था, लेकिन ग्रामीण जनता के लिए प्रसन्न होते थे। पंडित जी और चौधरी सुल्तान सिंह की नोक झोंक समा बांध देती थी। गुलाम मोहम्मद जी का दखल दाल भात में मूठर चंद की तरह था। करीब करीब आधा घंटे का प्रोग्राम होता था, बस नोक झोंक और गाने ही प्रसारित होते थे। कृषि प्रसारण तो तब भविष्य के गहन गर्भ में था। रेडियो का युवा था, लोग रेडियो के बक्से में पीछे झांक कर देखते थे कि क्या बोल रहा है। आज की पीढ़ी तो शायद इस बात का यकीन ही न करे कि रेडियो एक करिश्मा ही था। दिल्ली रेडियो पर पत्राया करते थे कि ये डब्बा बोल रहा है या बैटरी। श्रोताओं की जिज्ञासा का शांत किया जाता था, थे न अजूबा। तब रेडियो सुनने में अपने गांव से 3 कोस दूर एक कस्बे में मैं जाया करता थे। हमारे गांव के आसपास कोई रेडियो था ही नहीं। रेडियो का होना उनकी धनवान की निशानी थी, क्योंकि रेडियो का मूल्य था 200 रुपये और बैटरी थी 50 रुपये की। 250 रुपये उस जमाने में बहुत ही अहमियत रखते थे। देश में विदेशी हुक्मरान भयंकर गरीबी छोड़कर गए थे।

ने को न कपड़ा था, न खाने को अनाज था और पैसे का अभाव तो बहुत ही दूर था। हम पैदल चला करते थे, जैसा इन पंक्तियों के वाचक ने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। अदब विडंबना थी, क्योंकि विदेशी हुक्मरानों की यहाँ के तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और मैं कि वो देश से क्या कच्चा माल अपने देश इंग्लैंड में ले जाते थे और उसे पक्का करके दूसरे देशों में निर्यात करते थे। भारत में बहुत ही थोड़ा माल आता था, यहाँ की जनता की क्रय शक्ति दयनीय थी, सुई भी इंग्लैंड से ही आती थी। यहाँ पर शक्ति पर देश की अर्थव्यवस्था थी, न सड़कें थी और न ही पुल थे, खेल न थी जो कमाई करती थी, नहरें थी जिनका पानी बिकता था, उनकी कमाई का साधन था जिसे फौज का खर्च चलता था। कहने का मतलब यह है कि विदेशी सरकार इस रफ्तार से काम करती थी कि जिससे देश में अराजकता फैले, बहुत ही कष्टप्रद जीवन था। आज क्या जमाना है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ की सामाजिक दुनिया में भी तोड़फोड़ थी। कृषि के उत्थान की ओर से वे विदेशी सरकार एकदम उदासीन थी। वैसे तो किसान अपना पेट भरने उत्पादन कर ही लेते थे, उसे बाजारों में बेचकर अपने खर्च चलाते थे। गेहूं तो भरण पोषण के लिए स्वप्न था, मटर और चना जो और कई एक मोटे अनाज ग्रामीण गरीब जनता का वार्षिक भोजन था। गेहूं एक बीघे में मेहनत के बाद केवल 2 मणी निकलता था, यानी 2 मण यानी के करीब आधा 1 क्विंटल से भी कम। नामचारे को उन लोगों ने बिहार प्रांत में पूसा गांव में एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, लेकिन वो वहां सफल नहीं हो सकी क्योंकि वहां की भूमि दलदली थी। सन 1936 के करीब वो अनुसंधान केंद्र दिल्ली के में ले आए और आज जहाँ पूसा कार्यक्रम फार्म के नाम से मशहूर है। लेकिन पूसा ही क्या करता जो अपने परंपरागत गेहूं के बूढ़े बीज थे वो उनमें ही अदर बदल करते रहते थे। गांव के पटवारियों के ही जिम्मे यह काम था जो किसानों के बताते थे कि अरे भाइयों फला गांव में और उस किसान के पास ऐसा गेहूं का बीज आया है जो खेत में घना निकलता है, और अपना गेहूं ले जाओ और बदल दाओ। क्या कुछ भी हो, जमाना परिवर्तनशील है और हर चीज में परिवर्तन आवश्यक है। यूनियन जैक झंडे का स्थान हमारे प्यारे तिरंगे झंडे ने लिया, यानी हम आजाद हुए, हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और आज हम उस परिवर्तन से सड़क जैसा जीवन जी रहे हैं। कृषि धंधा कर्ज पर नहीं था, शहर के लोग खेती की ओर देख रहे हैं, वो खेती में रुचि लेकर गांव की ओर आ रहे हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं ने कृषि में ही हर क्षेत्र में कामयाब हासिल की है। हमारे राष्ट्रीय कर्णधारों का सबसे अधिक ध्यान खेती की ओर गया, क्योंकि किसी देश की रीढ़ कृषि ही किसी देश की रीढ़ होती है। दो देव महापुरुषों ने इस धरा पर जन्म लिया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन। इन ऋषियों ने एक नई क्रांति लाई और विशेष के गेहूं की वो उन्नत किस्मों की खोज की कि दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। वरना गेहूं की रोटी खाना आम आदमी जनता के लिए नहीं था। बच्चों को गेहूं की रोटी तब मिला करती थी जब कोई मेहमान घर में आ जाता था। वैसे तो हमारी तत्कालीन सरकार ने अन्न की उपज बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई, रेलवे स्टेशनों पर और सार्वजनिक स्थानों पर रंग बिरंगे पोस्टर चस्पा किए, हर विषय हर भाषा में DAVP के प्रकाशन हुए, सिनेमाओं में स्लाइड और चलचित्र दिखाए गए, परंतु सब बेकार क्योंकि जनता में शिक्षा का अभाव था। शहर में सिनेमाओं का पहुंचना ग्रामीण जनता के लिए कठिन था, यह भी एक विकट समस्या थी। नए गेहूं के बीज की खोज हुई, उसे आस पास जनता कैसे जानकारी दी जाए, इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। सूचना व प्रसारण मंत्री श्री बी केशवाल, श्री के एन मुंशी, सरदार बलदेव सिंह आदि राजनेताओं ने राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव दिया कि इस रेडियो को गांव के किसान तक पहुंचाया जाए, मनोरंजक कार्यक्रम तैयार किए जाए। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि रेडियो आम आदमी की पहुंच से बाहर था। नेहरू जी के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री आए और जमाना आया श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, हरित क्रांति पर परवान चढ़ा, लंबे तकड़े पैमान चढ़ा। नेहरू के युग में ही रेडियो का काफी प्रसार हो चुका था, देहाती जनता की रेडियो तक पहुंच न थी, सस्ते रेडियो सेटों का निर्माण हुआ, ग्राम पंचायतों को मुफ्त रेडियो
सेट दिए गए।

और गांव में रेडियो का दखल दखल था, वो बहुत तकड़े पैमाने पर हुआ। कहने का मतलब यह है कि अगर देहातों में रेडियो सेट न दिए जाते तो हर क्रांति कभी सफल न होती, हमारे अनुसंधान केंद्र की खोज कुछ ही दूरी तक पहुंच पाती। हम अब इस रेडियो स्टूडियो में बैठे हैं और हमारी बात सैकड़ों कोस तक पहुंच रही है। हमारे विद्वान कृषि वैज्ञानिकों की कृषि खोजों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ही क्षेत्रीय बोलियों के आकाशवाणी के केंद्रों की स्थापना की गई। पहले दिल्ली के बाद लाहौर में ही रेडियो स्टेशन था। दिल्ली केंद्र के कृषि कार्यक्रमों अनेक केंद्रों से लिए किए जाते थे। पहले सप्ताह में एक दो बार ही 5 मिनट का कृषि कार्यक्रम देहाती प्रोग्राम आया करता था। सन 1962 में देहाती रेडियो गोष्ठी कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार आधा आधा घंटे का आया, मंगलवार और शुक्रवार को प्रसारित होने लगा। इस कार्यक्रम ने देश में धूम मचा दी। यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हुआ। गांव गांव में रेडियो कर्मियों के गठन हुआ। एक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ करता था जो दृष्टि किसानों को बेसब्री से प्रतीक्षा रहती थी। देहाती रेडियो गोष्ठी पर सरकार का बहुत धन खर्च होता था, स्टेशनरी, डाक टिकट, पत्रिकाएं और कई एक सुविधाएं गोष्ठी कर्मियों को दी जाती थी। सदस्यों का फीस देकर प्रसारण भवन भी बुलाया जाता था। कुछ भी हो, आकाशवाणी की बदौलत हरित क्रांति सफल हुई। अगर फसल भरपूर खेतों पर पैदा हुई, आज मंडी नीचे है और कुछ उत्पादन ऊपर है। सरकार के सामने समस्या है कि इस उत्पादन को कहाँ खपाया जाए। देश की साधारण जनता को मुफ्त में अनाज मिलता है, लेकिन दैविक आपदा के मैं देश की क्या विदेशी जनता को भी उनका दान किया जाता है। यही नहीं, जो भी आज कृषि विद्यालयों में, कृषि वैज्ञानिक केंद्रों में नई खोज हो रही है, उसका भी रोज आकाशवाणी से प्रसारण होता है। आज देश की हर क्षेत्र में कृषि उत्पादों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। धरन का कानपुर में, गन्ने का कोयम्बतूर, आलू का शिमला, चारे का झांसी, आम का लखनऊ, लीची का देहरादून, शकरकंदी का केरला में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इन अनुसंधान की गतिविधियों को क्षेत्रीय आकाशवाणी केंद्र कार्य प्रसारित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आकाशवाणी कृषि प्रसारणों में इन अनुसंधान केंद्रों का प्रसारण न होता तो किसानों को उसकी जानकारी कैसे मिलती। प्रतिदिन 20 मिनट का कार्यक्रम खेती बाड़ी का ही होता है। यही नहीं, अब देश में FM रेडियो केंद्र की बहुतायत है जो वहाँ की कृषि के अलावा वहाँ की लोकतंत्र को भी जीवित रखे हैं। अब वो जमाना गया जो किसान महिलाएं परंपरागत गीत गाया करती थी, एक मत बोइए रे बड़ी मत बोइए, एक मत बोइए रे बड़ी मत बोइए, पड़ेगी उगाई डंडा बाजे जोई रोई के। क्योंकि उस जमाने में कपास में बहुत ज्यादा कीड़े लगते थे और दवाई कोई थी नहीं, और गन्ने में पानी बहुत चाहिए तो सिंचाई के साधन भी नहीं थे। लेकिन आज वो जमाना गया, आज पानी की भी रेंज है और नई नई दवाइयों के हमारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। और क्या पूछोगे आप कि बहुत ही किसान जो खेती बाड़ी छोड़ कर 7 रुपए महीने पगार पर फौज की नौकरी किया करते थे, फिर वो संस्थान वो समय भी आया कि हमारे राष्ट्रीय कर्मधारों की नीतियों से प्रभावित लोग खेती की ओर आए। आज दादा घाट की कहावत सदियों बाद सच हो रही है, उत्तम खेती भीख निदान, उत्तम खेती मध्यम दान, निकट चाकरी भीख निदान। एक युग था जब भारतीय किसान घुटनों तक धोती और नंगे पैर खेतों में हल खग लकड़ी और मरियल भैंसों से हल चलाया करते थे, ये हमारी पहचान थी। लेकिन आज देखिए, हमारे भारतीय नौजवान आलीशान ट्रैक्टर पर बैठे हुए आधुनिक हलों से खेती कर रहे हैं। ट्रैक्टरों पर स्पीकरों का मैं राष्ट्रीय संगीत बज रहा है, अरे उठो जवानो धरो फावड़ा, अरे उठो जवानो धरो फावड़ा, जय बोलो उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने करे नाज के कोटी कटले, उन्हें उठाओ देश हमारे राज की। अगर रेडियो न होते तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों की खोज गांव के खेतिहारों तक कैसे पहुंच पाती। एक सारी दुनिया आश्चर्यचकित है कि हमारी अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ रही है। हर क्षेत्र में हम विश्वास कर रहे हैं। दूध उत्पादन में विश्वास विश्व में अपना एक स्थान बना चुके हैं। आज हमारे क्षेत्र में निर्यात की ओर बढ़ रहे हैं। धन और तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन जुटाए जाए।

0: रहे हैं। अब और राष्ट्रकरण दोनों का विशेष ध्यान है क्योंकि अनाज के बाद अब तिलहन और दलहन पर बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, और देश में गरीबी और भुखमरी के दौर से लेकर आधुनिक कृषि का दौर स्वर्गीय श्री श्रीपाल सांगवान जी ने देखा, और उनके अनुभव से हम हमेशा सीखते रहेंगे और जानते रहेंगे अपने देश के इस इतिहास को, और उनकी इन वार्ताओं को हम धरोहर के रूप में हमेशा संजो कर रखेंगे। उन्हें हम अपने कार्यक्रम के जरिए विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और सुनते हैं ये देशभक्ति रागनी।
2: अरे हे की

0: तो भाई अभी आप सुन रहे थे कलाकार ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में ये किसान गीत। बहुत ही अच्छा था और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको संदेश मिला होगा गाने के माध्यम से। बिल्कुल,
1: और देखिए बरसात के मौसम में जहाँ एक तरफ हमें गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन कुछ बीमारियाँ भी बरसात के मौसम में बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। उसमें से सबसे अगर आम बात करें तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है, तो इसलिए साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि उन्हें पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, सूती कपड़े, जिससे शरीर कवर रहे। इसके साथ साथ घर की खिड़कियां भी आप उन पे जाली लगवा लें और आसपास पानी इकट्ठा होने ना दें।
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेंगू एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही मुश्किल समय लेके आ जाती है। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेंगू की पहचान कैसे हो, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग अक्सर ये समझ पाते हैं कि उन्हें डेंगू हुआ है या वायरल फीवर, क्योंकि हालांकि दोनों में बुखार और कमज़ोरी, सिर दर्द जैसे ही लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी असमानता होती है। जैसे कि वायरल में आमतौर पर फीवर हल्के से मध्यम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और 2 से 3 दिनों में अपने आप कम हो जाता है, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स पर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि डेंगू में तेज़ बुखार बना रहता है और साथ ही शरीर में तेज़ दर्द और लाल दाने निकल आते हैं, जिससे प्लेटलेट्स का गिरना एकदम धीरे धीरे कम होता है। तो जब भी आपको लगे कि ऐसा कुछ लक्षण है और तेज बुखार 2 से 3 दिन में कम नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपने संपर्क करना है, पास के रोकथाम अस्पताल में जाना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, क्योंकि ये समस्या बहुत ही मुश्किल घड़ी ला देती है।
1: बिल्कुल, इन बातों का आप रखिए ध्यान। और अब सुनते हैं दिनेश गिरी की आवाज़ में ये रागनी।

तो भाई अभी आप सुन रहे थे रामायण में अश्वमेध का किस्सा, और ये रागनी थी। और अब जिनसे आप सुन रहे थे कलाकार थे दिनेश गिरी, और उसके साथ ही आज का राम संसार कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत

0: के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए भाई, कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए कृषि संबंधित जानकारियां भी लेकर आते हैं और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी पैदावार अच्छी हो। और पैदावार अच्छी करने के लिए जहां एक तरफ मिट्टी की जांच जरूरी है, उन्नत बीजों का चयन भी होना चाहिए, समय पर सिंचाई भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ संतुलित खाद और पोषक तत्व प्रबंधन भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं अक्सर कि खरपतवार के कारण कई बार हमारे किसान भाइयों की जो मूल फसल होती है उसकी पैदावार कम हो जाती है और काफ़ी उसमें नुकसान भी हो जाता है, तो उसका प्रबंधन भी बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए खास बातचीत लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल, हम एक खास बातचीत लाए हैं और विषय भी उसी से जुड़ा हुआ है कि फसलों में पोषक तत्व और खरपतवार प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं अनिल यादव से, उनसे बातचीत करें कुलदीप सिंह।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय का महत्व बारिश के समय में बहुत अधिक होता है। खरीफ की फसलों का समय है और खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसकी बहुत से किसान भाई समय पर पहचान नहीं कर पाते हैं। और खेती में पोषक तत्व प्रबंधन है किसी दुकानदार के कहने से गैर सिफारिश शुदा जो पोषक तत्व हैं बिना उचित समय के फसलों में डाले जाते हैं। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल, यह शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। अनिल जी, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: देखिए, खरीफ फसलों की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो खरीफ फसलों में हिस्सा है धान का है, इसके बाद तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें हैं। और खेती जो आज के समय में है वो लागत अधिक है और मुनाफा कम है। तो इसमें किसान भाई कहते हैं कि खेती आज के दिन घाटे का सौदा साबित हो रही है। ये पोषक तत्व आखिर हैं क्या?
3: देखो, कुछ वैज्ञानिक उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
2: जी।
3: अब ये 17 पोषक तत्व होते कौन से हैं? तो इनके अंदर 3 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी पौधों को जरूरत तो होती है लेकिन हमें उनको सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पौधा उन 3 पोषक तत्वों को खुद से ही ग्रहण कर लेता, हवा से और मिट्टी से जो जल के द्वारा लेता है। उनके अंदर 3 पोषक तत्व आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
2: जी।
3: इनके अलावा अब आते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, इनमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी पौधे को सर्वाधिक आवश्यकता होती है।
2: अनिल जी, इसमें कि बहुत सारे किसान वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये जो शब्द है इससे वाकिफ नहीं होते, वो सीधा जिक्र करते हैं यूरिया, DAP, SSP, NPK, इन पे बात करते हैं। तो इन चीजों का कैसे किसान भाइयों को पता चले?
3: देखिए, जैसे अभी आपने जिक्र किया यूरिया और DAP का, पोषक तत्व जो होते हैं हम उनको सीधा ही फसलों को उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है उर्वरकों की। उर्वरकों के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न मात्रा होती है पोषक तत्वों की। जैसा कि बात करें, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है
2: जी,
3: और DAP में 46% फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है
2: जी।
3: तो इनके द्वारा हम फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध करवा सकते हैं। और जैसे किसान भाइयों को सिर्फ 2 ही नाम पता होते हैं, यूरिया और DAP
2: जी,
3: पर असली में बात यह है कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनसे सिर्फ 2 ही पोषक तत्वों की सप्लाई हो पाती है,
2: होती है जी।
3: जबकि आवश्यक होते हैं 17। तो अगर बाकी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पौधों की अंदर रासायनिक क्रियाएं प्रभावित होंगी।
2: अनिल जी, यह पता कैसे लगे कि किस समय हमारी फसल को कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है?
3: इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि मृदा को कितना पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसमें कितनी कमी है, उसके हिसाब से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा पोषक तत्व कितना डालना है।
2: मतलब उसके लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी आवश्यक होगी।
3: इसके लिए भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना 2015 से चलती आ रही है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर जो मृदा की प्रयोगशाला होती है वहां अपनी मिट्टी का सैंपल लेकर

0: जा सकते हैं, वहाँ जमा कराएंगे तो वहाँ के जो उपस्थित विशेषज्ञ हैं वो उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद में वो बताएंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व किस किस मात्रा में आपकी मिट्टी में उपलब्ध हैं और कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में आपको देने की आवश्यकता है।
1: जी
0: इससे हम निर्धारित कर सकते हैं, और जो ज्यादा पोषक तत्व डालने या कम पोषक तत्व डालने से जो उत्पादकता प्रभावित होने वाली होती है उसका निवारण भी कर सकते हैं।
1: इसमें समय का प्रबंधन, समय के हिसाब से कि किस समय हमें कितनी मात्रा देनी है, उसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा
0: देखिए, इसके लिए एक दो पीछे की बातें होती हैं कि कुछ अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं मिट्टी के अंदर।
1: जी
0: जैसे कि बात करें, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं वो बहुत चलायमान होते हैं मृदा के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन को आज अगर मिट्टी के अंदर डालते हैं तो 3 या 4 दिन के बाद या तो पौधा ले लेगा उसको, और जो बच जाता है वो कहीं ना विलुप्त हो जाएगा, या तो हवा में चला जाएगा या बहके चला जाएगा या फिर पानी के साथ रिसकर नीचे चला जाएगा। जबकि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको आप जहां डालते हो वो कई टाइम तक वहीं पड़े रहते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस और पोटेशियम।
1: जी, इसमें अनिल जी, जब हम पोषक तत्व दे रहे होते हैं उर्वरक के माध्यम से, तो हमें सिंचाई से पहले देना है या सिंचाई के बाद देना है?
0: देखिए, सबसे बढ़िया उसके लिए वातावरण होता है कि नमी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, तो हम जैसे ही सिंचाई करते हैं या हल्की बारिश होती है उसके बाद में पोषक तत्व डालना सबसे उपयोगी साबित होता है।
1: तो इसमें जैसे धान की फसल है, हमारे देश में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है,
0: जी
1: ये सबसे अधिक लागत वाली भी फसल है,
0: जी,
1: और इसमें किसान भाई पोषक तत्वों के जो जानकारी है उसके अभाव के कारण उसमें ऐसे ऐसे उर्वरक और ऐसे ऐसे बायोस्टिमुलेंट डालते हैं जिनका शायद उस समय महत्व नहीं होता। तो किसानों में ये जागरूकता कैसे लाई जाए कि वो सही समय पर सही पोषक तत्वों का अपनी फसल में इस्तेमाल करें?
0: एक तो मैंने आपको अभी बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करिए कितना हमें डालने की आवश्यकता है।
1: इसके लिए प्रेरित कैसे करें किसान को कि आपको मिट्टी जांच करवानी?
0: देखिए, ये निःशुल्क होता है वैसे तो, या फिर बहुत ही मिनिमम शुल्क की आवश्यकता होती है अपना मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करवाने के लिए।
1: जी,
0: तो अगर किसान भाई इस तरीके से सोचें कि 1 किलो यूरिया या फिर 1 बैग की बात करते हैं अपन, जो पर एकड़ के हिसाब से आंख बंद करके डाल देते हैं किसान भाई,
1: जी,
0: उस 1 बैग यूरिया में से 1/3% जो होता है वही पौधा ले पाता है। अब सोचिए, 2/3 कहाँ गया, विलुप्त हो गया, तो कितना नुकसान हो रहा है, पौधा को मिल भी नहीं पा रहा है।
1: इससे अनावश्यक तौर पर जो फसल में हमारी लागत है वो बढ़ रही है। तो किसान भाइयों को यह समझने की आवश्यकता है कि अपनी फसल का हम जिस वक्त उसमें जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है वही पोषक तत्व उसमें दें, और उससे पहले मिट्टी और मिट्टी के साथ साथ पानी जांच की भी एक बात आती है,
0: जरूर
1: मिट्टी और पानी दोनों जांच कराएंगे तो हमें यह पता लगेगा कि कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व हमें अपनी फसल में डालना है।
0: जी,
1: धान की फसल के अलावा जो तिलहन और दलहन फसलें हैं उनमें कैसे पोषक तत्व जो प्रबंधन है वो कैसे रहता है?
0: देखिए, जो तिलहन फसलें होती हैं उनमें हमारा जो मुद्दा होता है वो होता है तेल। तेल में कहीं ना कहीं मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता को सराहा जाता है, तो गुणवत्ता के लिए जो सबसे उपयुक्त पोषक तत्व होता है वो होता है सल्फर। तो बाकी फसलों में भले ही सल्फर ना डाला जाए, सल्फर जिसको गंधक भी कहा जाता है,
1: क्या करता है सल्फर?
0: सल्फर जो होता है तेल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनको अच्छा करता है, जिसकी वजह से
1: पौधे का जो व्यवहार है डालने के बाद वो कैसे परिवर्तित होगा?
0: देखिए, जो सल्फर होता है उसकी कमी से क्या होता है कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं।
1: जी,
0: लेकिन हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान में देने की जरूरत है, वो ये है कि पौधे के किस भाग के अंदर पीलापन नजर आ रहा है। अगर पौधे के निचले भाग या निचली पत्तियों के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है तो वो नाइट्रोजन की कमी है दिखाता है।
1: जी,
0: उसके लिए हमें यूरिया डालना है।
1: जी,
0: अगर पौधे की ऊपरी पत्तियों के अंदर पीलापन आ रहा है और अगर पूरी पत्ती पीली है लेकिन बीच की जो नसें होती है, वेंस होती हैं, अगर वो हरी हैं तो वहां पे वो मैग्नीज की कमी को दिखाता है। ऐसे और भी लक्षण होते हैं जो किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस की अगर कमी होती है, पौधे की जो निचली पत्तियां होती है वो बैंगनी कलर की हो जाती है, और अगर पोटेशियम की कमी होती है तो पौधे की जो पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो झुलस जाते हैं, वो भूरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं, और अगर जिंक, जो आजकल लगभग 50% तक कमी है जिसकी, जिंक की कमी से क्या होता है कि जो पौधा होता है वो प्राप्त नहीं कर पाता है, झाड़ी नुमा दिखाई देता है, बोना रह जाता है, उसकी पत्तियां मुड़ने लग जाती है, हरापन भी कम हो जाता है। किसान भाई को तो लगता है कि हो रहा है, लेकिन इससे पौधे की जो रासायनिक और जो बाकी क्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, जैसे कि पौधा प्रकाश को यूज करके क्या करता है, खाना बनाता है, तो अगर पत्तियां मुड़ जाएंगी या फिर पीली पड़ जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम कर पाएगा, जिसकी वजह से पौधा खाने का उत्पादन कम करेगा, उत्पादकता भी
1: कम होगा, जिससे उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो किसान भाइयों, यहां यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी फसल के अंदर जब भी हम पोषक तत्व डाल रहे हैं तो दुकानदार के कहने पर या देखा देखी उसमें ना डालें, बल्कि कि जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है और जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में ही हम डालेंगे, तो हमारा खर्च भी नियंत्रित होगा, हमारी लागत घटेगी और निश्चित तौर पर हमारी फसल भी बेहतर उत्पादन देगी। अनिल जी, इसमें किसान भाइयों को ये बात और बताएं कि जब हम फसल में ये उर्वरक दे रहे हैं
0: जी,
1: तो उसमें मात्रा क्या रहती है?
0: अगर हम

0: बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, कि ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, इनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है।
1: जी
0: परंतु इनके साथ साथ अगर तिलहन की बात करें तो सल्फर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें आवश्यकता होती है, जबकि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है उसकी 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन, 40 से 60 kg के हिसाब से फास्फोरस
1: जी
0: और 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से पोटेशियम की ज़रूरत होती है।
1: ये तीनों पोषक तत्व हमें देने।
0: जी
1: इसके अलावा आपने 17 पोषक तत्वों की बात की,
0: जी
1: बाकी कौन से हैं?
0: जैसे कि हम प्राथमिक के अंदर आते हैं NPK, उसके बाद में द्वितीयक के अंदर आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद में 8 पोषक तत्व होते हैं, उनको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है सूक्ष्म, मतलब इनकी मात्रा बहुत कम जरूरत होती है इनकी, लेकिन अगर ये मिट्टी के अंदर ना हुए या इनको ना सप्लाई किया गया, पौधे के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। किसान भाई लगभग आयरन और जिंक के बारे में सुने होते हैं,
1: जी
0: आयरन जिसको हम लोहा भी कहते हैं,
1: जी
0: लेकिन इन दोनों के अलावा 6 और होते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन, निकल, कॉपर, मैग्नीज, ये भी होते हैं।
1: जी अनिल जी, एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो मौसम में परिवर्तन है वो पिछले कुछ सालों से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बारिश का जो शुरुआती समय होता है उस समय बारिश नहीं होती,
0: जी
1: और जो ये मध्य समय आता है इसमें बारिश अधिक होती है, जिसमें अगेती धान की फसलें, तिलहन फसलें, बाजरा जैसी फसलें, ज्वार जैसी फसलें हैं, वो लगभग अपनी प्रारंभिक अवस्था जो उनकी है वो पार कर चुकी होती
0: जी
1: हैं। तो उसमें पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना?
0: देखिए, आपको लग रहा होगा कि अगर खेत के अंदर पानी भरा है तो पौधे को पानी की जरूरत तो क्या ही होगी,
1: जी
0: लेकिन जल भराव की स्थिति में अगर पौधा मरता है तो जल की कमी से ही मरता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जो होती है, जो अपन श्वास में लेते हैं, वो पौधों को भी चाहिए
1: वो
0: होती
1: उसकी
0: है,
1: जड़ तक नहीं
0: वो
1: पहुंच
0: जड़ तक नहीं
1: पाती।
0: पहुंच पाती,
1: जी
0: पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए वो, और जो उसके जड़ होती है उसके अंदर जो छिद्र होते हैं जिनसे पानी अंदर जाता है, वो
1: जी
0: सब ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से वो जल की कमी से ही मरता है। रही बात पोषक तत्वों की, लगभग जो पोषक तत्व होते हैं, अगर जल भराव ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसमें क्या होता है, मिट्टी में एक चीज होती है पीएच जिसको कहते हैं, तो पीएच 6 से 7 के बीच में आके सेटल हो जाता है। लगभग जितने भी पोषक तत्व हैं वो इस पीएच के आसपास मिल जाते हैं। तो अगर हमें जल भराव की स्थिति में पौधे को बचाना है तो हमें बस नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है, बाकी अपने आप ही उसको मिल रहे होते हैं उस टाइम पे।
1: इसमें अनिल जी, चलते चलते एक सवाल आपसे और करूंगा कि उर्वरक की हमने बात कर ली, क्या प्राकृतिक ऐसी खाद नहीं है उर्वरक के बिना जो ये सारे पोषक तत्व तो हम जमीन में दें और कम से कम उर्वरक हमें डालना पड़े?
0: जैसे कि हमारे देश के अंदर भी चल रहा है जो प्राकृतिक खेती है उसको
1: हाँ
0: बहुत तवज्जो मिल रही है,
1: जी
0: ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको भी मिल रही है,
1: जी
0: इसके साथ ही जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसमें बहुत बड़ा अहम रोल है, जैविक पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना,
1: जी
0: इस चीज़ को कहते हैं समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन।
1: जी
0: समन्वित का मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से अधिक आपके पास विकल्प हैं तो आप उनको किस तरीके से, किस मात्रा में उचित तरीके से उपयोग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और कम से कम लागत हो।
1: जैसे कुछ किसान भाई हैं, खरीफ की फसल लेने से पहले वो ढेंचा की फसल
0: जी
1: उगाते हैं, मूंग की फसल उगाते हैं, और उसको खाद के तौर पर वो उसमें जुताई करके मिला देते हैं।
0: जैसे अगर किसान भाई अगर इसको काम में लेना चाहता है तो उनके लिए ये है कि आप मुख्य फसल जब भी बुआई करें उसके 1 महीने पहले इन हरी खाद को खेत में लगा दें, उसके बाद में बुआई के थोड़ा टाइम पहले कल्टीवेटर से इनको मिट्टी में मिला दें।
1: निश्चित तौर पर अगर हम खरीफ फसलों में पोषक तत्व तो प्रबंधन अच्छे से करेंगे और सिफारिशशुदा जो खाद और उर्वरक हैं उनका प्रयोग करेंगे, हरी खाद खेत में देंगे,
0: जी
1: प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करेंगे, तो खेती में निश्चित तौर पर लागत कम होगी, लागत कम होगी तो मुनाफा अधिक होगा। और किसान भाई जो कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा साबित हो रही, वो घाटे का सौदा नहीं रहेगी, क्योंकि खेती के ऊपर हमारे देश में बहुत सारे उद्योग हैं जो खेती के कारण ही चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी।
2: अभी आप सुन रहे थे खास बातचीत, फसलों में पोषक तत्व व खरपतवार प्रबंधन। जानकारी दे रहे थे अनिल यादव और इनसे बातचीत कर रहे थे कुलदीप सिंह, और उन्होंने विशेष तौर पे कहा कि सबसे पहले आप अपने पानी और मिट्टी की जांच करवाएं, उसके बाद ही आप ये निर्धारित करें कि कौन से पोषक तत्वों की कमी आपकी मिट्टी के अंदर है, जिससे कि आपकी लागत भी कम होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं अतुल कुमार की आवाज़ में ये रागिनी।
3: आ

0: भाई किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जो ब्रांडेड दवाएं हैं वो काफ़ी महंगी हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी नागरिकों को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, जो कि सामान्यतः 50 से 90% तक सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो उनके हेल्थ को देखते हुए सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, उसे भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें बहुत ही कम दरों पर उन्हें जन औषधि केंद्र पर नैपकिन भी उपलब्ध हो जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएँ। और इसके साथ साथ आपके एरिया में कहाँ पर नज़दीकी केंद्र हैं उसको भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इनके पोर्टल पर जाकर।
1: और इसी के साथ काफ़ी सारी सुविधाएं भी हैं इसमें कि सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं, जहां जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकती हैं जो कि कम कीमत पे मिलती हैं ब्रांडेड दवाइयों से। और ये भी है कि उसकी प्रभावशाली उनके बराबर की ही होती, पर थोड़ा बहुत उसका जो जो असर होता है वो कम नहीं होता। दवाइयों का असर वही होता है, वैसे ही होती हैं, उतनी ही क्वालिटी होती है उसकी, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो कम होती है। और अपने आप आसपास के स्टोर से आप जाके उसको ले सकते हैं।
0: और इसमें अगर हम बात करें तो मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप जन औषधि सुगम ऐप के ज़रिए लोकेशन चेक कर सकते हैं, दवाओं की लिस्ट चेक कर सकते हैं और उनके दाम भी घर बैठे आप आसानी से चेक कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और भाई मौसम बदल रहा है तो अपने खाने पीने का भी आप विशेष ध्यान रखिए। बरसात के मौसम में तला भुना या ज़्यादा मिर्च मसाले खाना ना खाएं, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र होता है इस समय कमज़ोर हो जाता है। तो घर का बना हुआ सादा भोजन आप करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। और अब सुनवाते हैं आपको अमित तेवतिया की आवाज़ में ये उपदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे अमित तेवतिया की आवाज़ में ये उपदेश। और भाई कल है शनिवार, और आपको याद दिला दें कि शनिवार को हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है 6:30 पर। ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होता है जिसमें कि हमारे श्रोता फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने पसंद के गीत और कलाकारों से हमें वाकिफ़ कराते हैं, और हम उनके पसंद के हिसाब से कार्यक्रम में गीतों को शामिल भी करते हैं।
1: तो भाई हमारा कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, साथ में कई मनोरंजन लाते हैं, जानकारी लाते हैं। आपको कैसा लगता है? आपके सुझाव और आपकी जो प्रोत्साहन है वो हमारे कार्यक्रम को बहुत और अच्छा बेहतर बनाते हैं कि हम कोशिश करते रहते हैं। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसकी सुझाव और प्रतिक्रियाएँ ज़रूर हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृहकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं feedback@fnh.gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं।
0: और भाई अगर हम बात करें अपने श्रोताओं से जुड़ने की, तो उसमें हम SMS के माध्यम से भी अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी जुड़ते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो श्रोता हैं हमें पत्र भी लिखते हैं जिसमें वो हमें फरमाइश गीतों की भी देते हैं। इसके साथ साथ कृषि संबंधी अगर वो कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उन पत्रों को भी हम शामिल करते हैं। रविवार के दिन पत्रों के द्वारा आपके सभी तरीके के कृषि संबंधी जो भी जानकारी होती है, जो भी आपके सवाल होते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। सभी कार्यक्रमों में हमें अपने श्रोताओं से जुड़कर बहुत ही अच्छा लगता है, और अधिक से अधिक श्रोताओं की भागीदारी कार्यक्रम को बेहतर बनाती है। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत ये खूबसूरत सी गजलें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य

0: किफायती आवास, पुरानी और अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के साथ दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ राजधानी बनाना। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू मामले तेजी से बढ़े, अब तक 1700 से अधिक मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल सेमीफाइनल में पहुंची। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को आधुनिक तथा टिकाऊ राजधानी बनाना है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में जमीन सीमित है, लेकिन हमारी सोच और परिकल्पना सीमित नहीं है। इस मास्टर प्लान के प्रमुख प्रावधानों में 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियां, 500 मीटर के दायरे में पारगमन अनुकूल विकास और पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास की व्यवस्था शामिल है। साथ ही इसमें लैंड पूलिंग के जरिए नए नियोजित आवासीय क्षेत्रों को विकसित करने पर भी बल दिया गया। श्री सूद ने कहा कि इस नीति में जहां झुग्गी वहीं मकान के अंतर्गत पुनर्वास, यमुना के बाढ़ क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक, हरित क्षेत्रों के विस्तार और जीरो वेस्ट विकास जैसे प्रावधान भी हैं।
1: प्लैंड एरियाज में 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया को रीडेवलप करने की रास्ता मास्टर प्लान ने खोल दिया है। इन प्लैंड एरियाज में उदाहरण के लिए डीडीए के फ्लैट बने हैं, 3000 स्क्वायर मीटर के लोग इकट्ठा आए तो उसको तोड़कर नए सिरे से 1.5 गुना FAR के साथ उसकी FAR का 5% कमर्शियल पेस के अनुसार बनाने की प्रावधान इसमें किया गया है। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज उनको भी रीडेवलप करने के लिए प्रावधान भी इसमें किए गए हैं।
0: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 106 इकाइयां पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करती पाई गईं, वहीं 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध संचालन की सहमति के बिना संचालित हो रही थीं। साथ ही 44 मामलों में पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया, जबकि 33 इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ हवा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्रोत पर भी प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
2: हमने 500 स्क्वायर मीटर से बड़ी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइटें हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए खोला है डस्ट पोर्टल और लगा दिए हैं वहाँ पर AI एनेबल्ड कैमरास, जो कि वहाँ पर उड़ती हुई धूल मिट्टी को सेंसर कर पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में तुरंत आ जाएगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा तेजी से फैलने के कारण स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या अब तक 1777 तक पहुंच गई है। मौसमी और वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इन्फ्लुएंजा पर बारीकी से निगरानी करने को भी कहा गया। वहीं श्री सिंह ने बताया कि अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, दवाओं और जरूरी मेडिकल उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था है। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: अभियान के पहले चरण में लगभग 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में एंटी लार्वल दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। ट्रेन के साथ पावर स्प्रे टैंकर तैनात रहेंगे, जिससे जल भराव और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों तक दवा पहुंचाई जा सके। निगम के अनुसार अभियान अगले महीने तक चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के विभिन्न रेलवे रूटों पर चलेगा। श्री वाही ने कहा कि बारिश के दौरान जल भराव से मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ती है, इसलिए शुरुआती स्तर पर ही उनके प्रजनन चक्र को रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। महापौर ने दिल्ली निवासियों से भी घर और आसपास पानी जमा न होने देने, कूलर तथा पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने

0: की अपील की। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह के 4 आरोपियों को पंजाब और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे टेलीग्राम के जरिए बैंक खाते हासिल करके उन्हें कम्बोडिया और संयुक्त अरब अमीरात में बैठे साइबर ठगी करने वालों को उपलब्ध कराते थे। इनमें से एक बैंक खाता कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज 17 शिकायतों से जुड़ा था। इन मामलों में करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने आई है। दिल्ली के करोल बाग के प्यारेलाल रोड पर आज 2 मंजिला एक पुरानी इमारत के ढहने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि हादसे में 2 घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभाग के अनुसार इमारत जर्जर हालत में थी और उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को बिना मास्टर डिग्री के पीएचडी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले पात्र विद्यार्थी सीधे पीएचडी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेंगे। 2026-27 सत्र के पहले बैच के विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था विशेष रूप से लागू की जा रही है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 4,400 एमटीएस कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलने पर आज उन्होंने निगम मुख्यालय पहुंचकर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलने पर श्री वाई ने कहा कि सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है और समान वेतन का निर्णय इसी संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें उनके कार्य दायित्व और जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित तथा समान वेतन उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह योजना भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को बढ़ावा देगी और रोजगार सृजित करेगी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि यह विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का प्रतीक है।
2: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए है। पिछले कुछ सप्ताह में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले

0: महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपए प्रति किलो थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की वृद्धि को एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि शाहदरा फ्लाईओवर से अप्सरा बॉर्डर की ओर जाने वाले मार्ग पर मरम्मत और नवीकरणीय कार्य के कारण 31 अगस्त तक यातायात धीमा या बाधित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि मार्ग पर यातायात को नियंत्रित और सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली नगर निगम के राजभाषा विभाग की हिंदी प्रतियोगिता आज समाप्त हो गई। इस दौरान प्रतियोगिताओं में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निबंध लेखन, टिप्पणी और आलेखन, सुलेख तथा हिंदी ज्ञान जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य निगम के कामकाज में हिंदी को सरल, सहज और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रविवार को नई दिल्ली में 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आयोग सभी हितधारकों के लिए NCS के मिस्ड कॉल सुविधा नंबर जारी करेगा। इससे आयोग कॉल करने वालों से संपर्क कर सकेगा और उनकी शिकायतें, मुद्दों और आवेदनों को समयबद्ध तरीके से दर्ज कर सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। NTA ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया। NTA के उत्तर की चुनौती एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें JEE मेंस, नीट या UGC नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों ने बेहद संघर्षपूर्ण क्वार्टर फाइनल में चीन की ही फैन और झांग शू को हराया। इस जीत के साथ ही भारत का पदक सुनिश्चित हो गया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में पहला भारतीय पदक होगा। वहीं पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग और वांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। राजधानी दिल्ली में आज लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के साथ दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ राजधानी बनाना है। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू मामले तेजी से बढ़े, अब तक 1700 से अधिक मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम।

कोशिशों के जुलों में सऊदी नायब सदर बैडमिंटन फेडरेशन ने नौजवान लड़कियां और नौजवान खवातीन की कैटेगरीज के लिए किंगडम वुमेन चैंपियनशिप की फातिहा।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विमेंस एम्पावरमेंट पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लाए हैं कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ में गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: जी हाँ, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और रात्रि 11 से 10, 11 10 से आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.32 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
5: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
6: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
7: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
8: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है।

0: भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशु की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwini Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and prepares

0: हाँ, उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने खित्ते में निगरानी में इजाफा किया है। जनाब शाह ने यादा किया कि ममता बनर्जी ने वहाँ सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए मतलूबा आराजी फराहम नहीं की थी, शुभिंदो अधिकारी ने इसे फराहम किया है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अंदाजे से कम पैदावार के बावजूद घरेलू मांग से निमटने के लिए मुल्क में शकर का खातिरखा ज़खीरा मौजूद है। शकर की कीमत में हालिया इजाफे के तनाजुर में हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं ताकि शकर की खातिरखा दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सारिफीन के लिए मुस्तहकम कीमतों को बरकरार रखा जा सके। सारिफीन के उमूर खुराक और अवामी तकसीम की वजारत का कहना है कि वह सूरत हाल पर कड़ी नज़र रख रही है। शकर की कीमत में हालिया कुछ हफ़्तों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को शकर की कीमत 48 रुपये फ़ी किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर तकरीबन 55 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई। वजारत ने कहा कि शकर की कीमत में हालिया इजाफे की वजह इथेनॉल की पैदावार के लिए शकर की मुंतकली को करार देना मुनासिब नहीं है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: हुकूमत शकर की फराहमी बढ़ाने के लिए ज़खीरा अंदोज़ी के अमल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वजारत ने मुशाहदा किया है कि कुछ शुगर मिलों और ताजरों की सट्टेबाजी और ज़खीरा अंदोज़ी के अमल ने हालिया दिनों कीमतों के इजाफे में अहम रोल अदा किया है। हुकूमत ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक मुल्क भर के शुगर डीलरों के लिए 400 टन शकर की ज़खीरा अंदोज़ी की हद मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा थोक सारिफीन को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज़्यादा शकर स्टॉक करने की इजाज़त नहीं होगी। रियासतों और शुगर मिलों को 15 अक्टूबर से क्रशिंग का अमल शुरू करने का मशवरा दिया गया है। इस कदम से अक्टूबर में शकर की पैदावार मामूल के 3 से 4 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में शकर की दस्तियाबी में मजीद बेहतरी आएगी। दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज़ के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज़।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और मालूमाती टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णो ने आज मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग स्कीम MPMS का आगाज़ किया। मरकज़ी काबीना ने इस स्कीम को पिछले महीने मंजूरी दी थी, जिसके लिए 62,500 करोड़ रुपये की बजट जाती रकम मुख्तस की गई है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि ये स्कीम 1 अप्रैल 2026 से नाफिज हो गई है। इस स्कीम की मुद्दत 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल के लिए होगी। इस स्कीम का मकसद दायरा कार में मजीद इजाफा करके मोबाइल मैनुफैक्चरिंग सप्लाई चेन को और बेहतर करके नीज अंदरून मुल्क मैनुफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाकर आलमी मुकाबला आरई में इजाफा करना है। ये स्कीम भारतीय मोबाइल ब्रांड्स तैयार करेगी और रोज़गार भी वजा करेगी। MPMS के 2 हदफी जुमरे हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन की मैनुफैक्चरिंग के लिए सहूलतें फराहम करना और भारतीय मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स की मदद करना शामिल है। ये आकाशवाणी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर JP नड्डा ने आज मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंज़ा की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का जायज़ा लिया। बिलखसूस कौमी राजधानी पर तवज्जो मरकूज की गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने मुत्तला किया कि जनाब नड्डा ने कौमी सतह पर निगरानी और वबा की तहकीक से मुतालिक सूरत हाल, IL और SARI रुझानात, जांच लेबोरेटरी की निगरानी और हिफ्जान सेहत की सहूलियात के लिए सहूलियात की तैयारियों का जायज़ा लिया, ताकि मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलात का बंदोबस्त किया जा सके। मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने लगातार निगरानी, वसी तौर पर नज़र रखने और सरगर्म तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें इन्फ्लुएंजा के रुझानात पर करीबी नज़र रखना शामिल है। उन्होंने अवामी बेदारी और रोकथाम से मुतालिक तरीक़ाकार, जिसमें साफ़ निज़ाम तनफ़ुस शामिल है, पर भी जोर दिया। मरकजी वजीर और सीनियर BJP लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के नई दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर एहतजाज करने पर तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये एहतजाज न तलबा के मफाद के लिए है, ना ही इंसाफ के लिए है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये कांग्रेस पार्टी की सियासी मायूसी की और जनाब गांधी के मीडिया की तवज्जो हासिल करने की शदीद ख्वाहिश की एक अलामत है। जनाब नड्डा ने कहा कि अदालत आलिया ने पहले ही 20 जुलाई के वाक़े का नोटिस लिया है और साबिक जज की सरपरस्ती में 5 मेंबरान पर मुश्तमिल एक आला सतह की कमेटी कायम की है।
2: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका

0: पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
1: मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत एक मज़ाहिम भरोसेमंद इख्तिरात पर मबनी बा इख्तियार और सबकी शमूलियत वाले डिजिटल मुस्तकबिल की तामीर का मकसद रखता है, जिसे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के तसव्वुर से रहनुमाई मिलती है। वो पुणे में आज ब्रिक्स ममालिक के वज़राए मवासलात की 12वीं मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। ब्रिक्स मेम्बर मुल्कों के वज़राए मवासलात और सीनियर नुमाइंदों ने इत्तिलाआत और मवासलाती टेक्नोलॉजीज़, डिजिटल तब्दीलियों, इख्तिराआत और मज़ाहिम डिजिटल बुनियादी ढांचे में तआवुन को मजबूत करने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस अपनी तवानाई की शराकत दारी को रिवायती पेट्रोलियम मसनूआत से आगे बढ़ाकर साफ और पायदार ईंधन तक वसत देने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई का तआवुन मुस्तकबिल में तवानाई की यकीनी फराहमी और साफ तरीन ईंधन पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करेगा और ये पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी मौजूदा शराकत दारी पर तामीर किया जाएगा। हुकूमत ने आज एक बार फिर कहा है कि भारतीय मल्लाह बिरादरी की बहबूद और सलामती भारत की आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में रूनुमा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने का सिलसिला जारी रखे हुए है। दो गैर मुल्की झंडे वाले जहाज़ों के ताल्लुक से हुए एक वाक़े के बारे में बातचीत करते हुए जनाब जायसवाल ने बताया कि तमाम 22 मल्लाह महफूज हैं और हुकूमत इस सिलसिले में मुतालिका अहलकारों के साथ राबते में है ताकि उनकी हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाया जा सके। हॉकी में FIH आलमी कप के सेकंड पूल के मरहले के पहले मैच में भारत की ख्वातीन की टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी तरक्की और वसाइल की हथियारकारी के मुतालिक तशवीश के दौरान तरक्की के लिए एक दरख्शां आलमी मकाम के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने एक बार फिर हर एक गैर कानूनी इमिग्रेंट को मुल्क से बाहर निकालने के हुकूमत के अज़्म का इरादा किया है। हुकूमत का कहना है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मुल्क में शकर का खातिर खा ज़खीरा मौजूद है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने 62,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाने के साथ मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग की स्कीम का इफ्तिताह किया ताकि मुल्क में सप्लाई की चेन और आलमी मुकाबला जाती सलाहियत को फ़रोग दिया जा सके। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सबब रूनुमा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: करंट अफेयर्स। दिस इज आकाशवाणी। इन द वीकली प्रोग्राम करंट अफेयर्स नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन स्टार्टअप इंडिया, एम्पावरिंग एंटरप्राइजेस एंड ड्राइविंग इनोवेशन। The participants are Lieutenant General Sanjay Kulkarni, Defence Analyst, and Prasoon Sharma, Entrepreneur and Public Policy Expert. Moderator is Manas Pratim Bhoyan, Journalist.
3: Namaskar. Today we are discussing Startup India journey and how it is empowering enterprises and contributing significantly to India's economic might. To discuss, we have Lieutenant General Sanjay Kulkarni and Mr. Prasoon Sharma. Thank you so very much for joining us on a discussion on Startup India with a focus on empowering, how it is empowering enterprises. So I would like to go first to Lieutenant General Kulkarni. So how do you see the overall environment and ecosystem in India and various policy initiatives that the government of India has done in the last few years to promote ambitious Startup India program?
4: I think the very process, as one sees for Atmanirbhar Bharat, there could be nothing better than to involve the private brains, the private funds to come in. Because until and unless we really involve them, it would be very difficult to sustain these reforms. And it's very important that all investments which are indigenous must be innovative and must be supported. And therefore, in that direction, I see that as a remarkable transformation which has taken place over a decade. And these startups, there are no, must at the very outset admit that there are no dearth of innovative ideas, no dearth of people to be able

0: not only the ground, our startups have, started launching their own satellite that when you used to do with millions of budget, with the team like thousands of people, now a small startup from India is launching its own, space rocket. Then there is another startup which is 3D printing the rocket engines. Previously, you are dependent on these rocket engines because of patents and IPRs, and the foreign owners will not share the technology behind it. But now startups are printing that in a 3D printed rocket engines, and that has been deployed. That has been showcased in Europe and in other countries, which has amazed all the stakeholders globally about the talent, about the capability, and about the innovation which Indian startups can do. And that's why in defense sector also, the more niche you can innovate, the more faster you can innovate in technology, like how advanced you are in, defense tech, that gives a bigger edge, whether it's on the land, whether it's in attack, whether it's on space, whether it's on surveillance. So I think overall ecosystem, startups are empowering Bharat by creating economic strength for Indian ecosystems. When India becomes like 10 trillion or 50 trillion, the projections are like majority of contribution will come from innovations, and that will be derived from these 200,000 startups, because they will becomes like global enterprise. Now it's not Startup India is just thinking of creating new startups. They are creating of thinking Bharatiya enterprise. They are thinking of creating Googles and Microsofts of India. They are also thinking of, exporting that to our, fellow ecosystem, whether it's multilateral or bilateral.
1: Thank you, Mr. Sharma. Thank you, Lieutenant General Kulkarni, for a detailed overview. So thank you so very much.
2: Thank you.
0: Thank you.
3: You were listening to a discussion on Startup India, Empowering Enterprises and Driving Innovation. The participants were Lieutenant General Sanjay Kulkarni, Defence Analyst, and Prasoon Sharma, Entrepreneur and Public Policy Expert. Moderator was Manas Pratim Bhuyan, Journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
4: Current Affairs. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वो बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्यायिक संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता।

0: लिखता है,
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत मोहम्मद शोएब अंसारी का गायन। मोहम्मद शोएब अंसारी के नागपुरिया गीत आज आपने सुने। आपको ढोलक पर संगत दे पुनीत ने, हारमोनियम पर साथ निभाया दामोदर लाल घोष ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित निर्मलया डे का द्रुपद धमार शैली में राग मियां की मल्हार में गायन। आपको पखावज पर संगत दी पंडित दलचंद शर्मा ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आपने सुना पंडित निर्मलाया डे के स्वर में द्रुपद धमार शैली में राग मिला मियाँ की मल्हार पर गायन, आपको पखावज पर संगत दी पंडित दलचंद शर्मा ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम

0: घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said, India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: Duniya ne bada bhayankar ek roop dekha hai in dino. Resources ka weaponization ho raha. Avishwas ka vatavaran. Vishwa ke liye anek nayi chunautiyan lekar ke aa raha. Lekin aise samay mein bhi duniya Bharat ko growth aur hope ke ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment, while his government's production-linked incentive model creating opportunities. Talking about the 7 powers representing 7 key streams which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that 7 such sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus. He said India is currently undertaking next generation reforms at the policy level to secure future, and the government is implementing reforms in governance and ease of living. He said reform is not a compulsion as it is government's commitment and conviction. The Prime Minister highlighted that the rapid development and swift reforms taking place in India today because there is political stability and continuity in the government's policies. Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering

0: पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म दयावान से सुना। और वंदना, जैसे कि हमने पहला गीत जो सुनवाया या अब जो गीत सुनवाए, ये कुछ ऐसे गीत हैं कि जिसे जब भी सुनते हैं तो वो हमें बांध देते हैं।
1: बहुत खूब हो तुमने कहा। और ये ही गीत की, संगीत की और के लिरिक्स जो होते हैं उसकी ताकत होती है कि आप भी उसके शब्दों या उसके इमोशंस के साथ बह जाते हैं। इसीलिए ना सविता, कभी आप गजल सुनो तो अचानक से ऐसा लगता है रोमानी हो गए, और कव्वाली सुनो तो एक अलग ही मूड क्रिएट हो जाता है ना।
0: बिल्कुल, ऐसे लगता है फिर आप रूहानी हो गए।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: और हम रूमानी और रूहानी जब हो जाते हैं, जब हमारे दोस्तों के हमें संदेशे मिल जाते
1: बिल्कुल।
0: हैं। तो चलिए इसी रूमानी बात पर एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको बता दें कि जो पहला मैसेज आज हम कार्यक्रम में ले रहे हैं वंदना, वो ले रहे हैं हम अनिल कुमार गवानकर का। इन्होंने संदेशा भेजा है और कह रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ हम कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अकरम हुसैन प्रिंस का भी हमें संदेशा मिला है। मेहर अरोड़ा हमें राजस्थान श्रीगंगानगर से संदेशा भेज रहे हैं। तो नवी हसन का भी हमें संदेशा मिला है। सुदर्शन शाह हमें संदेशा भेज रहे हैं। तो सतीशा नेजा जी भी सविता जी और वंदना जी को नमस्कार करते हुए कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन दे रहे हैं। और ये हमें संदेशा भेज रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से। गांव परासी हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार जी का संदेशा मिला है। तो ये संदेशा हमें नरेन नीताम का मिला है, जो हमें संदेशा भेज रहे हैं पथरिया से। इसके अलावा हमारे पास संदेशा अनिल मोहन जी का आया है, जो कि हमें पहाड़गंज मुल्तानी धांडा से संदेशा भेज रहे हैं। इनके साथ उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक भी हैं। सत्येंद्र है ये हमारे साथ, सत्येंद्र कंसोलिया, ये कहाँ से हमें संदेशा भेज रहे हैं। ये संदेशा ये है चंसोलिया, और ये हमें जिला जालौन उत्तर प्रदेश से संदेशा भेज रहे हैं। तो रमेश कुमार जाजोरिया भी हमें संदेशा भेज रहे हैं। इनके साथ इनका पूरा परिवार है। ये हमें पटेल नगर मलोट से संदेशा भेज रहे हैं। तो श्रवण कुमार जो हैं वो भी हमें संदेशा भेज रहे हैं। और स्वर्ण सिंह गिल, जो कि हमें गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से संदेशा भेज रहे हैं, ये भी अपने परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और जो कह रहे हैं कि कार्यक्रम हमें पसंद आ रहा है। सरफुद्दीन अंसारी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। तो शामिल है हमारे साथ ताज मोहम्मद अंसारी, इसके अलावा गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये संदेशा हम तक पहुँचा है छत्रपति संभाजी नगर से। संदेशा भेजने वाले हैं पाटिल परिवार, राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राशि और श्रीमती शीतल राजेश। संदेशे के साथ बिट्टू गगनेजा जुड़े हुए हैं, जो कि जलालाबाद वेस्ट से हमें संदेशा भेज रहे हैं। सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा भी इनके साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। संदेशा हमारे पास आया है जयराम सिंहकर का, जो हमें संदेशा भेज रहे हैं यवतमाल से। और दंतरेगी से है भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती वर्मा और विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये सभी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संदेशों की अगर बात करें तो संदेश हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन अब संदेशों को थोड़ा सा विराम देते हैं वंदना और बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ।
1: जी

0: जी हाँ, वाकई बड़ा ही हंगामा हो गया। बड़े दिनों के बाद ऐसा गीत सुनने को मिला है। वंदना, चॉइस तो तुम्हारी बहुत अच्छी है भाई।
1: और भाई गाने जो है ना ये मूड भी लाइट करते हैं। और अगर तुमने फिल्म देखी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखी हो तो लाजवाब ये फिल्म थी। कहाँ दो लोग कहते हैं ना कि तैयारी करते रह गए और दूल्हा कोई और ही निकल गया।
0: बिल्कुल, दो दूल्हे बनकर घूम

0: घूमते रहे और शहर है किसी और के शहर में चढ़ गया।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म, अनिल कपूर और गोविंदा की बात की जाए तो उनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन। गोविंदा ने एक बिल्कुल अलग तरह की एक्टिंग की थी, तो वहीं जूही चावला ने पूरी फिल्म में फुटेज खाया भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो फिलहाल तो फुटेज खा रहे हैं हमारे ये जितने भी श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि उनके मैसेजेस हमें तुरंत मिलते जा रहे हैं और कार्यक्रम में वो अपनी हिस्सेदारी जताना चाहते हैं। तो चलिए आपके जो जितने भी संदेश हैं उनको शामिल कर लेते हैं। ये हमारे पास फजलिका पंजाब खेड़ा से संदेश आया है। भूषण खेड़ा और विष्णु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, ये सभी परिवार के साथ बैठकर हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो वहीं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस और पिंकी टॉमस का संदेशा हमें मिला है। वंदना जी आपके नगर से एक संदेशा
1: धन्यवाद
0: आया
1: धन्यवाद।
0: है। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, कार्तिक खर्चे, यानी पूरा खर्चे परिवार हमारे कार्यक्रम पर अपना समय खर्च कर रहा है क्योंकि वो सुन रहा है कार्यक्रम।
1: और इंदौर से आया भाई, इंदौर और नर्मदा जी की यात्रा जो मैं करके आई हूँ ना, वाकई इंदौर और उसकी नर्मदा जी ने तो जो कहूँ कि मेरा दिल ही मेरा वहीं रह गया।
0: वाकई बहुत ही अच्छी यात्रा रही और वाकई शहर भी बहुत खूबसूरत है
1: बहुत
0: इंदौर।
1: खूबसूरत।
0: चलिए अब इंदौर से बाहर निकल कर चलते हैं। ये हमारे पास जो अगला संदेशा आया है ये मध्य प्रदेश से ही आया संदेशा, लेकिन संदेशा हम तक पहुंचा है जिला राजगढ़ से। ये लिखने वाले हैं हमारे दोस्त, इनका नाम है गोविंद, वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल, परी, कार्तिक, रमेश और चंद्र डागी, ये सभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। संदेशे के साथ फागु राम यादव, ज्योति ओजस्वी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि संबलपुर कांकनेर से हमें संदेशा भेज रहे हैं। तो संदेशा हमें मिला है मुकेश बत्ता जी का, जो हमें संदेशा कनेरा मोहल्ला पटियाला से संदेशा भेज रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का संदेशा मिला है। संदेशे के साथ अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद का संदेशा हम तक पहुंचा है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप हमें संदेशा भेज रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली से। तो कालका से हमें संदेशा मिला है शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का। संदेशे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब और अब्दुल हक डावर और जियाउल हक, ये हमें खंडवा से संदेशा भेज रहे हैं। खंडवा वही शहर है जहाँ पर जन्मे थे हमारे किशोरदा, और किशोरदा की आवाज़ की जब बात की जाए तो हमारे पास एक गाना बिल्कुल तैयार है किशोरदा की आवाज़, और आपको सुनकर बेहतरीन लगेगा। जिला जींद हरियाणा से संदेशा हम तक पहुँचा है जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरमीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर का, कह रहे हैं किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिएगा। सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा और गाव्या मल्होत्रा का संदेशा हमें अनारकली बाज़ार जगराव पंजाब से मिला है। संदेशे के साथ संबल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी जुड़े हुए हैं और ये संदेशा हम तक पहुँचा है इंदौर से। लिखने वाले हैं पूजा रघुवंशी, नंदिनी, बबीता, शोभा, कुमारी वंदना, एक बार फिर से वंदना आ गई है, मराठा देविका और लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा और पूरा चौधरी परिवार के साथ साथ रघुवंशी परिवार भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू रघुवीर नगर दिल्ली से हमें संदेशा भेज रहे हैं। और संदेशा हमें मिला है नासिर शेख का, जो कि फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से संदेशा भेज रहे हैं। तो आप सभी के संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल कार्यक्रम में गीत की तरफ बढ़ते हैं।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
0: कैसे?

0: जया पूरी गिनती आ गई है, 13 तक तो गिनती एटलीस्ट आ ही गई है। ये वो गीत हुआ करता था वंदना, जब हम छोटे हुआ करते थे तो इस गीत के जरिए हम गिनती भी याद कर सकते थे।
1: और ऐसे बहुत सारे गीत आए हैं, चाहे वो हिंदी की गिनती कह लो या फिर अंग्रेजी का A to Z कह लो। क्यों?
0: जी, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो गीत जब भी सुनते हैं तो हमेशा पसंद ही आते हैं। फिलहाल तो इस पसंद को एक थोड़ा सा विराम देना होगा वंदना, क्योंकि वक्त जो है वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ उस मुकाम पर आ गया है जब हमें अपने दोस्तों से लेनी होगी विदा।
1: बिल्कुल, तो चलिए इसी वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे बहुत जल्द एक प्यारी सी मुलाकात।
0: फिलहाल के लिए मुझे सविता और मेरे साथ
1: आपकी दोस्त वंदना को दीजिए इजाजत, और छोड़े जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से इस नगमे के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय मध्य रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को है, ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर होंगे इंग्लिश न्यूज। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं ला रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की कामना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान

लगभग 12 अरब डॉलर का है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। मंत्रालय ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा। अम्स्टरडैम में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यीफेन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 12:10 हुए हैं और श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा का। आज का सुरों का सफ़रनामा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं और मानते भी हैं कि सुरों का सफ़रनामा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हर रोज़ 12:10 पर आप हमसे रूबरू होने के लिए चले आते हैं और हम आपसे मिलने के लिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि इस सुरमई रात का जो हम सफ़र है, आज इस सुरमई रात की हम सफ़र हूँ मैं, और आज का जो सफ़र है वो हम उस आवाज़ के साथ लेकर चले हैं आपको, जिसने एक अलग तरह का भारीपन था, ठहराव था और रूह को छू लेने वाला दर्द था। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं हर दिल अजीज़ गुलकार और बेमिसाल गिटार वादक भूपेंद्र जी को। अमृतसर से हुआ ये सफ़र कैसे बॉलीवुड तक पहुंचा, और साथ ही साथ उनके जो यादगार नगमे थे उनके साथ ये सफ़र। जी हाँ, रात के 1 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम का आगाज़ इस खूबसूरत से गीत के साथ।

तो आज सुरों का सफ़रनामा में हम सफ़र पर चले हैं और जो सफ़र है जिनका वो है भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी का जन्म 6 फरवरी 1940 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनकी अगर शिक्षा और संगीत की तालीम की बात की जाए तो संगीत की प्राथमिक तालीम उन्हें उनके पिता प्रोफेसर नत्था सिंह से मिली, जो एक बेहद सख्त और संगीत के शिक्षक थे। मिजाज तो थे, संगीत के शिक्षक थे और शास्त्रीय संगीतकार थे। वहीं इनकी अगर वाद्य यंत्रों की शिक्षा की बात की जाए तो बचपन में कड़े अभ्यास के दौरान उन्होंने वोकल के साथ साथ गिटार, वायलिन और हारमोनियम बजाने में भी महारत हासिल की। उनकी अगर शैक्षणिक शिक्षा की बात की जाए तो शुरुआती जो शिक्षा थी अमृतसर में ही हुई थी। संगीत में गहरी रुचि के चलते वे युवावस्था में ही आकाशवाणी, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो, जहाँ से कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है दिल्ली से, वहाँ जुड़ गए थे और उन्होंने एक गायक और संगीतकार के रूप में अपने पेशेवर सफ़र की नींव रखी।

दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह सिर्फ एक उम्दा गायक नहीं थे बल्कि भारतीय संगीत जगत के सबसे बेहतरीन गिटारिस्टों में से एक थे।

हो चुरा लिया जो तुमने दिल को, शोले फिल्म का वो खूबसूरत गीत, उसके बैकग्राउंड में जो जो आप गिटार सुनते हैं, वो हम आपको बता दें कि गिटार वादक भूपेंद्र साहब ही होते हैं। तो आइए सुनते हैं अगला गीत आयशा जी की आवाज में, जिसमें भूपेंद्र जी ने ही अपनी उंगलियों का जादू बिखेरा है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। कहते हैं ना कि कुछ आवाज़ें तन्हाई की साथी होती हैं। जब रात गहरी होती है, पुरानी यादें दस्तक देने लगती हैं, तो भूपेंद्र सिंह की आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती है।

1975 साल में आई थी फिल्म मौसम। मिर्ज़ा गालिब की अमर शायरी को गुलजार साहब ने एक नया रूप दिया और मदन मोहन जी की धुन पर भूपेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ का ऐसा जादू बिखेरा कि आज 50 साल बाद भी ये गाना हर दिल की धड़कन बना है। आइए सुनते हैं फिल्म मौसम का वही गीत, संगीत मदन मोहन का, गायक भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर।

दोस्तों, क्या खूबसूरत फलसफा है ना ज़िंदगी का। जब भी हम भूपेंद्र सिंह जी की बात करें और उनकी जीवन संगिनी और मशहूर गायिका मिताली सिंह जी की बात ना हो तो ये सफ़र अधूरा है। दोनों ने मिलकर गज़ल की कई यादगार एल्बम्स निकाले, जैसे शबे गज़ल, आरजो, साहिल। लेकिन 80 के दशक में फिल्म बाजार का ये जो बाजार की ये जो गज़ल है उसने इतिहास रच दिया। उसने हर सुनने वाले की आंखों को नम कर दिया। तो लीजिए, अगला जो नगमा है फिल्म बाजार से है, संगीत खयाम का, गीतकार बशर नवाज़।

दोस्तों भूपेंद्र सिंह को उनके अद्वितीय गायन और गजल गायकी के साथ साथ गिटार वादन के लिए बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार दिए गए। हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान की तो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड संगीत जगत में गिटार वादक और पार्श्व गायक ने ऐतिहासिक योगदान के लिए इन्हें विशेष सम्मान दिया गया। इसके अलावा गजल और सुगम संगीत के प्रसार के लिए विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिए गए। अपनी पत्नी मिताली सिंह के साथ युगल गजल एल्बम जैसे आरजू, साहिल, शबे गजल, इन सब के लिए इन्हें गोल्ड और प्लैटिनम डिस्क सारेगामा द्वारा नवाजा गया और राष्ट्रीय स्तर पर गजल

गायकी में स्पेनिश गिटार और आधुनिक वाद्यों के अनूठे प्रयोग के लिए इन्हें विशेष संगीत सम्मान दिया गया। सुर सिंगार संसद सम्मान फिल्म मौसम के लिए दिया गया। वहीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा और संगीत उद्योग के दशकों को विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें दिया गया। और हम बात कर रहे हैं जब उपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी मिताली सिंह की, तो जो अगली जो गज़ल है वो इन्हीं दोनों युगल के आवाज़ में है। आनंद लीजिए इस खूबसूरत सी गज़ल।

दोस्तों भूपिंदर सिंह और मिताली की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल हमने सुनी और इस जोड़ी के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये जोड़ी हम सफ़र बन चुकी है। और इसके अलावा भूपिंदर सिंह की जोड़ी और किसके साथ जमी, जिसे हम कहें संगीत की रचनात्मक जोड़ी, तो भूपिंदर सिंह और आर डी बर्मन यानी कि पंचम दा के साथ उनकी जोड़ी बहुत सराही गई। पंचम दा के लगभग हर बड़े गाने में भूपिंदर सिंह का 12 स्ट्रिंग गिटार बैकबोन बना और बहुत सारे गीतों में उन्होंने गिटार और गायकी के साथ ऐतिहासिक प्रयोग किया। वहीं गुलजार साहब के साथ लिखी जटिल जज्बाती और खूबसूरत नज़मों को भूपिंदर जी ने अपनी आवाज़ से अमर बना दिया। तो आइए ऐसा करते हैं, अगला जो नगमा है वो सुनते हैं, आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का, आवाज़ें भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडेकर की।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में।
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

सोच सच ही कहा है, किसी ने इंसान चला जाता है मगर उसकी आवाज़ उसकी सुर सदियों तक हवाओं में गूंजते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी हम उनके गिटार के तार सुनते हैं, उनकी गज़लों की आवाज़ सुनते हैं, उनकी गज़लों में उनकी आवाज़ सुनते हैं, और जब उनकी गज़लों से शाम सजती है तो उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहती है। 18 जुलाई 2022 को मुंबई में वो हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए।

दोस्तों उनकी इस खूबसूरत सी यादों भरी गजलों और गीतों के साथ सुरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक। फिर किसी दिन एक नए फनकार के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। एक नई दास्तान लेकर आएंगे हम और जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। जुड़े रहिए AI लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, माफ कीजिए, ये आई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात की 1 बजने को है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से एक हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय

महिला पहलवान काजल डोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में भारत को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा है। अम्स्टलफेन में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं और आइए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम। गीत सुनहरे कार्यक्रम ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लेते हैं, लेकर आते हैं गोल्डन एरा के खूबसूरत गीत। आज गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म आरजू के गीत के साथ। आवाजें हैं आशा भोसले और मुबारक बेगम की। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दो बदन से। आवाजें हैं आशा भोसले की, संगीत है रवि का।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज़्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फ़ोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक एक सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं. गाता

जान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है खानदान और संगीत दिया है रवि ने, गीतकार हैं राजेंद्र किशन।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। जुड़े रहिए AI लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ। आपसे थोड़ी देर में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में पर्यटकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसल कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बांग्लादेश में संसद में मतदान के माध्यम से अंतिम राष्ट्रपति चुनाव 8 अक्टूबर 1991 को हुआ था। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश फथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ नीरज को सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया।

ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: initiatives, emerging risk and measures to strengthen compliance and effectiveness in combating money laundering and terrorist financing. And India's Kajal Dochak has won gold in the 76-kilogram category at the Under-20 Wrestling World Championships in Slovakia. The 18-year-old wrestler produced a dominant performance in the final, defeating China's Jing Rusan by a flawless 7-0. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एलआई न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बाहर नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के गीत बाहर कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सरिता। नमस्कार।

इसी गीत के साथ है गीत बाहर कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। अपने दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। जुड़े रहिए AI लाइव न्यूज 24x7 चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 3 बजे हिंदी में समाचार सुनिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। हिमाचल प्रदेश के 36 सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 के बीच करीब 419 करोड़ 88 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बताया कि राशि मंदिरों के रखरखाव, साफ सफाई, धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों और पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जाती है। यूक्रेन के मध्य हिस्से के क्रिवी रे शहर में रूसी ड्रोन हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार घायलों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर किया गया। क्रिवी रे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का गृहनगर है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर भाला फेंककर तीसरे स्थान हासिल किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पोल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। नीदरलैंड्स के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। युब्बी यानसेन और फ्रेडरिके मार्टला ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

न्यूज़ 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 3:10 और पूरे हो गए 7 सेकंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम गजल और गीत का।

घर से हम निकले थे, घर से हम निकले थे, मस्जिद की तरफ जाने को, घर से

पास के छुरी चलती है जीवा करने।

लीजिए, सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप जानेंगे भद्रासन और अश्वथासन के बारे में। 5:20 पर आप देशभक्ति गीत का आनंद उठा सकते हैं। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप नवल किशोर मलिक द्वारा गाया राग रामकली का लुत्फ उठा सकते हैं। सुबह 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 6:05। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना।

0: सुबह के 5 बजने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत

0: विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति और तेज 5G विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना से किसानों को बिजली की लागत कम करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए जीवन आसान बनाने और कारोबार को सुगम बनाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की प्रगति से वैश्विक स्थिरता भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप्स संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 18 वर्षीय काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। काजल इससे पहले 2024 में अंडर-17 विश्व चैंपियन और 2025 में अंडर-20 विश्व चैंपियन का खिताब भी जीत चुकी हैं। भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी प्रतियोगिता में रजत पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
2: 15 August ko maine Lal Kile se Sapta Dhara ki सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations but is changing the entire philosophy behind them.

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी

जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी के जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक

पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे 3 श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी 1 आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने भद्रासन और अश्वत्थासन के बारे में जाना। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत अभी सुनेंगे आप नवल किशोर मलिक द्वारा गाया राग रामकली।